सुप्रभात। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। आज शनिवार है,

शक संबत 1948 के आषाढ़ मास की छठवीं तिथि, तदनुसार 27 जून वर्ष 2026। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये बालाघाट केंद्र है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने जा रहे हैं समाचार, कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का

0: आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में टी20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। एफआईएच पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज
2: समाचार, हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। सुबह के 6:05 हुए हैं और ये समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। तो आइए कार्यक्रम वंदना की शुरुआत करते हैं हर रोज की तरह समूह स्वर में इस देशगान के साथ।

आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। पंडित जसराज के स्वर में आइए सुनते हैं ये हनुमान भजन।

0: इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बालाघाट केंद्र है। लीजिए सुनिए चिंतन, आलेख बी के मंजूषा का है।
1: महिला परिवार रूपी रथ का महत्वपूर्ण पहिया है और यदि इस पहिए को कमजोर बनाया जाता है तो स्वाभाविक ही परिवार के विकास की गति प्रभावित हो जाती है। चाहे कोई भी देश, कोई भी जाति हो, जब समाज में महिलाओं का स्थान बहुत नीचे हो जाता है तो उसके साथ ही होवनहार नागरिकों अर्थात बच्चों का स्थान भी नीचे हो जाता है। नारी का संबंध हमारे अतीत की कड़ियों से जुड़ा हुआ है।

0: प्राचीन भारत की महान संस्कृति में नारियों को अति आदरणीय एवं पूज्य स्थान प्राप्त था। भारत में काली, दुर्गा, जगदम्बा, सरस्वती आदि देवियों की पूजा बड़ी श्रद्धा से किया जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारत की नारी अति गौरवशाली थी, जिनकी जड़ मूर्तियों के सामने आज भी मनुष्य नतमस्तक होकर स्वयं को बुराइयों से मुक्त होने की प्रतिज्ञा करता है। कोई भी देश व समाज कितना उन्नतिशील है अथवा रहा है, यह वहाँ की नारी की अवस्था से आंका जा सकता है। जिस देश में विदुषी, चरित्रवान एवं सद्गुण संपन्न नारियाँ हैं, वह देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहेगा, क्योंकि नारी ही समाज की धुरी एवं संस्कृति की रक्षक है। नारी जननी है, उसके हाथों में जीवन है, परंतु कैसी विडंबना है, किसी ने नारी को माया का रूप कहा तो किसी ने अबला कहा, सर्पिणी कहा। अपने को अबला समझ इस प्रकार की उपेक्षा और शोषण झेलने वाली नारी आज तक भी यह निश्चित नहीं कर पाई कि आखिर समाज में उसका क्या स्थान है। वास्तव में नारी कोई अबला, माया या नर्क का द्वार नहीं है। नारी शब्द का अर्थ ही है बुराइयों का नाश करने वाली। कहा भी गया है, जब शक्तियाँ सो जाती हैं तो सारा संसार सो जाता है, और जब नारी में आध्यात्मिक जागृति आती है तो समस्त विश्व में नव चेतना आ जाती है। तो नारी अबला नहीं सबला है, नर्क का द्वार नहीं स्वर्ग का द्वार है। अब आवश्यकता है नारी की अंतर्निहित शक्तियों को जागृत एवं विकसित करने की। इसके लिए महिलाओं को शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षा का अर्थ केवल डिग्री हासिल करना ही नहीं, स्कूल कॉलेज की शिक्षाओं के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा की परम आवश्यकता है। मस्तिष्क एवं बुद्धि के संतुलित विकास से ही सर्वांगीण विकास संभव है। नारी सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन न करे, बल्कि अपने त्याग, सूझ और कर्मठता से समाज के मूल्य को बनाए रखे। महिला समाज विभिन्न प्रयासों से जागृत होकर आत्मज्ञान, आत्मनिर्भरता के आधार पर श्रेष्ठ कर्म करे तो उनके लिए लौकिक, अलौकिक प्राप्तियों के द्वार खुल जाएंगे एवं मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना सहज हो सकेगी।
1: चिंतन में अभी आप सुन रहे थे बी के मंजूषा का आलेख। आकाशवाणी का ये बालाघाट केंद्र है FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। 6:35 हुए हैं, समय है मानस गान का, तो आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। आज की कड़ी में मुख्य गायक स्वर हैं चतुर सेन और राजेंद्र काजरुके, और आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के लिए संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

श्री राम को अयोध्या लौटा लाने के अपने विनीत आग्रह को त्याग कर भरत ने निर्णय प्रभु पर छोड़ दिया। अग्रज के प्रति अपनी भक्ति तथा निष्ठा की दुहाई देते हुए उन्होंने कहा, गुरु और

स्वामी का स्नेह पाकर मेरा क्षोभ मिट गया है। मन में अब कोई संदेह नहीं रहा। दया निधान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए आपके चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ न हो। सेवक का हित इसी में है कि वो समस्त सुख और लोभ छोड़कर स्वामी की सेवा करे। हे नाथ, आपके लौटने में सबका स्वार्थ है, किंतु आपकी आज्ञा के पालन में ही सबका कल्याण है। भरत की विनय ये थी कि यदि स्वामी चाहें तो अकेले भरत वनवास करें, अथवा लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को अयोध्या लौटाकर भरत श्री राम की सेवा में वनगमन करें, अथवा श्री राम तथा सीता अयोध्या लौट जाएं और बाकी तीनों भाई वन को जाएं। इन सभी विकल्पों में भरत अपना ही स्वार्थ होना बताते हैं, क्योंकि उनके अनुसार न तो उन्हें नीति का ज्ञान है और न धर्म का। इसी समय सभा स्थल पर राजा जनक के दूत पहुंचते हैं, जिनसे ये समाचार मिला कि स्वयं राजा जनक वहां पहुंच रहे हैं।

श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ अभी आप सुन रहे थे। आज की कड़ी में मुख्य गायक स्वर थे आचार्य चतुरसेन और राजेंद्र काजरू के, और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं प्रसारण आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। आइए कार्यक्रम विवरण के तहत अब आपको जानकारी दे दें हमारे आज के कुछ प्रमुख प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

7:10 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे। कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट आप सुनेंगे हर रोज की तरह सुबह 7:20 पर। सुबह 8 बजे समाचार हम रिले करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 8:15 पर। 8:30 पर होगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र का अनुप्रसारण। 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आप आनंद ले सकेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का। जिले की चिट्ठी सुबह 10 बजे हम रिले करते हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। 10:05 से आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2:10 तक आप सुन सकेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम। 2:10 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से और 2:15 पर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। दिन में 3 बजे नया भारत समाचार हम रिले करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही। 3:10 से शाम 5 बजे तक आप सुन सकेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगे शाम 5 बजे। 5:30 का समय होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। गुड इवनिंग बालाघाट हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 6 बजे। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:30 पर। 7:10 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे। 7:21 पर होगा चौपाल और किसान साथियों का कार्यक्रम किसानवाणी आप सुनेंगे शाम 7:30 पर। रात 8 बजे का समय होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम का और रात 8:30 पॉप म्यूजिक। रात 9:45 समाचार संध्या हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। साथ ही स्पॉटलाइट समाचार रात 9:15 पर आप सुन सकेंगे जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले करते हैं। 9:30 से रात 10:30 तक आप आनंद ले सकेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का। रात 10:30 लुत्फ उठाइए सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम का। रात 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाते हैं। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। 6:50 हुए हैं, लीजिए सुनिए सदाबहार फिल्मी गीत। और आज का ये कार्यक्रम हमने सजाया है, हमने नाम किया है संगीतकार पंचम दा को। तो आइए इनके संगीत से सजा ये गीत सुनते हैं, आपकी कसम फिल्म से, आवाज़ किशोर कुमार की।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मेरे जीवन साथी फिल्म से किशोर की मौत, किशोर कुमार की आवाज़, पंचम दा का संगीत और रचना है मजरूह सुल्तानपुरी की।

0: धनवी की रचना जिसे आरडी बर्मन ने संगीत से सजाया है और ये गीत है दीवार फिल्म से।
1: हाँ
2: या चुप रहूं
1: ना
2: दिल में मेरे आज क्या है
1: क्या है

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में ये था दीवार फिल्म का गीत। और लीजिए अब सुनिए कालिया फिल्म से एक बार फिर आशा भोसले और किशोर कुमार को। मजरू सुल्तानपुरी की रचना है, आर डी बर्मन का संगीत।

0: कालिया फिल्म का यह गीत था आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में। इसी के साथ सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। 7:10 होने को हैं, कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर। गृह मंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित सेवा भारत टैक्सी का गुजरात में करेंगे शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आतिथ्य में होगा विशेष कार्यक्रम। और आज भोपाल इंदौर समेत 43 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा दल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ बातचीत करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वे वहां भारत वंशियों से भी मिलेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल

ऐप पर भी किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर इसका सीधा प्रसारण होगा। गृह मंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है।

0: इस दौरान उन्होंने देश को नशे के खतरे से बचाने के लिए तैयार किए गए विजन डॉक्यूमेंट ऑन नारकोटिक्स कंट्रोल का भी शुभारंभ किया। संबोधन में अमित शाह ने कहा कि देश नशे के खिलाफ लड़ाई के बेहद निर्णायक मोड़ पर खड़ा है।
1: मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, नार्को टेररिज्म इको सिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
0: समान नागरिक संहिता यूजीसी विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए अध्ययन और परीक्षण संबंधी उच्च स्तरीय समिति की बैठक कल नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में हुई। समिति की अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विधेयक के प्रारूप के साथ ही विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति समेत अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति सदस्य सचिव अजय कटेसरिया ने बताया कि समिति की रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग अंतिम चरण में है। समिति की रिपोर्ट के दो भाग होंगे, जिसमें पहला भाग समिति के अनुशंसाओं का और दूसरा भाग समिति द्वारा किए गए जन परामर्शों से संबंधित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज से दो दिवसीय दौरे पर बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज शाम को सनसेट पॉइंट को देखेंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत कुकरू में रात्रि चौपाल में शामिल होंगे। वे गांव वालों से बातचीत भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। अगले दिन सुबह 6:30 पर सनराइज और बुच पॉइंट पर मेडिटेशन करेंगे। फिर स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित गतिविधियों का अवलोकन भी करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन परिसर में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में कई निर्णय लिए जाएंगे। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस की प्रदेशवासियों सहित उद्यमियों को शुभकामनाएं और बधाई दी है। श्री कश्यप ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारत की अर्थव्यवस्था की सशक्त आधारशिला है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जैसे अभिनव आयोजनों ने प्रदेश में एमएसएमई, स्टार्टअप्स और निवेशकों के लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं। इससे प्रदेश में निवेश बढ़ा है, रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और स्थानीय उद्यमों को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल लोकतंत्र सेनानी स्मृति दिवस के अवसर पर रविन्द्र भवन में आयोजित लोकतंत्र सेनानियों के प्रादेशिक सम्मेलन में कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को सरकार स्पेशल ट्रेन से तीर्थ दर्शन कराएगी, साथ ही लोकतंत्र सेनानियों के इलाज का सारा खर्च सरकार उठाएगी।
3: लोकतंत्र सेनानियों के योगदान के शिलालेख उनके निवास क्षेत्र के आसपास लगाने के भवन, पार्क या मार्ग का नाम रखने के लिए मैं सहमत हूँ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, लोकतंत्र सेनानियों के इलाज के लिए जो खर्चा लगेगा सरकार देने के लिए तैयार रहेगी। हमारे लोकतंत्र सेनानी अपने राज्य के अंदर कई जगह छोटे छोटे स्थान पर भी रहते हैं और ऐसे में कभी कोई गंभीर बीमारी पड़ी और वहाँ राज्य के उस अस्पताल में इलाज नहीं है तो हमारी एयर एम्बुलेंस निःशुल्क लेकर के आएगी और उनका इलाज कराएगी।
0: प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से के 15 जिलों में एंट्री करने के बाद मॉनसून ठहर गया। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक मॉनसून आगे बढ़ा तो पहले यह भोपाल, उज्जैन संभाग में पहुंचेगा, आखिर में ग्वालियर चंबल में दस्तक देगा। प्रदेश में मॉनसून 24 जून को पहुंचा था। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 2-3 दिन में मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों में मॉनसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां बन रही हैं। इसके असर से आज भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर समेत 43 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारे शिकस्त दी। लंदन के ली वैली हॉकी सेंटर में खेले गए मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, चुकराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। 7वां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा।

अब कुछ समाचार संक्षेप में। रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए जोधपुर और चेन्नई के बीच 27 जून से साप्ताहिक समय स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन पश्चिम मध्य रेलवे की भोपाल मंडल के रुठियाई, गुना, बीना, भोपाल और इटारसी स्टेशन से गुजरेगी। खंडवा में साइबर अपराधों से बचाव के लिए पुलिस का सेफ क्लिक 2.2 अभियान लगातार जारी है। अभियान के तीसरे दिन विशेष साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्षा काल को देखते हुए आगरमालवा कलेक्टर के आदेश पर 24 घंटे संचालित होने वाला जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। सतना जिले में जिला प्रशासन और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में कई जगह नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक सहित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। निंडौरी में कल से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत जिले के 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इंदौर में मध्यप्रदेश गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल वृत्त इंदौर ने कॉलोनियों के निवासियों के लिए समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया। गुना में कल राजस्व और नगर परिषद के संयुक्त अमले द्वारा संचालित कोचिंग संस्थानों का सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: प्रादेशिक समाचार हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। सुबह के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट।
1: नमस्कार बालाघाट।

नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का नमस्कार बालाघाट कार्यक्रम का ये अंक लेकर हाजिर हूँ मैं रजनी तिवारी। साथियों, गर्मियों का मौसम जा चुका है, मतलब गर्मी का मौसम जा चुका है, मौसम गया है गर्मी का, गर्मी अब भी है पर मौसम बारिश का है, है ना, कितना गोलमाल इस बात में। दोस्तों, इस मौसम में, मतलब बारिश के मौसम में, अक्सर मुझे मेरे बचपन वाले दिन याद आने लगते हैं। शायद आप में से भी बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा, क्योंकि आज जो है वो बच्चों का बचपन कुछ अलग है, लेकिन जो हमारा समय था, या हम 80s 90s की बात करें, 80 और 90 के दशक की बात करें, तो उस समय का बचपन कुछ अलग होता था और हम उसी समय के बचपन वाले लोग हैं। तो ये जो बचपन वाली बारिश याद आने लगती है इस बारिश के मौसम में, जब मन ये करता था कि बस जैसे ही स्कूल जाने का समय हो, ज़ोरदार बारिश हो जानी चाहिए, बड़ी प्रार्थना की जाती थी इसके लिए। बस फिर क्या होना था, फिर स्कूल की छुट्टी और सारा दिन दोस्तों के साथ बारिश के पानी में छपाक छपाक। याद आया कुछ? अच्छा, और तो और हम ये भी चाहते थे कि बारिश भी हमारी ज़रूरत के हिसाब से हो, यानी जब हमारा बाहर खेलने का मन हो तब बारिश रुक जाना चाहिए, और या फिर बारिश उतनी ही हो, उतनी ही देर हो, जितनी देर हम चाहें। कितना मज़ेदार था ना उस समय सब कुछ। हालांकि उस समय हम स्वार्थी थे, बचपन था, स्वार्थ का मतलब नहीं जानते थे, बस अपनी मौज मस्ती। पर आज भी हम स्वार्थी ही हैं और उतने ही हैं जितने बचपन में थे। दोस्तों, मौसम का बिगड़ता चक्र परिणाम है खत्म होते जंगलों का। लेकिन हम चाहते हैं कि सारे मौसम, सिर्फ बारिश ही क्यों, हम हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि सारे मौसम हमारे अनुकूल रहना चाहिए। गर्मी में हाय तौबा मचाने वाले हम, बारिश में कितने ही वृक्ष लगा पाते हैं, और चलिए लगा भी दिए तो उनमें से कितने ही वृक्ष ऐसे हैं जो सर्दियों को सहते अगली गर्मी तक टिक पाते हैं। कभी सोचा है हमने? जीवन तो चल रहा है दोस्तों, चलेगा भी, पर धरती खतरे में जा रही है। आधुनिकता की ओर बढ़ते हमारे कदम अपने अधिकार तो लेना चाहते हैं, अपने अधिकार पा लेना चाहते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य पालन से पीछे चले जा रहे हैं। विचार करें, फिलहाल कार्यक्रम में जो हमारा कर्तव्य है, रेडियो के लिए जो हमारा कर्तव्य है, श्रोताओं के लिए जो हमारा कर्तव्य है, हम उसमें पीछे नहीं हटने वाले। तो फिलहाल बारी इस गीत की।

इजाजत फिल्म का ये गीत था, आशा भोसले की आवाज़ और आर डी बर्मन पंचमदा का संगीत, खूबसूरत सा संगीत। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, चिंतन करते हैं आज के विचार पर। विकासवाद का सिद्धांत देने वाले चार्ल्स डार्विन का विचार था कि मानव भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है और पारिस्थितिकी तंत्र का सम्मान करना हमारी उत्तरजीविता के लिए अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, प्रकृति के बिना कोई मानवीय प्रगति संभव है ही नहीं, क्योंकि प्रकृति के साथ के बिना मनुष्य आगे बढ़ ही नहीं सकता, या ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम आगे बढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा अस्तित्व, स्वास्थ्य और संसाधन सभी कुछ उस पर निर्भर करते हैं। मतलब सीधी सी अगर विज्ञान की भाषा में हम समझें तो ये पूरा पारिस्थितिकी तंत्र एक दूसरे पर प्रकृति, मनुष्य और प्राणी जगत, मनुष्य न कहकर हम समस्त प्राणी जगत की बात करें तो बेहतर होगा, और हम सभी एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहते हैं, जो हमारी प्रकृति को आगे बढ़ाता है, जीवन को आगे बढ़ाता है। तो प्रकृति का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण, या हम कहें कि सबसे अहम भूमिका हमारी इस प्रकृति की है, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की है, जिसमें संतुलन बनाना मनुष्य का काम है। क्या हम ये संतुलन बना पा रहे हैं, ये विचारणीय प्रश्न है। और तब तो ये और भी ज़्यादा विचारणीय हो जाता है जबकि हम बदलते मौसम के चक्र को महसूस कर पा रहे हैं। फिलहाल आइए प्रकृति की सानिध्य में ही चलते हैं और इसके अजूबों को समझते हैं इस गीत के साथ।

0: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
1: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां BTech कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
0: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।
2: मानसून धमाका। रंगलानी वस्त्र भंडार लेकर आया है शानदार ऑफर, एक खरीदी पर दो दो फायदे।
3: जी हाँ, यहाँ मिलेगा फैंसी पैटर्न साड़ी 325 रुपए में दो पीस, बनियान 85 रुपए में दो पीस, प्रीमियम जॉर्जेट साड़ी 600 में दो, सिल्क साड़ी 750 में दो, सिंगल बेडशीट 150 में दो, डबल बेड का 2600 में दो पीस।
2: रेडीमेड शर्ट गीजा कॉटन 699 में दो पीस, सिंगल बेड 2425 में दो, डिजाइनर प्रिंटेड कुर्ता 500 में दो, इम्पोर्टेड टॉवल 140 में दो, डोरमेट 28 में दो, रेडीमेड टाउजर 999 में तीन पीस और भी बहुत कुछ।
3: तो चले आए रंगलानी वस्त्र भंडार, आनंद रेडियो के बाजू में, मेन रोड बालाघाट। मोबाइल नंबर है 9425139615।
4: आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट, रजनी तिवारी के साथ। कार्यक्रम में अब बारी है कि हम जाने आज की तारीख से जुड़े इतिहास की खास बातों के बारे में। तो आज है 27 जून, वर्ष 1693 में लंदन में महिलाओं की पहली पत्रिका लेडीज मरकरी का प्रकाशन शुरू हुआ था। आज ही की तारीख पर वर्ष 1940 में सोवियत संघ की सेना ने रोमानिया पर हमला किया था। वर्ष 1957 में ब्रिटेन की मेडिकल रिसर्च काउंसिल की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि धूम्रपान की वजह से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। 27 जून वर्ष 1967 में लंदन के एनफील्ड में विश्व का पहला ATM स्थापित किया गया था। 27 जून वर्ष 1967 में ही भारत में निर्मित पहले यात्री विमान HS-748 को इंडियन एयरलाइंस को सौंपा गया था। इसी तारीख पर वर्ष 1991 में यूगोस्लाविया की सेना ने स्लोवेनिया के स्वतंत्र होने के 48 घंटे के भीतर ही इस छोटे से देश पर हमला कर दिया था। साथ ही वर्ष 2002 में G8 देश परमाणु हथियार नष्ट करने की रूसी योजना पर सहमत हुए थे। और वर्ष 2003 में अमेरिका में समलैंगिकता पर प्रतिबंध रद्द किया गया था। 27 जून वर्ष 2005 में ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की वीटो रहित स्थायी सदस्यता का समर्थन किया था। वर्ष 2008 में भारत और पाकिस्तान ने ईरानी गैस पाइपलाइन परियोजना को शुरू करने में आ रही बाधाओं को दूर किया था। आज की तारीख में जन्म लेने वाले मशहूर व्यक्तियों की बात करें तो उनमें शामिल हैं मशहूर भारतीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर अमला शंकर, जिनका जन्म आज ही की तारीख में वर्ष 1919 में हुआ था। 27 जून वर्ष 1922 में जन्म हुआ था तमिल भाषा के साहित्यकार अकेलन का। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव RD प्रधान का जन्म हुआ था 27 जून को वर्ष 1928 में। हिंदी फिल्मों के संगीतकार RD बर्मन यानी कि राहुल देव बर्मन का जन्म हुआ था 27 जून को वर्ष 1939 को। और वर्ष 1950 को इसी तारीख पर जन्म हुआ था हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गायक नितिन मुकेश का। भारतीय पत्रकार पूर्णिमा वर्मन का जन्म हुआ था 27 जून को वर्ष 1955 में। और भारतीय खिलाड़ी PT उषा का जन्म हुआ था आज ही की तारीख में वर्ष 1964 में। आज की तारीख में दुनिया को अलविदा कहने वालों में शामिल हैं भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध सिखों के महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने वर्ष 1839 को अंतिम सांसें ली थी। साथ ही भारतीय सेना के पूर्व अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में भारत ने सन 1971 में हुए भारत पाकिस्तान

0: सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल CBSE से संबद्ध जिले का सर्वश्रेष्ठ स्कूल, जहां उपलब्ध है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, नीट और JEE में सर्वाधिक बच्चों का चयन, नर्सरी से 12वीं तक एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी वातावरण। प्रवेश प्रारंभ सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल, साहू टोला, लालबर्रा रोड, बालाघाट। संपर्क 6262604114।
1: मानसून धमाका, रंगलानी वस्त्र भंडार लेकर आया है शानदार ऑफर, एक खरीदी पर दो दो फायदे।
2: जी हाँ, यहाँ मिलेगा फैंसी पैटर्न साड़ी 325

0: रुपए में दो पीस, बनियान 85 रुपए में दो पीस, प्रीमियम जॉर्जेट साड़ी 600 में दो, सिल्क साड़ी 750 में दो, सिंगल बेडशीट 150 में दो, डबल बेड का 2600 में दो पीस।
1: रेडीमेड शर्ट गीजा कॉटन 699 में दो पीस, सिंगल बेड 2425 में दो, डिजाइनर प्रिंटेड कुर्ता 500 में दो, इम्पोर्टेड टॉवल 140 में दो, डोरमेट 28 में दो, रेडीमेड ट्राउजर 999 में तीन पीस, और भी बहुत कुछ।
0: तो चले आए रंगलानी वस्त्र भंडार, आनंद रेडियो के बाजू में मेन रोड बालाघाट। मोबाइल नंबर है 9425139615।
2: साथियों, अब बात करते हैं और आज हम जिनको याद कर रहे हैं उनकी बात करते हैं, तो संगीत के क्षेत्र का एक ऐसा नाम कि यदि पुराने और 80s के गानों की बात करें तो हर 10 में से 5 हिट गाने उनकी धुनों से सजे मिलेंगे। और ऐसा अभिनेता अशोक कुमार का मानना था कि बचपन में ये पंचम सुर में रोते थे और इसलिए इनका नाम पंचमदा पड़ गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंचमदा यानी कि राहुल देव बर्मन की। 27 जून वर्ष 1939 को कोलकाता में जन्मे राहुल देव बर्मन हिंदी सिनेमा के बड़े और जाने माने संगीतकार सचिन देव बर्मन यानी कि SD बर्मन के पुत्र थे। मतलब स्वाभाविक सी बात है कि SD बर्मन जैसे दिग्गज संगीतकार के साथ पले बढ़े तो संगीत तो इनके जीन्स में ही होना था। RD बर्मन ने अपने करियर की शुरुआत अपने पिता के साथ संगीत के सहायक के रूप में की थी। अपना पहला गीत 9 वर्ष की आयु में इन्होंने रचा था, जिसका उपयोग उनके पिता ने 1956 की फिल्म फंटूश में भी किया था। और बस फिर क्या था, वर्ष 1960 से वर्ष 1990 के दशकों तक RD बर्मन हमें अपने संगीत से सजी धुनों को सुनने के लिए हमें देते रहे। और बात करें उनकी पहली फिल्म की, तो उनकी पहली फिल्म छोटे नवाब थी संगीतकार के रूप में, लेकिन पहली सफल फिल्म थी तीसरी मंजिल। 1970 में 6 फिल्मों में इन्होंने संगीत दिया था, जिसमें कटी पतंग सबसे सफल रही थी। इनके संगीत से सजी फिल्मों में शामिल हैं तीसरी मंजिल, पड़ोसन, हरे रामा हरे कृष्णा, अमर प्रेम, सीता और गीता, मेरे जीवन साथी, शोले, दीवार, कालिया, नरम गरम, नमकीन, तेरी कसम, पुकार, परिंदा और न जाने कितनी ही। बतौर संगीतकार उनकी अंतिम फिल्म थी 1942 अ लव स्टोरी। 4 जनवरी वर्ष 1994 में इस संगीतकार की संगीत यात्रा रुक गई और संगीत का ये पंचम सुर शांत हो गया, लेकिन हमें दे गया अपनी धुनों का बेहतरीन नजराना, जिसमें से एक आपके लिए हम पेश कर रहे हैं।

साथियों, हम आज याद कर रहे हैं नितिन मुकेशी को भी। याद क्या कर रहे हैं? आज 1950 में, आज ही की तारीख में उनका जन्म हुआ था, मतलब कि आज उनका जन्मदिन है। नितिन मुकेश भारतीय गायक जो हिंदी फिल्मों में अपने पार्श्व गायन के लिए जाने जाते हैं। 1980 से 90 के दशकों में उन्होंने लगभग सभी मशहूर संगीतकारों के साथ काम किया। पहला हिंदी फिल्म के लिए पार्श्व गायन उन्होंने धुएं की लकीर फिल्म के लिए किया था और इस तरह उन्होंने अपने पिता मशहूर गायक मुकेश की विरासत को आगे बढ़ाया। हम उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं, उनके जन्मदिन पर उन्हें ढेरों बधाइयां देते हैं और उनके इस गीत के साथ श्रोताओं तक भी इस संदेश को पहुंचाते हैं।

और कोशिश करें उसके महत्व को समझने की भी। कहीं भी बचाव शुरू करने के लिए देर कभी भी नहीं होती है। हम जहां से शुरू करें वहीं से हमारा समय सुधर सकता है, तो बस देर न करें, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। बारिश का मौसम है, कहीं सफ़र पे जा रहे हों तो जामुन, आम, इनके बीजों को अपने साथ सुखाकर ज़रूर रखें, और जहां भी आपको ऐसी खाली जगह दिखती है, मिट्टी वाली जगह दिखती है, जंगल दिखते हैं, उन बीजों को वहां डाल दें। शायद उन बीजों में से कोई एक पौधा अंकुरित हो जाए जो इस प्रकृति को बचाने की ओर पहला कदम आपका बढ़ा सके। तो कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर है। चलते चलते आपको बता दें कि आज का ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग हमें मिला मनोज जैन और आशीष रहांगडाले का। कार्यक्रम की परिकल्पना थी धीरज कुमार की, प्रस्तुति थी कुंवर विक्रम सिंह की। कार्यक्रम लेकर मैं आज आपके साथ थी रजनी तिवारी। तो आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ स्वीकार करें हमारी टीम का नमस्कार।

कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 8 बजने जा रहे हैं। कुछ ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला।
1: बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
3: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।

0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
1: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी 0 कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहाँ हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले 1 महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
2: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
3: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and

0: सिक्योरिटी द
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
2: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
3: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
4: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
5: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
6: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथी होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
1: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
7: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकेंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद लव

उत्पाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने

0: देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है। भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ 12 अरब डॉलर का आंकड़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में हम आज आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास की गाई चंद गैर फिल्मी गजलें। कार्यक्रम की पहली पेशकश पंकज उदास की आवाज़ में, रचना नुसरत बद्र की है।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं प्रसारण आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। 8:30 होने वाले हैं। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, थोड़ा इंतजार करें।
1: आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा।

खुद ही बनाते हैं हम पेचीदा जिंदगी को, वरना तो जीने के नुस्खे बहुत आसान हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरमई सवेरा में। और आज के सफर में मैं हूं आपके साथ नेहा सूनी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज कार्यक्रम में ढेर सारी हम बातें करेंगे और साथ ही सुनवाएंगे आपको प्यारे प्यारे गीत। चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस खूबसूरत से नगमे के साथ।

श्रोताओं, कहते हैं कि शब्द इसलिए भी ठहर कर कहना चाहिए ताकि भविष्य में उसी शब्दों के लिए पछतावा महसूस ना हो। हम बोल तो देते हैं पर समझ नहीं पाते कि शब्द हवा में नहीं खुदे, वे मन में उतरते हैं और मन याद रखता है बहुत देर तक, कभी कभी उम्र भर भी। इसलिए कहा जाता है कि शब्दों को ठहर कर कहना चाहिए, क्योंकि वक्त का स्वभाव बड़ा अजीब है। वह वही बातें, वही आवाजें, वही तीर जैसे शब्द किसी अनजाने सुबह फिर से हमारे सामने खड़े कर देता था, और तब एहसास होता है कि बोलना आसान था पर उन शब्दों के लौट कर आने का भार सहन करना सबसे कठिन। पछतावा भी एक तरह की चुप्पी है जिसमें व्यक्ति अपने ही बोल शब्दों से दूर भी नहीं भाग सकता और पास भी नहीं बैठ सकता। इसलिए शब्दों का चयन केवल भाषा नहीं, एक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि शब्द कभी नहीं मरते, वे स्मृतियों में बदलकर हमसे जवाब मांगते रहते हैं।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, कहा जाता है कि हर किसी का आपको समझ लेना जरूरी नहीं है। अच्छी किताबें और अच्छे इंसान अक्सर वही समझ पाते हैं जिनके पास सोचने की गहराई और समझने का हुनर होता है। अगर कोई आपको नहीं समझता तो उसे लेकर परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। इस दुनिया में हर व्यक्ति की सोच, समझ और नजरिए की अपनी एक सीमा होती है। जैसे हर किसी को अच्छी किताबों का महत्व समझ नहीं आता, वैसे ही हर कोई अच्छे इंसान की गहराई को भी नहीं समझ पाता है। कुछ लोग केवल शब्द सुनते हैं, जबकि कुछ लोग भावनाओं और विचारों को भी समझने की क्षमता रखते हैं। इसलिए अगर कोई आपकी अच्छाई, आपकी सोच और आपके व्यक्तित्व को नहीं समझ पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत है। हो सकता है कि उसकी समझ अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हो। जीवन में सबसे ज़रूरी बात ये नहीं है कि हर कोई हमें समझे, बल्कि ये है कि हम खुद को समझें और अपनी सच्चाई पर विश्वास बनाए रखें। अच्छे लोग और अच्छी किताबें अक्सर समय के साथ समझ में आती है और उन्हें वही लोग पहचान पाते हैं जिनके पास गहराई से सोचने और महसूस करने की क्षमता होती है।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: श्रोताओं कहते हैं कि दुख भी एक तरह का सुख है। जीवन की गहराइयों में उतरकर देखा जाए तो दुख केवल पीड़ा नहीं है, वो आत्मा का एक मौन शिक्षक भी है। जो व्यक्ति केवल सुख को ही जीवन का सत्य मानता है, वो अस्तित्व के आधे पक्ष से ही परिचित रहता है, क्योंकि कई बार दुख ही वो द्वार बन जाता है जहां से मनुष्य स्वयं को पहचानना प्रारंभ करता है। सुख में मन बाहर की ओर दौड़ता है, पर दुख भीतर की यात्रा करवाता है। सुख हमें संसार से जोड़ता है, जबकि दुख हमें अपने वास्तविक स्वरूप से मिलवाता है। यही कारण है कि अनेक संतों, ऋषियों और साधकों ने दुख को शत्रु नहीं बल्कि आत्म जागरण

साधन भी माना है। जब जीवन सब कुछ छीन लेता है तब व्यक्ति समझता है कि वास्तव में उसका अपना क्या है। जब अपेक्षाएं टूटती है तब वैराग्य जन्म लेता है। जब हृदय आहत होता है तब ईश्वर की खोज भी प्रारंभ होती है, ऐसा कहा जाता है। और इसीलिए हर दुख अपने भीतर किसी गहन कल्याण का बीज लेकर आता है।

श्रोताओ, कभी कभी जब मन दुख डर और निराशा से भर जाता है तब इंसान रो नहीं पाता। उसके भीतर जमा भावनाएं किसी और रूप में बाहर आने लगती है। वह चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है या अनचाही बातें कह देता है। इसलिए कभी कभी कठोर व्यवहार के पीछे बुराई नहीं होती बल्कि एक टूटा हुआ, थका हुआ और दर्द से भरा इंसान छिपा होता है, जिसे सिर्फ समझने की जरूरत होती है।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग और अवैध तस्करी विरोधी दिवस पर कल केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल में आयोजित लोकतंत्र सेनानियों के प्रादेशिक सम्मेलन में कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को सरकार स्पेशल ट्रेन से तीर्थ दर्शन कराएगी। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन परिसर में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में कई निर्णय लिए जाएंगे। रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए जोधपुर और चेन्नई के बीच

0: 27 जून से साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के रुठियाई, गुना, बीना, भोपाल और इटारसी स्टेशन से गुजरेगी। प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से के 15 जिलों में एंट्री करने के बाद मानसून ठहर गया है। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 2-3 दिन में मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की स्थितियां बन रही हैं। और फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नार्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। सुबह के 9 बजने जा रहे हैं, अब से लेकर 10 बजे तक आप आनंद लीजिए विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का।
2: वो गाना करते करते हुक लाइन बनी, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
3: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
5: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
4: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
6: एक बेटी की यादों में उसके पिता
7: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
6: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
7: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
6: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
7: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
8: रामा शेट्टी, रामा शेट्टी, रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
6: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती से आप सुन रहे हैं चित्रलोक।

0: जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि हर रोज विविध भारती आपका हम सफर है।
1: हम सफर मेरे हम सफर।
0: टहले यादों की वादियों में संग संग, दिन में 11 बजे सुनते हुए रंग तरंग।
2: दिल में एक लहर सी।
0: ऐसे गाने जो चुरा ली आपका दिल, दिन में 12 बजे यादों की महफिल।
3: तेरा मुझसे है पहले का नाता।
0: दिन में 1 बजे एक अनूठी इबारत की डगर, सुरीला सफर।
4: तुम आ गए।
0: घड़ी की सुइयां जब बजाती हैं 2:30, तो बजती है सदाबहार नगमों की शहनाई। जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि हर रोज विविध भारती आपका हम सफर है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज एक खास दिन है, एक संगीतकार की याद का दिन, और वो संगीतकार हैं पंचम।

यूं तो आज के फनकार कार्यक्रम में हम आपको किसी गीतकार, संगीतकार या किसी कलाकार की पूरी जीवन यात्रा बताते हैं। हम ये बताते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए, कैसे उनकी परवरिश हुई और कैसे उनका करियर शुरू हुआ और फिर वो कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। लेकिन आज है पंचम दिवस और पंचम के बारे में हम ये मानकर चलते हैं कि आपको तमाम जानकारियां विविध भारती के इससे पहले के आज के फनकार कार्यक्रमों के जरिए मिल गई होंगी। आज हम आपको सुनवाएंगे दास्ताने पंचम, यानी कैसे पंचम ने अपने गानों की धुनें बनाई। उनके जीवन से जुड़ी बड़ी दिलचस्प घटनाएं भी हम आपको बताएंगे और इसके अलावा पंचम की रचना प्रक्रिया में झांक कर भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दास्ताने पंचम। दरअसल जाने माने संगीतकार आर डी बर्मन का नाम तो पंचम रख दिया गया। वो सचमुच सुरों से सराबोर भी रहे, लेकिन सचिन देव बर्मन बड़े व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने पंचम को कोलकाता में अपनी मम्मी के घर पर रख दिया था, यानी दादी जी ने पंचम की परवरिश की। सचिन देव बर्मन को ज्यादा पता नहीं होता था कि पंचम कर क्या रहे हैं। एक बार एक स्कूल के फंक्शन में एस डी बर्मन को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुला लिया गया और जब स्पेशल गेस्ट के तौर पर वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि पंचम हारमोनिका बजा रहे हैं। उन्हें अपने बेटे की इस प्रतिभा को देखकर बड़ा

अच्छा लगा। एक और दिलचस्प घटना हुई थी, एक स्कूल के स्पोर्ट्स फंक्शन में इनाम बांटने के लिए एसडी बर्मन को बुलाया गया। सचिन देव बर्मन इनाम बांट रहे थे तो ऐलान हुआ साइकिलिंग के लिए अवार्ड राहुल देव बर्मन को। अब उनका बेटा ही उनके सामने खड़ा था और साइकिलिंग के लिए वो उसको पुरस्कार दे रहे थे। अगले दिन उन्होंने पंचम को अपने पास बुलाया और बोला, कब से तुम साइकिलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो? पंचम ने जवाब दिया, 8 दिन से। उन्होंने पूछा, ये बताओ तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? पंचम ने जवाब दिया, आपसे बेहतर म्यूजिक डायरेक्टर बनना। ये जवाब सचिन देव बर्मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पंचम को अलग अलग साज सीखने के लिए प्रेरित किया और ब्रिजेन बिस्वास के पास भेज दिया तबला सीखने के लिए। इसके अलावा पंचम को भेजा गया उस्ताद अली अकबर खां और आशीष खां के पास सरोद सीखने के लिए। कई ऐसे गाने हैं जिनमें पंचम ने खुद सरोद बजाया है। एक बार सचिन देव बर्मन इसी तरह से छुट्टियां बिताने के लिए अपनी मां के पास कोलकाता गए। उन्होंने राहुल देव बर्मन को बुलाया और उनसे कहा कि जरा अपनी मार्कशीट दिखाना। मार्कशीट देखकर वो आग बबूला हो गए, पढ़ाई में इतने कमजोर। उन्होंने तय किया राहुल को मुंबई ले जाएंगे, क्योंकि उनकी भी अब उम्र बढ़ रही है और राहुल को अपने करियर में किसी तरह से एस्टेब्लिश करना है। 10-12 साल में राहुल कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। लेकिन राहुल देव बर्मन की दादी ने इसका विरोध किया। गुस्से में एसडी बर्मन ने वापस मुंबई जाने का फैसला किया। इससे पहले आखिरी बार पंचम को बुलाया और कहा, जरा ये बताओ तुमने कौन कौन सी ट्यून्स बनाई हैं? बस पंचम ने एक के बाद एक 15 धुनें सुना दी। सचिन देव बर्मन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो मुंबई चले गए। 1 साल बाद का वक्त, राहुल देव बर्मन कोलकाता के एक थिएटर में फिल्म फंटूश देख रहे थे। अचानक ये

0: कर न जा न जा।
1: राहुल देव बर्मन उछल पड़े, अरे ये तो मेरी धुन है, ये तो उन्हीं धुनों में से एक है जो मैंने अपने पिता को सुनवाई थी। उन्होंने फौरन अपने पिता से संपर्क किया और उनसे कहा कि आपने मेरी ट्यून चुरा ली। सचिन देव बर्मन बहुत हाजिर जवाब थे। उन्होंने कहा, मैं तो ये टेस्ट कर रहा था कि तेरी धुने पब्लिक किस तरह से स्वीकार करती है। हो गया ना टेस्ट, तू कामयाब हो गया बेटे, बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा तू। और इस तरह 9 बरस की उम्र में सचिन देव बर्मन ने राहुल देव बर्मन की पहली धुन का इस्तेमाल फिल्म फंटूश में किया था। आरडी बर्मन से जुड़े अनगिनत किस्से हैं। मजेदार बात यह है कि आरडी बर्मन मुंबई जाना चाहते थे और कोई जुगाड़ बन नहीं रही थी। कभी दादी नहीं मानती तो कभी पिता। सन 1955 के दिसंबर की बात है, गुरुदत्त कोलकाता आए। आरडी बर्मन गुरुदत्त से मिले और उनसे निवेदन किया कि मुझे मुंबई ले चलो। बस गुरुदत्त पंचम को मुंबई ले आए और फिल्म प्यासा में पहली बार पंचम ने एसडी बर्मन के असिस्टेंट के रूप में काम किया। उन्होंने एक गाना भी कंपोज किया और गानों में माउथ ऑर्गन भी बजाया और कुछ अन्य इंस्ट्रूमेंट भी बजाए।

वो दौर था जब सचिन देव बर्मन अपने इस प्रतिभाशाली बेटे को संगीतकार बनने के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने संगीत निर्देशन की बारीकियां अपने बेटे को सिखाई और उसको ये कहा कि जब कभी भी किसी गाने की धुन बन जाए तो प्रसन्न होने की बात नहीं है, उसे कुछ दिनों के लिए वैसे ही छोड़ दो, उसके बाद दोबारा सुनो, हो सकता है तुम्हें अपने ही काम की कमियां नजर आए, हो सकता है तुम अपनी ही ट्यून को रिजेक्ट कर दो। इस तरह से राहुल देव बर्मन ने अपने पिता से संगीतकारी की बारीकियां सीखी। कई बार राहुल देव बर्मन ने ये अपने इंटरव्यूज में बताया है कि कई धुनें उनके सपने में आई हैं। तो आइए वो गाने सुने जिनकी धुनें राहुल देव बर्मन को सपने में सूझी। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गाना।

एक और दिलचस्प बात है, रोजाना सुबह सचिन देव बर्मन टहलने के लिए जाया करते थे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई उन्हें देखकर फुसफुसाता, देखो देखो सचिन देव बर्मन जा रहे हैं। एक दिन दिलचस्प घटना हुई, एसडी बर्मन टहल रहे थे और पीछे से किसी ने कहा, देखो देखो राहुल देव बर्मन के फादर जा रहे हैं। सचिन देव बर्मन का सीना गर्व से फूल गया। घर जाकर उन्होंने आरडी से ये कहा कि लगता है अब तुम वाकई कामयाब होते चले जा रहे हो।

नासिर हुसैन तीसरी मंजिल बना रहे थे और उसके लिए एक नए संगीतकार की तलाश थी जो अपनी तरह से एक्सपेरिमेंट करे। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने राहुल देव बर्मन को लेने की सिफारिश की। ये वो दौर है जब तीसरी मंजिल के हीरो देव आनंद थे। आगे चलकर किस्मत ने पलटी खाई, देव आनंद इस फिल्म से बाहर हो गए और उनकी जगह शम्मी कपूर आ गए। जब ये खबर राहुल देव बर्मन को मिली तो उन्हें लगा किस्मत ने धोखा दे दिया, ये फिल्म तो अब हाथ से गई, क्योंकि सारी दुनिया जानती थी कि शम्मी कपूर के प्रिय हैं शंकर जयकिशन और शम्मी कपूर और जयकिशन तो बड़े पक्के दोस्त हैं। लेकिन यहां किस्मत ने काम किया। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन ने शम्मी कपूर से कहा कि पंचम में बहुत दम है, तुम उसकी धुनें सुनो तो सही। और बस यही हुआ। एक दिन शम्मी कपूर पंचम के पास पहुंचे और बोले, ए पंचम जरा धुनें सुनाओ। जैसे ही दो लाइनें पंचम ने सुनाई तो पता चला कि शम्मी कपूर ने यह गाना दार्जिलिंग में किसी चौकीदार को गाते हुए सुना था। और तुरंत शम्मी कपूर ने रोका और कहा, रुक जाओ, ये धुन तो मैं जयकिशन को देने वाला हूं। अब पंचम को लगा ये फिल्म मिलने वाली नहीं है। लेकिन धीरे धीरे काम

ये बढ़ता चला गया और हुआ ये कि न केवल नासिर हुसैन खुश हुए पंचम से, बल्कि शम्मी कपूर भी बहुत खुश हो गए। तीसरी मंजिल का जो गाना इस ट्यून पर था वो है ये।

सन 1964 में तीसरी मंजिल आई। इस फिल्म में जैज को बड़ी रचनात्मकता के साथ पंचम ने इस्तेमाल किया था और पंचम के खाते की ये एकमात्र हिट फिल्म थी। जब आराधना का संगीत तैयार हो रहा था तो आर डी बर्मन ने सचिन देव बर्मन की मदद की थी, वो उनके असिस्टेंट के तौर पर रहे थे। शक्ति सामंत को उनका काम अच्छा लगा और उन्होंने फिल्म कटी पतंग उन्हें दे दी थी। कमाल की बात यह है कि कटी पतंग में अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन पंचम ने किया और सही मायनों में अपनी पतंग आसमान में बहुत ऊंचाई पर तान दी।

गाना राग खमाज और राग कलावती पर आधारित है, लेकिन इसमें वेस्टर्न म्यूजिक के कॉर्ड्स का अद्भुत संयोजन दिखाई देता है। कमाल की बात यह है कि एक तरफ भारतीय शास्त्रीय संगीत और दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत, दोनों का जबरदस्त संयोजन करने में पंचम बड़े माहिर थे। एक समय की बात है, राजकमल स्टूडियोज में पंचम किसी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कर रहे थे, तभी गुलजार वहां पहुंचे और उन्होंने अपने एक गाने का मुखड़ा पंचम को सौंप दिया। ये गाना था परिचय फिल्म का, मुसाफिर हूं यारों। गुलजार चले गए, पंचम ने अपना काम जारी रखा। रात हो गई, गुलजार गहरी नींद में सो रहे थे। रात के 1 बजे फोन की घंटी बजी। गुलजार ने उनींदे होकर फोन उठाया तो पंचम थे। कहने लगे, तुरंत नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए ट्यून लेकर आया हूं। गुलजार नीचे उतरे, पंचम ने गाड़ी में कैसेट प्लेयर पर वो धुन गुलजार को सुनाई और पूरे बांद्रा में ड्राइव करते रहे। बांद्रा मुंबई का एक उपनगर है, आप तो जानते ही हैं। कार के डैशबोर्ड पर रिदम बजाते रहे और इस तरह से उन्होंने गुलजार को अपनी पहली ट्यून, गुलजार के लिए जो बनाई थी, वो सुनाई। आगे चलकर गुलजार और पंचम ने इतिहास रचा। फिल्म आंधी के लिए संगीत तैयार किया जा रहा था। ये वो दिन थे जब पंचम कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए बांग्ला गाने तैयार कर रहे थे। गीतकार गौरी शंकर ने बहुत ही बढ़िया एक धुन पंचम को दी। पंचम उस पर गाना बना रहे थे, तभी गुलजार को ये धुन पता चली और उन्होंने इस धुन में शब्द पिरो दिए। इस तरह बना फिल्म आंधी का ये अनमोल।

गुलजार और आरडी बर्मन के बीच हमेशा रचनात्मक चुनौतियां चलती रहती थीं। एक बार गुलजार मेरा कुछ सामान, जो फिल्म इजाजत का मशहूर गाना है, उसकी इबारत लेकर पंचम के पास पहुंचे और कहा इसकी धुन बनानी है। पंचम ने वो पूरी इबारत पढ़ी और गुस्से में कहा, कल को तुम कोई समाचार पत्र मेरे पास ले आओगे और कहोगे कि इसकी भी धुन बना दो, ये भी कोई बात हुई? लेकिन पंचम ने इसी गाने की अनमोल धुन बनाई और गुलजार और आशा भोसले को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ गायिका के राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। एक दिन पंचम गीतकार गुलशन बावरा के घर पहुंचे, कॉल बेल बजाई, दरवाजा गुलशन बावरा की पत्नी अंजू ने खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, पंचम गाने लगे, मक्के की रोटी पकाना अंजू, सरसों का साग पकाना अंजू, और उन्होंने गुलशन बावरा को ये इशारा किया कि यही मेरी धुन है, गाना तैयार करो। वो गाना था ये।

0: आइए अब पंचम के गानों के प्रयोग पर एक नजर डालते हैं, किस तरह से गानों में वो अलग अलग साउंड तैयार करते थे। फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा, जरा इसका ये शुरुआती संगीत सुनिए। ये संगीत दरअसल एक खाली बोतल को फूंक कर निकाला गया है। फिल्म यादों की बारात के मशहूर गाने का ये शुरुआती संगीत। ये संगीत ग्लास को चम्मच से बजाकर निकाला गया है। फिल्म डार्लिंग डार्लिंग का ये गाना सुनिए।
1: भूल गए तुम हमको? याद नहीं क्या तुमको? अरे रे रे रे रे रे। कल मिले थे हम तुम, आज फिर मिलना था।
0: जब इस गाने के लिए रिदम की जरूरत हुई तो पंचम ने अपने ढोलक और तबला वादक अमृत राव काटकर की शर्ट उतरवा ली और उनकी पीठ पर अपने हाथों से ये रिदम बजाया।

फिल्म चरित्रहीन का ये गाना सुनिए। इस गाने का रिदम उल्टी टिम्पनी यानी केटल ड्रम को पलट कर रख कर बजाया गया है और इस तरह से निकाला गया है। अब जरा ये गाना सुनिए। इस गाने में ये जो रिदम है, इसे सैंड पेपर को घिसकर और बांसों को आपस में टकराकर आवाज तैयार की गई है।

फिल्म पड़ोसन का ये गाना सुनिए। ये जो कंघी की आवाज है, ये दरअसल मेटल के बने लैटिन अमेरिकन स्क्रैपर से तैयार की गई है।

पंचम ने हिंदी सिनेमा के गाने तैयार करते हुए कई ऐसी ध्वनियां दी जिनसे पहले न तो संगीतकारों का परिचय था और न ही गाने सुनने वाले इन ध्वनियों को जानते पहचानते थे। पंचम ने तो न जाने किन किन चीजों से ध्वनियां निकाल ली। वो साउंड के सही मायने में जुनूनी थे, मास्टर थे। पंचम को वेस्टर्न म्यूजिक में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि सन

1987 में उन्होंने एक लैटिन अमेरिकन रॉक एल्बम निकाला था जिसका नाम था पंटेरा। हालांकि ये एल्बम 1983-84 में रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन इसे रिलीज करने में बहुत वक्त लग गया था। बहुत मन से उन्होंने इस एल्बम को तैयार किया था। वैसे पंचम ने हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी गाने देने का कमाल भी किया। यश चोपड़ा की फिल्म दीवार 1975 में आई थी, जिसमें पंचम ने उर्सुला वाज से ये गाना गवाया था।

वैसे पंचम ने कई पाश्चात्य धुनों को बहुत अलग अंदाज में अपनी पैकेजिंग के जरिए अपना बनाया, नया रूप दिया और उन्होंने इसे हिंदी में पेश किया। जैसे फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा असल में टेमिस रूसो का बनाया हुआ है और ये एक ट्रेडिशनल साइप्रस ट्यून है। पॉप सिंगर अब्बा का एल्बम आया मामा मिया, इस गाने से प्रेरित होकर पंचम ने बनाया।

इसी तरह से बॉन जोरा का एक गाना है, इफ इट इज वेडनेसडे इट मस्ट बी बेल्जियम। इस गाने का हिंदी रूप पंचम ने बनाया फिल्म यादों की बारात में।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने पंचम की गाथा सुनाई। हमने पंचम के कुछ गानों के बनने की कहानी, ध्वनियों के उनके अभिनव प्रयोग भी बताए। पंचम की ये दास्तान कभी खत्म नहीं हो सकती। उनका संगीत संसार इतना विस्तृत और विराट है कि आधे घंटे के इस समय में उसको समा पाना संभव नहीं है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार आर डी बर्मन पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे

0: विविध भारती।
1: आइए सुने गीतों भरी कहानी, आइए सुनते हैं
2: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। आप सुन रहे थे आकाशवाणी का ये बालाघाट केंद्र है। जिले की चिट्ठी अब रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
3: जिले की चिट्ठी। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है आगर मालवा जिले की चिट्ठी। आलेख महेश शर्मा, वाचन स्वर दीपा सिंह। आगामी वर्षा काल को देखते हुए आगरमालवा जिला कलेक्टर प्रीति यादव ने बाढ़, अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी विभागों को आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए हैं। गत दिनों हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से कहा है कि आपदा की स्थिति में त्वरित और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी विभाग अपनी कार्ययोजना तैयार रखें और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा पर्व पर आगरमालवा जिला मुख्यालय स्थित मोती सागर तालाब में आयोजित गहरीकरण और सफाई कार्य में प्रदेश के उच्च तकनीकी शिक्षा और आयुष विभाग के मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल हुए। इस दौरान मोती सागर तालाब में साफ सफाई कार्य किया गया। वहीं जन अभियान परिषद द्वारा जिले के विभिन्न विकास खंडों और गाँवों में जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता को लेकर जल स्रोत पूजन, गंगा कलश यात्राएं, सामूहिक श्रमदान और जन जागरूकता गतिविधियों से ग्रामीणों को जल संरक्षण का संदेश दिया गया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आगर मालवा जिला अस्पताल में स्थापित तंबाकू व्यसन मुक्ति केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने, आमजनों को इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही तंबाकू सेवन से होने वाले कैंसर, हृदय रोग, सांस संबंधी बीमारियों और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश शासन द्वारा समान नागरिक संहिता UCC के संबंध में अध्ययन और परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की पिछले दिनों आगर मालवा स्थित कंपनी गार्डन के नवीन मांगलिक भवन में समिति के सदस्य प्रोफेसर गोपाल शर्मा की उपस्थिति में जन परामर्श बैठक हुई। इसमें जन प्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों और अन्य वर्गों के लोगों ने विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार और सुझाव पेश किए। कृषि कल्याण वर्ष के अंतर्गत आगरमालवा स्थित पुरानी कृषि उपज मंडी में प्राकृतिक खेती संवर्धन और खेत बचाओ अभियान के तहत पिछले दिनों आयोजित हुए एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि वर्तमान समय में धरती माता और मानव स्वास्थ्य दोनों को बचाने के लिए प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन का स्वरूप देना आवश्यक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आगरमालवा नगरीय क्षेत्र के पात्र 243 हितग्राहियों को पिछले दिनों विधायक मधु गहलोत ने स्वीकृति पत्र सौंपे। गौरतलब है कि पहली किश्त के रूप में 1-1 लाख रुपए के मान से 2,47,00,000 रुपए सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत हर घर जल बेहतर जल के तहत पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ और बेहतर बनाने के उद्देश्य से आगरमालवा जिले के नलखेला नगर में 11 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन पिछले दिनों क्षेत्रीय विधायक भैरव सिंह परिहार ने किया। योजना के अंतर्गत कुंडालिया बांध से फिल्टर प्लांट तक 16 किलोमीटर रॉ वाटर पाइपलाइन, विभिन्न स्थानों पर उच्च क्षमता की पानी की टंकियों का निर्माण, पाइपलाइन विस्तारीकरण, नल कनेक्शन और फ्लोटिंग इंटेक वेल सहित अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। आगर मालवा जिला पंचायत सभागृह में गत दिनों हुई पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक में CEO BS सोलंकी ने कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, टीकाकरण, क्षीरधारा, ग्राम योजना, दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान, मैत्री योजना, गौशाला संचालन और गौरस ऐप के उपयोग और प्रगति की जानकारी ली। जिले के नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा सर्वसिद्ध पीठ मां बगलामुखी मंदिर में हवन पूजन, विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के संचालन के लिए पुजारियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की जांच और पात्रता परीक्षण प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए जिला प्रशासन ने टीम गठित की है। जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि में मत्स्य प्रजनन काल होने से कलेक्टर ने जिले के जलाशयों में मत्स्य खेत पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। नियमों के उल्लंघन पर उल्लंघनकर्ता को 1 वर्ष का कारावास या 5,000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। आगर मालवा कलेक्टर प्रीति यादव ने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी आवश्यक पात्र हितग्राहियों का EKYC निर्धारित समय सीमा 30 जून तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए ताकि योजना के आगामी किस्तों का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त हो सके। वृद्धजनों को जागरूक करने के उद्देश्य से आगरमालवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बीते दिनों वृद्धाश्रम में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में द्वितीय जिला न्यायाधीश मधुसूदन जंघेल ने वृद्धजन के खान पान, स्वास्थ्य से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा करते हुए नालसा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा योजना और वरिष्ठ नागरिकों माता पिता के भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों की जानकारी दी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से। 10:05 हुए हैं, दिन शनिवार का है, तो हम जानते हैं कि आपको होगा इंतज़ार उस कार्यक्रम का जिसमें आप सुनेंगे अपनी पसंद के गीत। जी हाँ, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं रजनी। तो सबसे पहले जो पहला गीत है वो आप सभी श्रोता साथियों की फरमाइश पर है। गोंदिया महाराष्ट्र चारगांव से हर्षित मेश्राम, संघवी मेश्राम, शौर्य मेश्राम और दीक्षा मेश्राम साथी हैं गार्गी मेश्राम। वार्ड नंबर 4 देवटोला बालाघाट से हैं। मारुति बसेने, मीरा बसेने, अजय, सुनीता, ममता, संजय, रश्मि, विजेंद्र, कुहू, श्रेया और वीर बसेने। आप सभी की पसंद पर आपको सुनवाते हैं मनोहर उदास की आवाज़ में निदा फाजली का लिखा गीत। संगीत उषा खन्ना का है और फिल्म का नाम है आप तो ऐसे न थे।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फरमाइश है आप सभी की। ग्राम बोदा जिला बालाघाट से हैं राजेश गुमा से, रेखा गुमा से, मारुति रुद्र दिशा दक्ष विमलाबाई गुमा से, अनिल सुनील गुमा से, सहदेव लिल्हारे, मनोज सुखदेव, हेमराज, आकाश, विकास और दक्ष लिल्हारे।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: मरारी मोहल्ला वार्ड नंबर 7 बालाघाट से दिलीप कामरी, बबीता कामरी, रोशनी कामरी, भूमिका कामरी, लांची बालाघाट मड़ई टेकरी से धन्नू नागमारे, प्रेमलता, विजय और अजय। आप सभी की पसंद पर आइए सुनते हैं दीवाना फिल्म का गीत, कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में। समीर के बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत है।

अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज में ये थी इब्राहिम अश्क की रचना, संगीत राजेश रोशन का था, फिल्म का नाम था आप मुझे अच्छे लगने लगे। पसंद थी आप सभी श्रोता साथियों की। लाल बर्रा बालाघाट से राजेश सोनवाने, उषा नंदिनी सोनवाने, निहारिका, निखिल और निहाल। ग्राम नेत्रा पोस्ट लिंगा बालाघाट से कमल सोलाखे, धुरन सोलाखे, दुर्गा सोलाखे, सेजल मन, मनुष्का, कनिष्का और हितेंद्र सोलाखे। कार्यक्रम की अगली पेशकश है आप सभी श्रोता साथियों की पसंद पर। वार्ड नंबर 24 सुरभि नगर बालाघाट से एफएन पटले, सुरेंद्र पटले, नरेंद्र पटले, अंकित और केसर पटले। ग्राम मांझापुर पोस्ट कनकी बालाघाट से हैं गोधन पटले, भूमेश्वरी, प्रियंका और खिलेंद्र पटले। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में समीर का लिखा गीत। फिल्म का नाम अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, संगीत अनु मलिक का।

आपको पहले भी कहीं देखा है, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब आप सुनेंगे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। समीर के बोल हैं, निखिल विनय का संगीत और पसंद आप सभी की। ग्राम सिहोरा तहसील किरनापुर जिला बालाघाट से गोधन मोहारे, दीपक मोहारे, अनवी और अभी मोहारे। ग्राम चिचेवाड़ा पोस्ट बहेला लांजी से भगीरथ लेल्हारे, पंछी कुहू भूषण और दशाराम लेल्हारे।

भूल भुलैया फिल्म का ये गाना था श्रेया घोषाल और एमजी श्रीकुमार की आवाज़ में। समीर के बोल थे प्रीतम का संगीत। पसंद गणेश नगर गोंदिया से नरेश श्रीवास, पद्मा, सोनल श्रीवास, प्रमोज मन, विनोद, सुनीता और रेखा श्रीवास। और ग्राम पोस्ट कारंजा तहसील लांजी से सतानंद मटाले, परमानंद मटाले, गौरी शंकर दहीकर, मनीष दहीकर, कामता प्रसाद नंदनवार, नवीन नंदनवार और सुरेश पड़तेगी। इसी के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं संपन्न होता है।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद अभी आप सुन रहे थे। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। 11 बजने जा रहे हैं, अब आप आनंद ले सकेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिनमें आज याद कर रहे हैं हम संगीतकार और गायक राहुल देव बर्मन को।

0: अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एमएसएमई इकाइयों को 225 करोड़ 19 लाख और स्टार्टअप को लगभग 39 लाख रुपए की राशि अंतरित करेंगे। समिट में 2000 से अधिक प्रतिभागियों, जिनमें एमएसएमई उद्यमी, स्टार्टअप, वित्तीय संस्थान, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एवं महिला स्व सहायता समूह शामिल होंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। शुरुआत में यह सेवा राज्य के 14 प्रमुख शहरों में शुरू की जाएगी। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज से 2 दिवसीय दौरे पर बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत कुकरू में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से बातचीत करने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। अगले दिन मुख्यमंत्री स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित गतिविधियों का अवलोकन करेंगे। वहीं पौधरोपण कार्यक्रम के बाद कॉफी प्लांटेशन का निरीक्षण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से गुना जिले के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री सिंधिया ने आज सर्किट हाउस में लोगों से भेंट कर उनकी शिकायतें सुनी। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत कंजा गांव में पौधरोपण किया। श्री सिंधिया का रुथियाई क्षेत्र में एक सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें आरोग्य सेतु 2.0, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक, नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज और स्वास्थ्य मानक शामिल हैं। वहीं श्री नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद इसकी रफ्तार फिलहाल थम गई है। अगले 2 से 3 दिनों में इसके फिर सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, शहडोल और सागर संभागों के 43 जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में सिंहस्थ 2016 के अनुभव 2028 का संकल्प विषयक कार्यशाला का शुभारंभ किया। कटनी जिले में कल राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का व्यापक आयोजन किया जाएगा। खंडवा जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के प्रति जागरूकता के लिए आज विशाल रैली आयोजित की गई। नरसिंहपुर जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी

0: Prime Minister Modi and what he's done. I mean,
1: प्रधान मंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है। एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
3: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
4: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
2: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
4: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
5: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that the contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
2: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण

0: एसआईआर अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा, जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेश रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉर्थ फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित

0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ एक एक गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: किशोर कुमार की आवाज में जहरीला इंसान फिल्म का गीत आपने सुना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से

0: बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

यादों की बारात फिल्म का गीत आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल तर्ज राहुल देव बर्मन की। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

राहुल देव बर्मन की तर्ज आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज़ में इस गीत को लिखा शैलेंद्र ने। फिल्म का नाम छोटे नवाब। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: प्यार हुई।
1: किशोर कुमार की आवाज़ में बुढ़ा मिल गया फिल्म का गीत आपने सुना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नकमे। सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में शौकीन फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है योगेश ने, संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: मन चाहे गीत,
2: मन चाहे गीत,
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

मन चाहे गीत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। जैसा कि आप जान ही गए इस कार्यक्रम में जो चिट्ठियाँ भेजनी है, पसंद भेजने की क्या तकनीक है और किस तरह से इसे भेजना है, क्या नियम है। और अब ये जान लेते हैं कि कार्यक्रम में पहला गीत किसकी पसंद से शामिल होने वाला है। तो पसंद है आप सभी की छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिए, राधिका गजभिए, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिए, साथ ही सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। आप सभी की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं। अजनबी फिल्म से एक गीत सुनिए, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

विविधारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और अगला गीत कौन सा है उससे पहले बता दें कि किसकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं गीत। पसंद आई है अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी परमानंद, सौरभ गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू डुंडुन और उनके परिवार की। और आप सभी ने पसंद किया है मुकेश की आवाज में हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। तो सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

मुकेश की आवाज में हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत आपने सुना आनंद बख्शी के बोल कल्याण जी आनंद जी का संकेत। कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला गीत है कन्यादान फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज में ही ये गीत है। नीरज के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। इसकी फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ देवरी भाटा पारा से गन्नूलाल रजक, के आर एस, अश्विनी कुमार और गणेश राम ने। साथ ही पुणे से पंकज वाड़ोदे, आर्या, प्रियंका, बीटी बाड़ोदे और चंद्र प्रभा बाड़ोदे ने भी कन्यादान के इस गीत को सुनना चाहा है। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं गीत।

तो कुछ इसी तरह से खत हम तक पहुंच रहे हैं, आप सभी के मनचाहे गीत कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और आपकी फरमाइशें पूरी हो रही हैं आपके नाम के साथ। तो हमारे साथियों ने अलग अलग तो खत भेजे हैं अलग अलग जगहों से। एक ही गीत की जब फरमाइश आती है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। हालांकि अगला जो गीत है वो अलग अलग फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है और ये फरमाइश हमें भेजी है गुलाबरा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से भाई राजू निखाड़े, अनिता निखाड़े, ऋषभ और सुरेश निखाड़े ने, और साथ ही बड़ा बाजार देवास से जाकिर हुसैन नजमी, तस्लीम नजमी, मुर्तजा नजमी ने भी अलग अलग फिल्म का यही गीत सुनना चाहा है। तो चलिए आप सभी की पसंद पर लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए अलग अलग फिल्म से आनंद बख्शी के बोल से सजा ये गीत, जिसे राहुल देव बर्मन ने संगीत से सजाया।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अलग अलग फिल्म का ये गीत आपने सुना, राहुल देव बर्मन की तर्ज आनंद बख्शी के बोल। कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला जो फरमाइशी गीत है वो भाभी फिल्म से है और इस गीत के लिए फरमाइश भेजी है आप सभी ने सांगवड़े कोल्हापुर महाराष्ट्र से जिन राव, पृथ्वीराज ऋतुराज पाटिल, प्राची प्राजक्ता प्रगति पाटिल, आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं भाभी फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा, चित्रगुप्त का संगीत।

वाघे, तनुश्री, आरोही और कान्हा वाघे, आप सभी ने फरमाइश भेजी है वंदना फिल्म के गीत की। आप सभी की फरमाइश पर ये गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज, असद भोपाली के बोल, रवि का संगीत।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं। कार्यक्रम का अंतिम गीत किनकी पसंद पर हम सुनवाने वाले हैं, आपको बता दें, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकी पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकर लाल गंगराड़े, वनिता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े, ग्राम छैगांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, उपेंद्र वाघे, झवर

वंदना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, असद भोपाली के बोल रवि का संगीत। इसके साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इसके साथ अपनी दोस्त नेहा शर्मा को भी दीजिए इजाजत, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। आज के इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं कटीला रास्ता, इस नाटक का पहला भाग। ये नित्यामूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत पाते का हिंदी रेडियो रूपांतर है। रूपांतर किया है ए शौर्य राजन ने। निर्देशक हैं वीपी दीक्षित बटुक।

0: डॉक्टर रतनगिरी, मेरी ओर से हार्दिक बधाइयां।
1: भारती,
0: अब मैं केवल आपकी भारती नहीं हूँ, समझे? अब मैं हूँ डॉक्टर भारती, MBBS।
1: फिर भी वो?
0: जी, मैं आपके गांव की हम पेशा लेडी डॉक्टर हूँ।
1: भारती सुनो तो।
0: अब छिपाओ दोराव अच्छा नहीं लगता डॉक्टर साहब। आपकी प्रेयसी और भावी पत्नी डॉक्टर उमा देवी मेरी परम प्रिय सखी हैं, कम से कम इस बात को मत भूलिएगा।
1: ओ भारती, कृपा करके मेरी बात तो सुनो।
0: उसकी कोई जरूरत नहीं, सब जानती हूँ। मंगल ललूर गांव के बड़े रईस श्रीमान मरुद नायकम के इकलौते सुपुत्र हैं आप, और मद्रास शहर के बहुत बड़े व्यापारी की इकलौती सुपुत्री है डॉक्टर उमा देवी। दोनों का शुभ।
1: लेकिन भारती, इसमें तुम्हारी भी गलती है।
0: मेरी गलती? बातें तो बड़ी ऊंची की थी आपने, कहां गई वो सब बातें?
1: मैं भूला नहीं हूं। ये सही है, हमने निश्चय किया था कि हम एक साथ पढ़ाई पूरी कर जीवन साथी बनकर गांव लौट आएंगे और जनता की सेवा करेंगे।
0: लेकिन हमारा वो निश्चय, वो संकल्प अब कोरा सपना हो गया है।
1: कोरा सपना नहीं हो गया भारती, समय तथा युग के अनुसार थोड़ा बदल गया है बस।
0: समय और जमाने के मुताबिक पैंतरे बदलना, रंग बदलना किरकिटों का काम है, पढ़े लिखे उपाधिधारी और विचारवान व्यक्तियों का नहीं है, समझे?
1: इसीलिए तो मैं विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने की कोशिश में।
0: हाँ हाँ, आप उसी कोशिश में हैं, मैं जानती हूँ आपकी कोशिशें। भावी ससुर साहब की सहायता से विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने वाले हैं आप, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए।
1: भारती, भारती तुम मुझे अब भी समझने की कोशिश नहीं कर रही हो।
0: खूब समझ गई हूँ आपको डॉक्टर साहब। विदेश जाकर पढ़ना और बहुत बड़े रईस की इकलौती बेटी का जो लेडी डॉक्टर भी है पति बनना, ये दो बड़े लक्ष्य आपकी आंखों पर पट्टी बांध चुके हैं, की हुई प्रतिज्ञाओं को भुलवा चुके हैं।
1: भारती, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बना करती, जिंदगी बसर करने की बुनियाद है पैसा। प्रेम के साथ पैसा भी हमें चाहिए।
0: वाह, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बन सकती, खूब कहा आपने। दौलत की बुनियाद पर प्रेम का दुर्ग खड़ा करना चाह रहे हैं आप, कीजिए, शान से कीजिए।
1: भारती देखो, तुम्हारी पीड़ा समझ रहा हूं मैं। हम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी इसी बात से तुम बहुत दुखी हो और मुझ पर अपना क्रोध उतार रही हो। देखो भारती, समझदारी इस बात में है कि हम कैसे अपनी जिंदगी बेहतर बना पाते हैं। जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में रहना और उसी के अनुसार सोचना कोई गलत काम नहीं है। अच्छा तो यह है कि हम बीती बात भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें और भविष्य पर दृष्टि रखें।
0: अतीत को भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें, ठीक ही है। होशियारी से जिंदगी गुजारने की सोचना तो जरूरी है, क्यों ना सोचा जाए।
1: मुझे खुशी है कि तुम समझने लगी हो अब।
0: जी हाँ, समझने लगी हूँ।
1: रियली?
0: हाँ, जिंदगी चाहे जैसे नहीं गुजारनी है, गुजारनी है अपनी इच्छा और अपने लक्ष्य के अनुसार। जीवन के इस सच्चे सिद्धांत को समझ गई हूँ मैं।
1: भारती,
0: सिर्फ भारती नहीं, I am डॉक्टर भारती। डॉक्टर रतनगिरी, आपके शानदार जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं, मुझे आज्ञा दीजिए। बाय बाय।
2: भारती, ये क्या बात है, मेरी शादी में नहीं आ रही हो? तुम्हारा बाहर जाना इतना जरूरी है क्या?
0: अब क्या करूं उमा, मेरी इच्छा तो यही है कि तुम्हारी शादी के मौके पर जरूर रहूं, लेकिन कर्तव्य को भी नहीं डाला जा सकता ना।
2: हाँ हाँ, बढ़िया ही कर्तव्य निभाने वाली। तुम्हारे गांव में ऐसा क्या कर्तव्य आ पड़ा जिसे निभाना जरूरी हो गया, बताओ तो जरा।
0: भविष्य में वो तुम्हारा भी गांव होगा उमा। ससुराल का गांव पीहर से कम नहीं है, और फिर तुम्हारे पतिदेव तो मेरे गांव के हैं।
2: तो तुम उन्हें जानती हो?
0: क्यों नहीं, भली प्रकार जानती हूँ मैं। उसी गांव

0: हूँ और मेरे मामा वहां रहते हैं। अच्छा ये बताओ, हनीमून के लिए कहाँ कहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया तुमने?
1: अब क्या बताऊं भारती, पापा ने आगे की पढ़ाई के लिए सारा इंतजाम करा दिया है। उनके व्यापार उद्योग क्षेत्रों के मित्र तो सब जगह फैले हुए हैं ना।
0: तब तो विदेश में आगे की उच्चतम शिक्षा का इंतजाम करा दिया होगा। ठीक है, उसे ही एक तरह से हनीमून समझो।
1: अब शादी में सिर्फ 10 ही दिन तो रह गए हैं, तुम इस बीच बाहर जाने का इरादा छोड़ क्यों नहीं देती?
0: अब मेरी विवशता है उमा, हमारे गांव के डॉक्टर बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनका काम चलाने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत है, उनका कार्यभार संभालने के लिए किसी ना किसी को तो जाना ही है, मैं ही वो काम संभालने जा रही हूँ।
1: तुम भी खूब हो भारती, शहर के डॉक्टर गांव में जाने से कतराते हैं, धंधा चले ना चले साइन बोर्ड लगाकर बैठ जाते हैं शहर में, और एक तुम हो गांव जाकर सेवा करने पर तुली हो।
0: इसीलिए तो जा रही हूँ, वरना आप लोग गांव चली जाओ कहकर भगा देंगे तो।
1: लेकिन फिर भी सिर्फ 10 दिनों की ही तो बात है।
0: आई एम सो सॉरी उमा।
1: ओफो भारती, तुम बड़ी हठी हो।
0: कुछ बातों में औरतों का हठीलापन अच्छा ही होता है और जरूरी भी है। अच्छा उमा, तुम्हारे सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ।
1: शुक्रिया।
0: मुझे आज्ञा दो।
1: तुम्हारे हट के आगे और चारा ही क्या है भारती।

0: भारती, उस हवाई जहाज को क्यों ताकती रह गई? खोई खोई सी क्यों खड़ी हो? अस्पताल नहीं जाओगी?
1: अभी जाती हूँ मामा, नर्स नागमणि के इंतजार में हूँ।
0: बुरा मत मानना भारती, तुम बड़ी डॉक्टर हो, तुम्हारे इंतजार में लोग रहे ये तो ठीक है, पर किसी और के इंतजार में तुम रहो ये जचता नहीं।
1: ये बात नहीं है मामा जी, मैं अपने काम की जरूरत के लिए इंतजार करती हूँ, किसी व्यक्ति के इंतजार में नहीं हूँ।
0: तुम ठीक अपने पिता की तरह हो, उन्हें राष्ट्र की स्वाधीनता, राष्ट्रीय संग्राम आदि के बारे में जितना लगाव था उतना ही लगाव तुम्हें अपने कर्तव्य के बारे में है। एक तरह का नशा ही चढ़ा हुआ था उन्हें, अब वैसा ही नशा तुम पर सवार है।
1: वो नशा नहीं था मामा जी, वो भक्ति थी। नशा तो जंगली नाले की तरह है, जो एक दिन उमड़ आता है तो दूसरे दिन उतर जाता है, पर मामा जी भक्ति ऐसी चीज नहीं है, वो तो सदा बहते रहने वाली धारा है।
0: मैं क्या जानूं बेटी, मैं ठहरा गंवार, खेत जोतकर रोजी चलाने वाला।
1: ऐसी बात नहीं है मामा जी, आपकी मेहनत और लगन की ही मेहरबानी है कि मुझे अनाथ लड़की को आपने पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया।
0: वो मेरा वचन पालन था जो मैंने अपनी बहन को दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में कूट पड़ते वक्त तुम्हारे पिता की उम्र 22 साल की थी, शादी के कुछ ही महीनों की बात है।
1: और माता जी?
0: उस समय यानी 30 साल पहले तुम्हारी माँ मेरे साथ रहती थी, तुम्हारे पिताजी जेल में थे।
1: फिर क्या हुआ?
0: देश के स्वतंत्र होने के बाद ही मैं घर में घुसूंगा, तब तक मेरे लिए घर गृहस्थी कुछ नहीं है, यही कहते थे तुम्हारे पिता।
1: और आजादी मिलने के बाद?
0: तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हारी माँ अपनी आजादी की खोज में चल बसी, शायद अधेड़ उम्र में प्रसव होने की वजह से यह हालत हुई होगी।
1: बेचारी दुखियारी माँ।
0: उसी व्यथा में तुम्हारे पिताजी भी खुल खुल कर मर गए, वे तुम्हारी माँ को बहुत प्यार करते थे।
1: स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में जो जमीन उन्हें भेंट की गई थी उसको लेने से तो पापा जी ने इनकार कर दिया था ना?
0: और क्या, टुकड़ा भर जमीन मिलेगी इस अरमान से थोड़े ही उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। खैर उस बात को जाने दो, मैं तो दूसरी ही बात कहने आया था, भूल ही गया।
1: क्या बात है मामा जी?
0: हाँ याद आ गई, इस बात का ख्याल रखना बेटी, यहाँ के सरपंच मरूद नायकम, बड़े मीरास्तार रईस कुमार स्वामी जैसे लोगों का मन रखना भी जरूरी है, उनसे झंझट मोल लेना ठीक नहीं होगा। इन लोगों के सहयोग से ही ये

0: आम अस्पताल बना है और इन्हीं के सहारे ये चल रहा है।
1: काफी देर हो गई है, नर्स नागमणि अब तक नहीं आई। मैं चली जाती हूँ मामा जी।
0: ठीक है, मेरी बात याद रखना, तुम आखिर एक लड़की हो, ये मत भूलना।
1: हाँ हाँ, आप चिंता ना करें मामा जी।
2: डॉक्टर साहब, चार दिनों से बुखार लगातार चल रहा है, बहुत बहुत कमजोर हो गया हूँ। जरा कह दीजिए बिना पानी मिलाए अच्छी दवा देने।
1: मिक्सचर वाली दवा तो पानी के बिना नहीं बन सकेगी। टिकिया लेंगे आप? ऐसा ही लिख कर दे देती हूँ, दुकान से खरीद लीजिएगा।
2: डॉक्टर जी पैसा नहीं है। डॉक्टर जी
1: कोई बात नहीं, ये लीजिए पैसे।
3: डॉक्टर साहब, उस आदमी को दवा मत दीजिए, वो हमारे रईस जादे कुमार स्वामी जी के दुश्मन का आदमी है।
1: तुम आ गई नागमणि, इतनी देर कैसे हुई? इस आदमी को दवा देने से रोक क्यों रही हो?
3: एक ही करके पूछी ना।
1: कहो तो।
3: वो अपने पंचायत प्रेसिडेंट है, उनके घर जाना पड़ा, उनको बुखार है।
1: ठीक है, फिर
3: आपको तुरंत ले आने को कहा।
1: क्यों, वो यहाँ नहीं आ सकते?
3: इस गांव का यही दस्तूर है, आप नहीं जानती बड़े लोग अस्पताल में कैसे आएंगे।
1: अफसोस, बुखार को इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि वो बड़े और छोटे लोगों को पहचान सके।
3: आप नई आई हैं, इसीलिए यहाँ के रीति रिवाज नहीं जानती, वरना ऐसा नहीं कहती।
1: मुझे अपने इस अस्पताल से ही मतलब है, मैं और कुछ नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती हूँ।
2: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मैं चलूं?
1: हाँ जा सकते हो भाई, पर देखो वो टिकियां जरूर खरीद लेना, रोज सुबह और शाम को खाना भोजन के बाद।
2: आप जुग जुग जिए डॉक्टर साहब, जुग जुग जिए।
3: डॉक्टर साहब, वो आदमी हमारे रईस साहब के दुश्मन का नौकर है, इसीलिए।
1: मरीज का ना कोई दुश्मन होता है ना दोस्त, डॉक्टर के लिए भी यही बात है।
3: ओफो, आप अभी छोटी उम्र की हैं, समझती नहीं है, मैं अनुभवी औरत कह रही हूँ, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। अब तक कई डॉक्टर आ चुके हैं, जा भी चुके हैं।
1: नागमणि, तुम एक नर्स हो, तुम्हारा काम दूसरों को धमकाना नहीं है, समझ रही हो?
3: लगता है तब तो आप प्रेसिडेंट के घर नहीं जा रही हैं।
1: प्रेसिडेंट हो या उससे भी बढ़ चढ़कर कोई और, अस्पताल उनके यहाँ नहीं जाएगा। अगर वो चाहें तो किसी बड़े डॉक्टर को घर बुला लाएं, ऐसी औकात है उनकी।
3: याद रखिए, ये अस्पताल उन्हीं की मदद से चल रहा है।
1: नागमणि,
3: जाकर यही कह दूं उनसे कि डॉक्टर साहब का कहना है आप किसी बड़े डॉक्टर को बुला लाएं, अस्पताल आपके घर नहीं आएगा।
4: वेदाचलम, लगता है भारती को गांव का कायदा समझ में नहीं आया है, नई उमंग है ना। मैंने सुना है नर्स नागमणि को नौकरी से हटाने की बात कर रही है, किस भुलावे में है ये?
0: नायकम जी, मैं समझा देता हूँ उसे, इस बार माफ कर दीजिएगा, आखिर तो आपकी दया माया से बना हुआ अस्पताल है ये।
4: नर्स हो या डॉक्टर, उसे नौकरी में रखना हमारी मर्जी पर है, समझे? नागमणि की कितने ही सालों पुरानी सर्विस है, उसे भर्ती बर्खास्त कराएगी, ये मजाल है उसकी।
0: नायकम जी, ये अपने बाप पर गई है, उसी की तरह ये भी थोड़ी तेज तबीयत की है।
4: तब इसकी भी उसके ही जैसी हालत होगी, मेरे ही अस्पताल में काम कर रही है और मेरे ही घर आकर इलाज नहीं करेगी। ये सब नहीं चलेगा यहाँ।
1: चिंता ना कीजिए, मैंने अपना इस्तीफा लिखकर दे दिया है।
0: भारती, तुम?
4: अच्छा तो ये बात है,
0: पर इस्तीफा क्यों दे रही हो बेटी?
1: क्योंकि इसी तरह मैं अपने अंतःकरण के अनुसार काम कर सकती हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ।
0: पर तुम्हें ये भी तो सोचना चाहिए था कि ये गांव के बड़े आदमी हैं।
1: मामा जी, मैं छोटी हूँ ना, बहुत छोटी हूँ, इसीलिए बड़े आदमियों के साथ सुलह कर चलना मुझे नहीं भाता, तभी तो इस्तीफा देकर बाहर आ गई हूँ।
4: सुना आपने?
0: इसके लिए मुझे खेद है साहब, मैं इस लड़की को समझा दूंगा।
4: ठीक है, देख लेंगे इसे भी, इस वक्त तो हम चले जाते हैं।
0: भारती, भारती, तुमने नागमणि के मामले में ज्यादती की है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें।
1: चुपचाप अन्याय को देखते रहना मेरे बूते की बात नहीं है मामा जी।
0: बिटिया, मैं बूढ़ा हो चला,

0: मरीज भी हूं। इस दशा में गांव वालों से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं। ओफ ओह, पता नहीं ये क्या कर बैठे।
1: दुष्टों धूर्तों के पल्ले ना पड़ूं, अपनी रक्षा कर सकूं, इतना होश मुझे है। आप चिंता छोड़िए मामा जी।
0: तुम भी अजीब लड़की हो। ओह, अरे सीना दर्द कर रहा है।
1: क्या हुआ मामा जी? मामा जी क्या हुआ? सीने में दर्द? अभी आती हूँ, थोड़ा अपने को संभालिए। अभी आई।
0: पानी, थोड़ा पानी, पानी। पसीना छूट रहा है।
1: ले जाइए, ये लीजिए पानी। भगवान, दिल के दौरे के कारण इनकी हालत है। मामा जी एक इंजेक्शन लगा देती हूँ, आप आराम से सो सकेंगे।

0: हेलो डॉक्टर भारती।
1: अरे उमा तुम अचानक यहाँ कैसे टपक पड़ी?
0: देख लो
1: क्या ससुराल की भूमि के दर्शन करने चली आई हो।
0: अरे भाई पहले आसमान से नीचे तो उतरो,
1: गाड़ी को तुम आसमान कहती हो।
0: ये लो उतर आई तुम्हारी धरा पर।
1: अरे ए उमा भैया अट्टहास कैसा?
0: अरे भाई पागलों की तरह हंसी चली जा रही हो, आखिर बात क्या है?
1: तुम्हारा रूप देखकर पागल हुई हूँ। क्या बढ़िया वेश बना रखा है तुमने, एक मामूली वॉयल की साड़ी, हाथ में ये छोटा सा बक्स, सीधा कंघी किया हुआ सिर। वाह ठेठ देहाती दाई माँ लगती हो।
0: ठीक ही तो है, लेडी डॉक्टर आखिर क्या है, दाई माँ का ही तो दूसरा रूप है।
1: तुम अपनी बात कभी काटने भी देती हो? बात बात पर काटने दौड़ पड़ने की तुम्हारी आदत गई नहीं आखिर?
0: मजाक मजाक छोड़ो उमा। अच्छा पहले ये बताओ तुम कैसे इधर आई?
1: जानम्मा
0: जी
1: ऐसा करो तुम ये बक्स लेकर घर चले जाओ। हाँ मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी।
0: जी बहुत अच्छा।
2: अच्छा पहले ये बताओ कि ये जानम्मा कौन है, तुम्हारी नई नर्स साहिबा?
0: हाँ उमा मैंने अस्पताल से इस्तीफा देकर अपनी अलग डिस्पेंसरी खोल ली है।
1: वो सब तो मैं पहले ही सुन चुकी हूँ।
0: ये जानम्मा उसी डिस्पेंसरी की नई आया है और इसी के साथ नया कंपाउंडर भी रखा है, अल्लाह बख्श।
1: अच्छा अच्छा
0: भाई दोनों ही जान लड़ाकर काम करते हैं, ये नए लोग पुराने लोगों से ज्यादा वफादार हैं। अस्पताल के मरीजों की सारी भीड़ को ये दोनों ही संभालते हैं।
1: तुम्हारे मामा जी का क्या हाल है, तुम्हारी नई डिस्पेंसरी से बड़े खुश होंगे वो?
0: खुश तो हैं उमा, पर बेचारे हृदय रोग से पीड़ित हैं, दिन पर दिन निर्जीव से होते जा रहे हैं, और फिर दूसरे मरीजों के साथ उन्हें भी संभालना होता है, और यहाँ की कमी कमजोरियों को तो तुम जानती हो।
1: भारती तुम सचमुच बड़ी ग्रेट हो, वरना इस मनहूस देहात में बिना किसी सुविधा सहूलियत के कैसे रह पाती? इतना बड़ा काम संभालना तुम्हारा ही हौसला है।
0: ऐसे मनहूस देहात मत कहो उमा।
1: तो
0: ये मेरी जन्मभूमि है, मैं इसकी कर्जदार हूँ, इस भूमि की सेवा से मुझे हौसला मिला है।
1: बस तुम जैसे तीन चार पागल जने और मिल जाएं।
0: अच्छा ये सब रहने दो, ये बताओ तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे पति महोदय क्या कर रहे हैं?
1: मैं आराम से वक्त काट रही हूँ।
0: हाँ अरे उमा ये क्या कह रही हो, विदेश जाकर पढ़ाई हो? और
1: मैं कहाँ पढ़ी थी, उन्होंने ही पढ़ा था, प्रशिक्षण पाया था, मैं सिर्फ साथ देने गई थी, डिग्री ले आई बस।
0: डिग्री ले आई हूँ, ऐसी डींग मारने भर से कोई फायदा नहीं है।
1: क्या बताऊं भारती, मेरे ससुराल वालों को भी मेरी पढ़ाई व नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं है।
0: उमा पहले तुम्हारा तो अपना एक इरादा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। अगर तुम्हें पैसा कमाने से कोई मतलब नहीं है तो सेवा भाव से ही तुम्हें इसमें लग जाना चाहिए था।
1: लेकिन मेरे पति भी ये चाहते हो तब तो?
0: ये बात है डॉक्टर रतनगिरी की ये मानसिकता, सचमुच वो बधाई के पात्र हैं। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारे पतिदेव डॉक्टर रतनगिरी आजकल क्या कर रहे हैं?
1: अरे तुम्हें नहीं मालूम, वो बहुत मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट हो गए हैं, मद्रास में बहुत बड़ा नर्सिंग होम बनवा लिया है, खूब प्रैक्टिस चल रही है।
0: तुम्हारी बात में एक छोटा सा सुधार है।
1: वो क्या?
0: बनवा नहीं लिया है, तुम्हारे पिताजी

0: बना कर दिया है।
1: तुम आकर देखोगी तो दंग रह जाओगी, कितनी नई नई मशीनें, औजार, साधन सामग्रियां हैं। इतना सजाया दजाया गया है कि देखकर तबीयत खुश हो जाती है।
0: क्यों ना हो, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट है ना,
1: अक्सर विदेश घुमाते हैं। हृदय रोग चिकित्सा संबंधी विश्व विशेषज्ञों की परिषदों, सभाओं व बैठकों में भाषण देने जाते हैं। बड़ा नाम है उनका।
0: हाँ हाँ जाना ही चाहिए। तुम साथ नहीं जाती? अच्छा क्या आजकल भी गए हुए हैं? तुम नहीं गई?
1: मैं जाने की स्थिति में नहीं हूँ।
0: अरे कॉन्ग्रेचुलेशन उमा, मेरी प्यारी उमा माँ बनने वाली है।
1: चुप है ना, कोई सुन लेगा तो मजाक उड़ाएगा। घर में चलो ना, नाश्ता करके जाना।
0: नहीं उमा प्लीज, देखो पहली बात तो यह है कि मैं डिलीवरी केस अटेंड करके आई हूँ, अब सब लोग छुआछूत मानेंगे, अंदर नहीं आने देंगे। और दूसरी बात, तुम्हारे पतिदेव के आने के बाद ही आऊंगी, नव दंपति को एक साथ देखना ही अच्छा है।
1: श्योर, जरूर आना, मेरी शादी में तो बहाना बनाकर चली गई थी।
0: अरे अब क्या बहाना बनाना है, जरूर आऊंगी उमा, जरूर आऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ।
1: ओके बाय बाय।

0: बाप रे बाप, बारिश तेज होती जा रही है। डिस्पेंसरी के बंद होने के बाद इसको भी बंद हो जाना चाहिए।
1: क्यों कंपाउंडर साहब, अब तक घर नहीं गए आप?
0: कैसे जाएं डॉक्टर साहब। आप रोज बरोज रहम धर्म की कमाई ज्यादा हासिल कर लेती हैं, लिहाजा बरसात भी ज्यादा होती है।
1: आप भी खूब है, आपको हर बात में मजाक सूझता है।
2: अरे वो तो कोई लड़की दौड़ी आ रही है।
3: हाँ, अरे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ी है।
1: बारिश में भीगती हुई दौड़ी चली आ रही है, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी हो गई?
3: अरे अरे, ये तो हमारी ग्राम सेविका शकुंतला है।
1: शकुंतला, क्या बात है बताओ।
4: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मुझे बचाइए, मेरा जीवन बर्बाद करके।
3: अरे अरे, ये तो बेहोश हो गई। हाय, इसकी तो साड़ी भी फटी हुई है, लगता है किसी ने इसके साथ ज्यादती की है।
1: पहले इस लड़की को अस्पताल के भीतर ले चलो, जल्दी करो।
3: चल चल
1: कंपाउंडर, वो बस ले आ जल्दी से।
5: बेटी, इस लड़की को पनाह देने से तुम खामखा झंझट मोल लोगी।
1: मामा जी, मैं इसको सिर्फ पनाह ही नहीं दे रही हूँ, इसे बर्बाद करने वाले को सजा भी दिलाकर छोड़ूंगी।
5: भगवान के लिए चुप रहो, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है।
1: मुझे किसी का डर नहीं है।
5: बेटी, कभी कभी सच्चाई को झूठ के सामने चुप हो जाना पड़ता है।
1: ऐसी बात नहीं है मामा जी, सच्चाई की जबान साफ सुथरी और नेक होती है। वह दूसरी है कि वह देर में खुलती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि झूठ के आगे सच्चाई गूंगी हो गई है।
5: लगता है इसके साथ
1: बड़ी भयावह स्थिति हुई है। ये बेचारी पड़ोस के गाँव से लौट रही थी, बीच रास्ते में तीन चार गुंडों ने इसे घेर लिया और उठाकर ले गए।
5: आगे मत कहो, प्राणों में एक आग सी लग जाती है, दिल दहल उठता है।
1: मामा जी, आपने दवा खाई थी, कल से आपका दिल दर्द कर रहा था ना, अब कैसे आप?
5: अब ठीक हूँ बिटिया, मैं काफी सावधानी बरतता हूँ।
1: मामा जी, अन्याय को आखिर मात खानी ही पड़ेगी।
5: भारती, तुम लड़की हो फिर अकेली भी हो।
1: मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा साथ देने वाला बड़ा शक्तिशाली है, वो है भगवान, और फिर मेरी चेतना भी मेरे साथ है, आप भी तो हैं। इतना ही नहीं मामा जी, गांव के गरीब लोग भी मेरे साथ हैं।
5: सुनने में तो सब अच्छा है, पर हकीकत यह है कि पूंजी और प्रभाव के धनी लोगों के सामने हम तिनके के बराबर हैं। मैं कहता हूं ये तुम्हारे बस की बात नहीं है।
1: क्यों नहीं है? डॉक्टर की हैसियत से मैं गवाह हूं, मैंने उसका इलाज किया है।
5: ये ना भूलो कि तुम मर्द नहीं हो।
1: काश मैं मर्द होती।
6: डॉक्टर अम्मा!
1: कोई दरवाजा खटखटा रहा है।
6: डॉक्टर अम्मा!
1: देखती हूँ कौन है।
5: रात के 10 बज चुके हैं।
6: डॉक्टर अम्मा!
1: अरे नागमणि, तुम क्या बात है, इतनी बेचैन क्यों हो?
6: मुझे माफ कर दीजिए, अभी मेरे साथ चलिए, मेरी छोटी बहन की जान बचाइए। डॉक्टर अम्मा, आपको बहुत पुण्य होगा, दया कीजिए।
1: तुम्हारी बहन को अचानक क्या हो गया है?
6: आपके पैरों पड़ती हूँ, बाहर बैलगाड़ी तैयार खड़ी है, मेरी बहन प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, आप चलकर नहीं देखेंगी तो वो बचेगी नहीं, बहुत नाजुक हालत है, जल्दी चलिए माई जी।
1: लगता है बहुत सीरियस केस है। मामा जी, मैं अभी आती हूँ, एक सीरियस केस है।

0: नागमणि, ये हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने तो कहा था कि घर नजदीक ही है।
1: चुप रहो, मकझक करने की कोई जरूरत नहीं है।
0: क्या कहा?
1: मुझे डराती हो?
0: तब तो तुमने झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया है। नागमणि, ऐसा क्यों किया तुमने?
1: जल्दी ही सब मालूम हो जाएगा।
0: छी, हंसती है, मक्कार कहीं की। ए, गाड़ी रोको। अरे रोकता है कि नहीं रोकता?
2: ए नागकर्णी, धमकाती है, जानती है हम कौन है?
1: बेचारी डर जाएगी। आप इस तरह मत हंसिए, बता दीजिए कौन है।
2: अरे हम हैं, हम इस गांव के बड़े रईस कुमार सानी।
0: अच्छा, वो बहुत बड़े रईस ज़ादे आप ही हैं?
2: क्या कहा?
0: यही कि गांव की बेसहारा लड़कियों को बर्बाद करने वाले सूरमा आप ही हैं। एक को पकड़ने के लिए आपने गुंडों को भेजा, अब मुझे पकड़ने इस औरत जात को भेजा है। शर्म नहीं आई आपको?
2: डॉक्टर ने ज्यादा उछल कूद मत कर, हम गांव के बाहर आ गए हैं। ये देख, सामने नाला बह रहा है।
0: ये धमकी सब किस लिए दे रहे हैं आप?
2: तू पुलिस केस कराने वाली है ना, उससे बाज आ जा बस।
0: शकुंतला पर किए जुल्म की बात कर रहे हैं आप?
2: हाँ वही। और अगर तू बाज नहीं आएगी ना, तो समझ ले उस लड़की जैसी हालत तेरी भी होगी।
0: इससे पहले ही मेरे हाथ करारा जवाब दे देंगे।
2: अरे इस नाले में बहा दी जाएगी।
0: नाले के पास ही अगर मेरे रक्षक छिपे हुए हो तो?
2: आ?
0: अरे कोई है?
3: अरे भागिए, भागिए मालिक, ऐसा ना हो कहीं लेने के तेरे।
0: कायर कहेंगे, छूट मूट का शोर मचाते ही भाग गए। अपनी गाड़ी तक ले जाने का होश नहीं रहा।
4: अभी आपने सुना नाटक कंटीला रास्ता का पहला भाग। ये नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत्य पाते का हिंदी रूपांतर था। रूपांतरकार ए शौर्य राजन और इसके निर्देशक थे वीपी दीक्षित बटुक। यह हमारे केंद्रीय नाट्य एकांश दिल्ली की प्रस्तुति थी। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे कल इसी कार्यक्रम में दिन में 3:30 बजे। अब नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
5: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
6: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
5: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
8: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
7: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: Sound, camera, action.
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं, फिल्मी दुनिया के जाने माने गीतकार। जी हाँ, आप हैं सुधाकर शर्मा, और जिन्होंने 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 5,000 गाने अब तक लिखे हैं, और भी न जाने कितना काम इस फिल्मी दुनिया में उन्होंने किया है। तो आज उन्हीं से जानेंगे उनकी दुनिया का सफर। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
3: मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
2: तो सबसे पहले हम तो यही जानना चाहेंगे कि आप कैसे हैं।
3: मंदाकिनी जी, हुआ ये कि हर आदमी अपने बचपन से प्रेरित होता है किसी भी काम के लिए। तो मैं गांव में रहता था, पलवल के पास मेरा गांव है। वहां हमारे एक चाचा थे, वो हमेशा ट्रांजिस्टर बगल में लटका के रहते थे। बिना ट्रांजिस्टर उनको आप देख ही नहीं सकते कभी। तो वहाँ गाने बजते थे, जब आता था अनाउंसमेंट कि आप अब शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गीत सुनिए, तो मुझे वो साउंड जो है ना, ऐसा लगता था कि काश मैं भी कुछ ऐसा कर पाऊँ कि मेरा भी ऐसे नाम आए कि अब आप शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ, सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ गीत सुनिए। तो ये प्रेरणा स्रोत बना मेरा आपका ये माध्यम, और मैं वहाँ से सफर तय करने के मतलब तैयारी में मुंबई तक आया।
2: ये 1973 में, 1973
3: में
2: हरियाणा से मुंबई आ गए?
3: नहीं, मैं हरियाणा से दिल्ली में था।
2: हाँ।
3: दिल्ली से मुंबई आया।
2: अच्छा।
3: मेरे पिताजी दिल्ली में टीचर थे, तो मैं दिल्ली में ही रहता था, और वहाँ से मैं यहाँ आया। और यहाँ आने की भी एक अलग कहानी है। मैं कोई सोच समझ के नहीं आया, मतलब मुझे आना था ऐसा मेरे मन में था, लेकिन कब जाऊंगा और कैसे जाऊंगा इसकी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उतने पैसे मेरे पास नहीं थे और आने का कोई सोर्स भी नहीं था। मेरे एक दोस्त हैं विजय त्यागी
2: जी,
3: वो धर्म जी के फैन थे, तो उसने बोला यार मुझे तो धर्मेंद्र बनना है, तो उसने बॉडी वॉडी भी अच्छी बनाई थी, उसका आने का प्रोग्राम बना और मेरे को बोले कि चल तू भी चल, और मैं उनके साथ आ गया और यहाँ बम्बई में बम्बई का होके रह गया। मैं पहली बार जब यहाँ आया देहरादून ट्रेन से उतरा, देहरादून एक्सप्रेस दादर, तो मेरे साथ मतलब पहली घटना ऐसी हुई कि हम तीन थे, एक जो तीसरा था वो हमारा गाइड था।
2: अच्छा, तीन दोस्त आए थे?
3: तीन दोस्त आए थे, मेरे दोस्त का वो दोस्त था।
2: अच्छा।
3: तो उसने बोला कि मैं जहाँ रहता हूँ वो बहुत बड़ी जगह है, और उस जगह पे ये नहीं जा सकता।
2: कौन? आप?
3: सुधाकर।
2: अच्छा।
3: बोला ये तो शक्ल से ही चोर लगता है, तो वहाँ कुछ हो गया तो।
2: अरे।
3: तो मैं दादर स्टेशन प्लेटफार्म पे रात को सोया, ये लोग दोनों चले गए।
2: अच्छा।
3: मैंने कहा भाई आप तो जाइए, फिर मैं रुकता हूँ। तो ये एक कार्यक्रम इस तरीके से बम्बई में मेरी पहली रात ओपनिंग हुई। दादर एक नंबर प्लेटफार्म के बेंच पे सोया, कभी कभी उस जगह पे जाके मैं खड़ा होता हूँ अभी।
2: उस पल को महसूस करते हो जब आपको ऐसा किसी ने कहा था?
3: याद आता है वो
2: जी। तो जब आपने कहा कि आप दिल्ली से यहाँ आए, तो क्या आप मुंबई गीतकार बनने ही आए थे या कुछ और विचार लेकर भी आए?
3: नहीं, मैं सिर्फ गीतकार बनने ही आया था, और मैं उस वक्त जो है ना बहुत बड़ा फैन था शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी साहब का और शंकर जयकिशन का।
2: अच्छा।
3: लेकिन मैं यहाँ जब आया तो मैं इन लोगों से कैसे मिलूं, क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। और कुछ दिनों बाद मेरे वो दोनों दोस्त भी चले गए, मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं यहीं कुछ ना कुछ करूंगा। इससे पहले रूटीन ये चल रहा था कि ये लोग घूमते थे, मेरे को ले लेते थे दिन में, और रात को वहां खाना खिला के छोड़ देते थे।
2: अच्छा।
3: पूरा खर्चा वही लोग।

0: करते थे। लेकिन फिर जब ये जाने लगे तो मैं रुक गया और मैंने सोचा कि अभी मुझे कुछ करना है। ये 4-5 महीने के बाद मैंने एक जगह नौकरी की ग्रैंड रोड पे, और वहाँ उस नौकरी के मेरा ये था कि कुछ 4-5 बाल्टी पानी नीचे से सेकंड फ्लोर पे उनको पहुँचानी होती थी भर के, और उसके बदले में वो टेरिस पे मुझे सोने की जगह देते थे।
1: कोई पैसा नहीं देते
0: नहीं,
1: थे।
0: पैसा नहीं देते थे। फिर कुछ दिनों बाद वो कुछ और, भाई ये चाय ले आओ, फलाना डालो, ये लेटर डालो, और कुछ पैसे भी देने लगे। तो वहाँ काफ़ी मेरा कुछ 1-1.5 साल लगा इस तरह से, मुझे फिल्म लाइन का कोई रास्ता ही नहीं मिला।
1: अच्छा, मतलब 1 से 1.5 साल लगभग आप यही काम करते रहे,
0: यही काम
1: ये
0: करता रहा।
1: संघर्ष जो
0: अब इसको
1: था।
0: आप संघर्ष कहें या कुछ भी कहें, उस मंजिल तक ही नहीं मैं मुड़ा जहाँ के लिए आया था। अब वो ही रोज उसमें चलता रहा। तो वहाँ पे मुझे 2-2.5 रुपये रोज के मिलते थे। तो वहाँ पे एक मुस्लिम होटल था जहाँ बड़ी रोटी मिलती थी, दाल फ्री होती थी, तो
1: अच्छा,
0: एक टाइम हम आराम से खा लेते थे, कोई टेंशन
1: इतना
0: नहीं
1: पैसा
0: था,
1: मिल जाता था
0: इतना
1: आपको।
0: पैसा मिल जाता था। तो वहाँ उस कंपनी में एक अकाउंटेंट थे, उन्होंने एक दिन कहा कि यार तुम क्या बनने आए हो। मैंने कहा यार बनने तो बहुत कुछ आया, लेकिन कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ तो काम ही कुछ और है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक जगह ले जाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। और मैं उनके साथ गया और वो मुझे शंकर जी के म्यूजिक रूम में लेके गए।
1: अच्छा।
0: और तब तक जय भाई तो नहीं रहे थे, शंकर जी थे। और वहाँ जब मेरा उनसे परिचय हुआ, मैं बता नहीं सकता उस पल की खुशी कि शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ, वही शंकर जयकिशन का रूम, वही शंकर जी, वही उनके स्टूडियो। तो मेरे लिए तो ऐसा था, मैं जन्नत में आ गया,
1: जी, सपने देखने जैसा।
0: सपने देखने जैसा। और यहाँ से इस पल से मेरे सपने साकार होने शुरू हुए फिल्म लाइन के।
1: तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
0: जी,
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: मैं मेरे उस्ताद जी का एक गाना सुनना चाहता
1: जी
0: हूँ,
1: बताइए।
0: और वो गाना है बहारो फूल बरसाओ मेरा
1: मेरा
0: महबूब
1: महबूब आया।
0: आया।

0: माता पिता से बात होती रही क्या? उन्होंने पूछा? और वो जो दोस्त आपको छोड़कर फिर चले गए, आप कह रहे हैं मुंबई,
1: जी
0: क्या
1: जी
0: उनसे भी कभी सामना हुआ?
1: हाँ वो हुआ, सब कुछ हुआ। वो भी मेरी खैर खबर लेते रहते थे,
0: हाँ।
1: और माता पिता तो लेंगे ही लेंगे। तो मैंने उनको एक, अपने माता पिता को एक थोड़ा सा झूठ बोला था कि मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, नौकरी मिल गई है, मैं यहीं रहूँगा और मुझे यहीं कुछ करना है। और उनको ये अंदेशा तो था कि फिल्म लाइन में कुछ करेगा। मेरे पिताजी ने एक ही बात करी कि भाई अगर तुम कुछ ऐसा करना चाहते हो कि जो बम्बई में ही हो सकता है, तो ठीक है आप करो, और जो भी आप कमा रहे हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप परेशान मत होना। जबकि कमाई वमाई कुछ थी नहीं, लेकिन एक एड्रेस था मेरे पास कि वहां से हम लोग बात कर सकते थे।
0: कुछ आपको उम्मीद भी बंधी कि मैं, मुझे कुछ करना है तो करना ही है।
1: जी जी जी
0: तो जैसा कि आपने कहा कि वो आपको शंकर जयकिशन के स्टूडियो में ले गए, जहां शंकर जी मिले, उसके बाद फिर क्या आपको पहला गीत मिल गया या
1: नहीं
0: आप
1: नहीं
0: शंकर
1: नहीं
0: जी के सानिध्य में रहे, कैसे
1: बस
0: क्या?
1: उनके सानिध्य में मैं उनके रूम में काम करता रहा, झाड़ू कटका पोछा जो भी मेरे को मिला मैं काम करता रहा।
0: अच्छा।
1: तो मुझे काम तो नहीं मिला, लेकिन क्या है कि वो शंकर जी के यहाँ एक बड़ा अच्छा सिस्टम था कि वहाँ पे सब खाने पीने की बड़ी

0: सुधाकर जी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना। आप ही का लिखा वही गीत था?
1: जी, मेरा ही लिखा हुआ।
0: अब अभी मैं ये आपसे तो नहीं पूछना चाह रही हूँ कि ये गीत आपने कैसे लिखा, लेकिन
1: नहीं, आप जरूर पूछिए। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ ये गीत मुझे मिला कैसे।
0: अच्छा, ये बताना चाहते हैं?
1: जी
0: भैया
1: जी
0: बताइए।
1: क्योंकि
0: चलिए।
1: ये मेरे कैरियर का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा गीत था। इससे पहले लगभग मेरे 240-245 गाने रिकॉर्ड हुए जो बड़े बड़े सिंगरों ने गाए और बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ किए, लेकिन कोई गाना मेरा बाहर नहीं आया
0: अरे, इतने सारे गाने करने के
1: इतने।
0: बाद भी?
1: हाँ, और नहीं आया तो मुझे ये मिला ऐसे कि मुझे आनंद राज आनंद जी मेरे मित्र थे और उनके साथ मेरा काफ़ी आना जाना था, तो मैं हमेशा उनको बोलता था यार मेरे से भी कुछ लिखवा लो। ये गीत मिलने से पहले मैं स्टैब्लिश डायरेक्टर हो चुका था
0: फिल्मों की।
1: फिल्मों, लेकिन वो चली नहीं, मैं भी चला नहीं। तो लेकिन ये गीत जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मेरे पास उस वक्त 2-व्हीलर था और बारिश हो रही थी, और उस बारिश में ये था कि 50 रुपये मैंने अपनी मिसेज को कहा कि पड़ोस से कहीं से लाओ, वो लेके आई, पेट्रोल डाला और मैं सहारा स्टूडियो आया। और सहारा स्टूडियो में आया तो वहाँ पे मुझे ये गीत लिखने के लिए मिला। उनके डायरेक्टर, उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई और मैंने ये गीत लिखा, और ये गीत लिखा और ये गीत मुझे लगा कि जैसे और गीत नहीं आए ये भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को कुछ वो नहीं था। तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिले इस गीत के, पहली बार इतने पैसे मिले मुझे।
0: तो हम ये माने कि जो पहला गीत सामने आया दुनिया के, वो ये था?
1: नहीं, वो कोई और था।
0: जी, बड़ा उलझा हुआ मामला है फिर
1: जी,
0: तो।
1: जी जी जी
0: तो बात चल रही थी कि आप हसरत साहब से मिले, आप शैलेंद्र

0: नहीं, वो
1: कोई
0: कोई और
1: और
0: था।
1: था। जी बड़ा उलझा हुआ मामला है फिर
0: जी जी
1: तो।
0: जी
1: तो
0: जी
1: बात चल रही थी कि आप हसरत साहब से मिले, आप
0: जी
1: शैलेंद्र जी से भी मिले, शंकर जयकिशन से मिले, तो हमारे मन में ये बात आ रही कि उनके साथ, क्योंकि आप 1973 में आ गए थे और आपने कहा कि लगभग 1978 के आसपास ये सब मुलाकातें शुरू हो गई थी,
0: जी
1: तो
0: जी
1: ये सफर कैसा रहा, किस तरह से आपने फिर गीत लिखना शुरू किया, या इन लोगों के साथ आपने वक्त को कैसे बिताया? इतना आसान
0: देखिए,
1: तो नहीं होता इतने बड़े
0: बहुत
1: लोगों के साथ।
0: बहुत मुश्किल होता है। इस सफर में मेरा अफसोस सिर्फ इतना ही रहा कि मैं शैलेंद्र जी से मिल नहीं पाया। वो उससे पहले उन डेथ हो गई थी उनकी।
1: अच्छा
0: लेकिन मैं चूंकि उनका फैन था, हसरत साहब में ही मुझे शैलेंद्र जी भी मिल गए और हसरत जयपुरी भी मिल
1: मिल
0: गए।
1: गए।
0: वो मुझे मिल गए और उस उन्हीं दौरान मेरी जो मुलाकात हुई वो पंडित नरेंद्र शर्मा जी से हुई।
1: अच्छा
0: और पंडित नरेंद्र शर्मा जी और शैलेंद्र जी एक ही गली के राइटर थे।
1: अच्छा
0: वो मतलब उनकी थॉट, उनका सोचना, तो उनसे मेरी काफ़ी मतलब मुलाकातें रहीं। और हसरत साहब के यहाँ जब मैं जाता था तो हम गीतों को जो डिस्कस करते थे, उनके सिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि वो कभी भी मेरे लिखे हुए गीत को रिजेक्ट नहीं करते थे।
1: अच्छा
0: वो कहते थे, ये लाइन तुमने लिखी है ना, इसमें तुम क्या कहना चाहते हो? तो मैं बोलता था, मैं ये कहना, तो उसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे कर लो, इस लाइन को यहाँ से निकाल दो, इसकी जगह ये ले आओ। मतलब मेरे ही गीत को वो सुधारते थे। वो कभी उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि ये क्या लिखा है, तो ऐसा मतलब उन्होंने कभी नहीं किया। वो हमेशा मुझे सिखाते थे, मैं करता था। और ये सफ़र एक ऐसा था कि मुझे एक दिन, मैं रात को पाली हिल पे घूम रहा था और हसरत साहब के यहाँ आने के बाद जो है ना, मेरे को ये था कि सोने का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब आना जाना मेरा लगा हुआ था। लेकिन ये मैंने एक झोपड़ा ले लिया था खेरवाड़ी में, और मेरी तब तक शादी भी हो गई थी, तो हम लोग मियाँ बीबी रहते ही थे वहाँ पे। तो वहाँ मेरी मुलाकात बहुत ही मशहूर कॉमेडियन मारुति साहब से हुई।
1: अच्छा
0: तो मारुति साहब जो ना, वो रात का समय था और अपने बरामदे में टहल रहे थे। तो मैंने उनको पहली बार टहलते हुए देखा, तो उन्होंने मुझे बुला लिया और मैंने उनसे बातचीत की। और उन्होंने भी वही क्वेश्चन पूछा, क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, ये सब। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कोई गीत सुनाओ। तो मैंने उनको सुना दिया। तो बोले कि तुम कल आओ। तो मैं नेक्स्ट डे पहुंचा। तो उन्होंने कहा, बेटा ये गीत वीत तो ठीक है, तुम टेक्निकल कुछ काम करो। मैंने कहा, जी वो क्या होता है? बोले कल आओ, हम तुमको बताएंगे। और वो मतलब मेरे को अपने साथ उन्होंने रखना शुरू कर दिया। और उनके साथ रहने से क्या है, मेरे को थोड़ा सा इंडस्ट्री का देखने को मौका मिला। और उनके ही द्वारा मुझे किशोर कुमार साहब मिले।
1: अरे वाह।
0: मारुति साहब मुझे वहां लेके गए और वहां उन्होंने मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया।
1: अच्छा
0: जी, और मैं किशोरदा के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर लग गया।
1: क्या बात है, तब तो किशोरदा तो गाने गा ही रहे थे, बहुत
0: वो तो
1: शानदार और
0: उनका
1: लेजेंड से थे वो
0: तो
1: तो।
0: क्या कहना।
1: बहुत सुंदर। आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
0: जी
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: तो मंदाकिनी जी, एक गाना जोड़ी नंबर 1 का टाइटल ट्रैक मुझे सुनाइए।
1: चलिए सुनते हैं आपकी
0: जी
1: पसंद का ये गीत।

0: जोड़ी है नंबर वन।
1: तो मतलब इतना संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद कुछ राहत की सांस आपको तब मिली जब आप किशोरदा से जुड़े।
2: किशोरदा के जुड़ने के बाद मुझे लगा कि अब तो मेरा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा।
1: हाँ, क्योंकि एक लंबा जुड़ाव रहा था किशोर कुमार के साथ आपका।
2: जी जी जी।
1: तो उनके साथ काम करने का अनुभव क्या रहा और किस तरह से फिर आपको सफलता मिलनी क्या शुरू हुई इस दौरान?
2: जी जी, मैं किशोरदा के साथ काम करने का मतलब ये हुआ कि मैं उस काम को काम नहीं कहता, एक ऐसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिला मुझे जहां सीखना ही सीखना था। वो आपके ऊपर है कि आप क्या सीखना चाहते हो, क्योंकि वो हर विधा में पारंगत थे। लिखना उन्होंने भी सिखाया, उन्होंने डायरेक्शन सिखाई, एडिटिंग सिखाई, उन्होंने कैसे किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए वो सब मैंने
1: वो
2: वहीं
1: तो
2: से सीखा।
1: वाला थे किशोर
2: बहुत बहुत और मैं उनको हमेशा साहब बोलता था, आज भी बोलता हूँ। उस घर के बहुत बड़े एहसान है मेरे ऊपर। वहाँ जाने के बाद ही मुझे लगा कि अब मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, और उसी घर से मुझे पहली डायरेक्शन की पिक्चर भी मिली। वो भी शायद इसी कारण मिली कि मैं उनका असिस्टेंट था, तो प्रोड्यूसर ने फेथ किया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और पहली फिल्म की डायरेक्शन मुझे वहीं से मिली।
1: जी, तो वो कौन सी फिल्म थी?
2: वो फिल्म थी गोरी।
1: गोरी?
2: और मेरे ये उसी दोस्त ने बनाई थी जो मुझे बंबई लेके आया था।
1: अच्छा।
2: विजय त्यागी।
1: विजय त्यागी।
2: उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए थे, तो एक दिन बोले चल यार कोई और नहीं तो मैं फिल्म बनाता हूँ, और मुझे उन्होंने डायरेक्टर लिया। और इसमें किशोरदा ने भी गाना गाया, और इस पिक्चर को करने के लिए मैं शंकर जी के पास गया और मैंने उनसे कहा कि शंकर जी मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें म्यूजिक दें। तो उन्होंने कुछ इतना पहचाना नहीं क्योंकि फासला काफी हो चुका था।
1: हाँ।
2: तो मैंने उनको याद दिलाया कि मैं कौन हूँ, तो बोले अच्छा जो कल तक हमारे यहाँ नौकरी करता था आज हमको नौकरी पर रखने आया है।
1: अरे
2: मैंने कहा जी नहीं, मैं कल भी नौकर था आज भी नौकर हूँ, मैं कल भी आपको मालिक समझता था आज भी है, बस ये फिल्म आप करेंगे तो मेरा थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कितने पैसे लाए हो? अभी हमारी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे ये पूछें कि लोगे कितना, कैसे करोगे, ये सब बातें तो हुई नहीं। उन्होंने पूछ लिया कितने लाए हो, तो हमने उनको कहा कि 21,000 हैं शगुन के, कहीं उनको ऐसा ना लगे कि टोटल इतने ही हैं। तो हम डरे हुए बहुत थे, तो उन्होंने कहा 1 रुपया और रखो इस पे। तो 1 रुपया रखा, उन दिनों कागज का चलता था। उन्होंने 21 छोड़ के 1 रुपया उठा के हमारी पिक्चर का, इसी में पूरी पिक्चर करूंगा।
1: अरे क्या बात है।
2: और उसी में उन्होंने की।
1: ये होते हैं महान संगीतकार, और उन्होंने समझा आपकी परिस्थिति को और बहुत बड़ी बात। तो उसके बाद उस फिल्म में भी आपको कोई गाना था या केवल डायरेक्शन ही था?
2: नहीं, मेरे गाने थे उसमें। मेरा पहला गाना उस फिल्म में मन्ना डे ने गाया था।

0: हाँ, मन्ना डे साहब ने वो गाना गाया था, और गाना था दुल्हन सेज है फूलों की, दहेज गमों के खार, दूल्हे का दहेज है जीवन में दुल्हन का सच्चा प्यार।
1: क्या बात है। यहाँ जब बात चल रही है गीत की, तो कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
0: देखिए आप मेरा एक गीत सुना दीजिए, फिर उस गीत की कहानी मैं आपको बताऊंगा।
1: अच्छा, कौन सा गीत?
0: मेरा वो गीत जिसने मुझे सुधाकर शर्मा बनाया, और पहला गाना जो रिलीज हुआ वो था ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम
1: क्या बात है।
0: की।
1: ये गीत तो हर एक के दिलो
0: जी
1: दिमाग में है,
0: जी
1: और
0: जी
1: अगर कहीं शादी ब्याह के या किसी फंक्शन में हम जाते हैं तो इस गीत पर तो बहुत सारे डांस क्रिएट किए
0: इस
1: जाते
0: गीत
1: हैं।
0: ने मेरी जिंदगी बना दी। मतलब
1: अच्छा,
0: ये गीत पहला गीत था जो मेरा रिलीज हुआ,
1: हाँ।
0: और उसके बाद जो है ना लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया। एक्चुअल में हुआ ये कि हिमेश रेशमिया साहब जो आज के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इनके पिताजी मेरे दोस्त थे विपिन भाई रेशमिया,
1: अच्छा।
0: और एक फिल्म में वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, मैं डायरेक्टर था। तो उन्होंने मेरे को कहा कि यार अभी हिमेश जी सीरियल बना रहे हैं तो आप इनके साथ लग जाइए। मेरे पास उन दिनों कुछ काम वाम था नहीं, क्योंकि उससे पहले मैं डायरेक्टर ये वो सब बन के सब फ्लॉप हो चुका था, एकदम बेकार। मतलब उस लायक था कि अब मैं काम मांगने भी कहाँ जाऊँ, क्योंकि लोग, मैं डायरेक्टर बन गया, दो तीन पिक्चरें मैंने कर ली लेकिन चला नहीं। तो अब शर्मिंदगी भी थी कि मैं काम कहाँ जाऊँ। तो मैं हिमेश जी के साथ जो है ना, उनके जितने सीरियल थे उनके सबके टाइटल मैंने ही लिखे।
1: अच्छा,
0: हाँ, ओके,
1: हाँ।
0: लगभग उन्होंने 40-45 कुछ ऐसे सीरियल उनके थे, लेकिन सबके मैं गाने मैंने लिखे। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे ढंग से अपने साथ ज्वाइंट किया। हमारा उम्र में बहुत फर्क था,
1: जी
0: तो एक दिन हिमेश जी बोले कि सर वो क्या है। मैंने कहा भाई तुम मुझे सर बोलो, मैं तुमको सर बोलूं, बस इसी में कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये सलमान भाई ने ये गाना हिमेश जी को दिया लिखने के लिए, प्यार किया तो डरना क्या
1: डरना
0: का
1: क्या।
0: टाइटल सॉन्ग था,
1: जी,
0: और हिमेश जी ने ये गाना मुझे
1: आपको
0: दिया।
1: दिया। हाँ।
0: और उन्होंने कहा कि सर ये पिक्चर अगर हमको मिली मिली है, अगर ये गाना आप लिखोगे तो गाना सुपर डुपर हिट होगा, और ऐसा होगा वैसा होगा।
1: तो
0: अब
1: हिमेश जी की ये पहली फिल्म थी?
0: पहली फिल्म थी उनकी, ये पहली फिल्म थी। तो मैंने कहा भाई लिख देंगे, लेकिन एक सवाल है हिमेश इसमें कि प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि जितनी उन्होंने अच्छी लिखी होंगी वो तो सब आ गई, तो हम लोग फंस जाएंगे यार। बोले नहीं नहीं सर, लेकिन वो तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि टाइटल ही वो है। तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। तो उस गाने को हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली,
1: ठीक है।
0: और कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे,
1: हाँ।
0: इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, सेकंड लाइन आप लिखो ही मत, बस इसको हुक लाइन रखेंगे।
1: अच्छा,
0: तो फिर मैंने लिखा तेरे प्यार में डूब गए हम खुद को ही, वो जैसा
1: हाँ,
0: वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम
1: तेरे
0: की,
1: नाम की।
0: और वो ऐसे नाम की चुनरिया ओढ़ी के उसके बाद फिर ये गाना गुलशन जी ने सुना, तो उन्होंने कहा कि एक गाना इस टीम का और ले लो। फिर हमको वो एक गाना मिला, और वो गाना था तुम पे हमें अटके आ रहा दिल भी मारे झटके।
1: क्योंकि तुम वो
0: हटके, तो
1: हटके।
0: ये दो गाने मेरे पहले रिलीज हुए और बहुत मजा आया। मैं और हिमेश बहुत नर्वस थे कि पता नहीं गानों का क्या होगा। तो लिबर्टी में हम लोग पिक्चर देखने गए थे,
1: हाँ,
0: तो हम लोग पिक्चर में इतना इंटरेस्ट नहीं था, हमको इंटरेस्ट था कि अपना गाना कब शुरू होता है। और जैसे ही अपना गाना शुरू हुआ और लोगों ने, मैंने पैसे बरसते हुए पहली बार देखे
1: अच्छा,
0: अपने गाने पे,
1: क्या बात है।
0: दोनों बहुत खुश हुए, और हमें लगा कि अब हमारी लाइफ बन गई, और वाकई में उस गाने ने हमारी लाइफ बना दी।
1: बस।

0: वैसे तो इस फिल्म के संगीतकार साजिद वाजिद साहब थे,
1: इसमें जतिन ललित जी भी थे, साजिद वाजिद भी थे और हिमेश रेशमिया भी थे, दो गाने हिमेश जी
0: और गीतकार भी, अन्य गीतकार भी थे
1: इसमें, समीर साहब भी थे, एक और गीतकार थे और
0: एक आपका
1: मैं भी था। और मुझे लगा कि इतने सब बड़े बड़ों में देखो क्या होगा, लेकिन
0: पर ये गाना तो मतलब आज भी सबकी जुबान पर है और सुनते ही एक अलग किस्म की थ्रिलिंग हो जाती है। इतना खूबसूरत तरीके से आपने लिखा है और हिमेश जी ने उसको संगीत में
1: बहुत
0: ढाला
1: सुंदर
0: है
1: इसमें,
0: और पिक्चराइजेशन भी बहुत सुंदर है इस
1: सबसे
0: फिल्म
1: बड़ा क्रेडिट इसमें मैं हिमेश जी को ही
0: का।
1: दूंगा, क्योंकि उन्होंने वो जो प्यार किया तो डरना क्या की ट्यून बना के जो मुझे बचाया सेकंड लाइन लिखने से, ये बस ऊपर वाले ने
0: बहुत
1: उनके
0: बड़ी बात,
1: दिमाग में
0: बहुत
1: डाली,
0: बारीक काम था
1: बहुत
0: ये, बारीक
1: बारीक काम
0: काम था।
1: किया। और हिमेश जी जितना भी काम करते हैं वो बहुत बारीकी में करते हैं
0: बिल्कुल
1: और बहुत धैर्य से करते हैं।
0: मुझे एक बात बताइए सुधाकर जी, आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी, आपने कहा कि इस गीत में मैंने एक पैंतरा डाला था, मैंने हिमेश जी से कहा था कि इसमें एक पैंतरेबाजी करनी पड़ेगी,
1: जी जी
0: तो ये पैंतरा क्या था और किस तरह से आपने इसको निभाया, हमारे
1: देखिए
0: श्रोता जानना चाहेंगे।
1: पैंतरा क्या है कि एक्चुअल में हसरत साहब बोलते थे कि जब कभी ऐसी जगह पे फंस जाओ तो उसमें पैंतरेबाजी से काम लेना चाहिए। वो पैंतरा क्या होता है कि मतलब अब जैसे कि प्यार किया तो डरना क्या कि सेकंड लाइन मैंने नहीं लिखी, तो पैंतरा ये था कि गाने को ऐसी जगह से शुरू करो कि लोगों को ये पता ही नहीं लगे कि कहना क्या चाहते हैं। अब हम कह रहे हैं तेरे प्यार में डूब गए हैं हम, खुद को ही भूल गए हैं, दुनिया चाहे जो, यहां से शुरू हो रहे तो उनको क्या मालूम ये क्या कहने वाले हैं। और ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, जब प्यार किया तो डरना क्या, हिमेश भाई ने इसकी ट्यून बनाई, ओ जब प्यार किया तो डरना क्या, ओढ़ली डरना क्या के बाद लोग खटके तो हमने दूसरा ही रंग दे दिया, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, ये
0: बहुत खूब,
1: ओढ़ली पैंतरा था।
0: बहुत सुंदर, मतलब एक बहुत बारीक काम था ये,
1: जी
0: जिसे
1: जी
0: हर एक को समझना आसान नहीं था।
1: जी जी
0: तो जब ये गीत आपने रिकॉर्ड किया, आपने अलका याग्निक और कुमार सानू को इस गीत
1: जी जी
0: में गवाया,
1: जी
0: तो क्या कोई दिक्कतें आपको पेश आई और किस तरह से ये गाना, क्योंकि गाना मिल तो गया लेकिन रिकॉर्ड किस स्थिति में हुआ उसकी भी
1: ये
0: कहानी होती है।
1: हाँ ये दिक्कत

0: इसमें बहुत बड़ी आई, और दिक्कत सबसे बड़ी ये आई कि हिमेश जी ये चाहते थे कि ये गाना अलका याग्निक और कुमार शानू गाएं। तो चूंकि उनका ये पहला गाना था और उनका ये था कि अगर ये दोनों गाएंगे तो सुपरहिट होगा, तो दादा को लाने में मैंने कहा ठीक है मैं लेके आता हूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता था, हम लोग काम कर रहे थे। तो मैं गया तो दादा को तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, मैंने दादा को बोला दादा एक फिल्म मिली है और उसमें आपको ये गाना गाना है। तो दादा बड़ा वाकई में वो टाइगर ही हैं
1: कुमार
0: वो,
1: सानू के
0: हाँ वो जो हैं बस वही हैं,
1: जी।
0: वो कभी कुछ बनावटी बातें नहीं करते हैं उसमें। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये कुछ नाराज हैं, वो नाराज वाराज भी कुछ नहीं होते, उनको खुद ही नहीं मालूम कि वो क्या उनको बोलना चाहिए और क्या बोल गए। बड़े भोले और बड़े डैशिंग आदमी हैं। तो मेरे को बोले हाँ ठीक है गा दूंगा गा दूंगा, कौन है म्यूजिक डायरेक्टर? तो मैंने कहा आपने एक दो गाने सीरियल में गाए हैं उसके, हिमेश भाई का म्यूजिक है। हाँ अच्छा अच्छा वो करता है वो, करूंगा करूंगा। प्रॉब्लम आई अलका याग्निक की,
1: अच्छा।
0: उनका अप्रोच नहीं हो पा रहा था। मैं जब भी उनकी बिल्डिंग पे जाता था तो वो ऊपर फोन करके पूछते थे तो वहां से मना हो जाता था, कई कारण रहे होंगे जो भी। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, तो मैंने कहा हिमेश भाई बाकी तो सब हो रहा है मगर उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो वो मुलाकात यूं हुई कि मैंने सेम बिल्डिंग में कविता कृष्णमूर्ति रहती थी, तो मैं नेक्स्ट डे गया, मैंने कहा मुझे कविता जी के घर जाना है। तो उन्होंने कविता जी के घर फोन लगाया और उन्होंने कहा भेज दो। अब मैं कविता जी के घर नहीं जाके अलका जी के घर चला गया।
1: अरे यहाँ पर आपने भी पैतरा
0: पैंतरा हो
1: खेला।
0: गया।
1: जी
0: और फिर अलका जी से मेरी बात हुई, अलका जी को मैंने कहा कि ऐसे ऐसे गाना आपको गाना है, मुझे जानती थी। तो उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, मैंने उन हिमेश जी का परिचय दिया, ये सब हुआ। तो बोले कि ठीक है लेकिन अभी तो क्या है मैं थोड़ी बिजी हूँ ये है वो। मैंने कहा गाना आपको गाना है और ये गाना कल ही गाना पड़ेगा आपको, वरना ये पिक्चर हमको नहीं मिलेगी और बहुत दिनों से मेरे पास काम वाम नहीं है तो अभी मिला है। तो बोले नहीं कल तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं चुप हो गया। बोले कल नदीम श्रवण की रिकॉर्डिंग है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं क्या गया वहां से निकला, और मैं निकलने से पहले वो गाना उनको कैसेट में लेके गया था, उनको सुनाया, गाना बहुत पसंद आया। तो मुझे लगा गाने के लिए तो रेडी हो गई है, अब ये कल नहीं गा पाएंगी क्योंकि
1: इनकी
0: उनका गाना
1: रिकॉर्डिंग
0: है।
1: है।
0: तो मैं सनी में पहुंचा और सनी में मैं गया तो उधर वो सिटिंग रूम में नदीम और श्रवण जी दोनों बैठे थे। तो मैं बार बार ऐसे उनको झांक के ऐसे हो जाता था, अभी मैं अंदर भी कैसे जाऊं। थोड़ी देर में श्रवण भाई बाहर आए, तो मैंने श्रवण भाई को बोला कि श्रवण भाई एक मेरी छोटी सी मदद कर दो यार, मैं बहुत परेशान हूं। तो उन्होंने तुरंत जेब में हाथ डाल के पर्स निकाला,
1: अरे
0: बहुत बढ़िया इंसान थे वो। मैंने कहा भाई ये वाली मदद नहीं।
1: अच्छा।
0: हाँ क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा ये वाली मदद नहीं, मदद ये चाहिए कि हमको एक पिक्चर मिली है और उस पिक्चर में एक गाना है, वो गाना हम अलका जी से गवाना चाहते हैं। तो अगर वो कल गाएंगी तो पिक्चर हमको मिलेगी, अदरवाइज वो नहीं मिलेगी। हाँ तो फिर क्या हुआ? मैंने कहा नहीं मैं अलका जी से बात हुई, वो आपका गाना गा रही हैं इसलिए हमारा गाना नहीं गा
1: नहीं
0: सकती।
1: गा पाएंगे।
0: तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे सामने ही अलका जी को कहा फोन करके कि ये सुधाकर जो है ये मेरा खास है, और कोई बात नहीं आप मेरा गाना 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद कभी भी गा दो, पहले इनका गा दो।
1: क्या बात है।
0: ये दिक्कत थी, लेकिन जब ये गाना एम्पायर में रिकॉर्ड हुआ और वो पल आया कि इन दोनों शहंशाहों ने गाया, और एक इसमें एक बात आ गई, मैं ये भूल गया कि मुझे ठीक से किसी ने बताया नहीं था कि इसमें काजोल हीरोइन है। तो मैंने हिमेश भाई को पूछा यार हिमेश भाई इसमें हीरोइन कौन है? तो उसने कहा सर काजोल। मैंने कहा यार गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हमने कहा यार काजोल के लिए तो इसमें कोई लाइन ही नहीं है। क्या मतलब? तो मैंने कहा वो अब मैं क्या बताऊं आपको सर, ये एक बार कुमार शानू को बुलाना पड़ेगा। बोले लेकिन हुआ क्या है? हमने कहा वो एक लाइन में काजोल के लिए लिखना चाहता हूँ, खासकर काजोल की आंखें जो है ना वो बड़ी कमाल हैं, और वो जो बातें करती है, जो जितनी
1: आंखें
0: बातें
1: बोलती
0: करती
1: हैं।
0: है सिर्फ उसकी आंखें बोलती हैं, बाकी सब तो ठीक है। और वो बात मैं कह नहीं पाया लेकिन मैं कह दूंगा। तो बोला ठीक है बुलाओ फिर आप ही बुलाओ। तो मैंने शानुदा को फोन किया, शानुदा शायद बर्थडे मना रहे थे अपना था या किसी और का मुझे याद नहीं।

0: मैंने कहा शानुदा, इधर भी एक पैंतरा चला। मैंने कहा शानुदा, एक्चुअल में जो लाइन गाने में प्रोड्यूसर ने पसंद की थी वो मैं आपको लिखवाना भूल गया, और जो रिजेक्ट थी वो आपने गा दी, और ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आप प्लीज आके वो लाइन सही कर दीजिए। अरे यार मैं बर्थडे में हूँ, सब चमकी उमकी पड़ी है कोर्ट पे, मेरा ये हाल है। मैंने कहा दादा गाना तभी लगेगा जब वो लाइन होगी। दादा आए,
1: अच्छा, दो लाइन के लिए भी आए।
0: एक ही लाइन थी,
1: अच्छा
0: दो तो मैंने बोली, लाइन तो एक ही थी।
1: जी।
0: और वो आए, और आते ही थोड़े से जरा प्यार में नाराजगी होती ना, हाँ यार तो बोल बोल कौन सी लाइन है, क्या है ये। हमने कहा सर ये मेरी लाइन है, वो तौबा तौबा ये आंखें करती हैं सौ सौ बातें।
1: अच्छा जी।
0: तो वो मेरे को तो हंसने लगा, बोला तेरा नाटक है, तूने अभी सोचा होगा ये। मैं कुछ बोला ही नहीं, और उन्होंने वो लाइन गाई, और वो गाने में सबसे अच्छी लाइन।
1: बहुत सुंदर थी, और काजोल की आंखें जब एकदम
0: जी
1: हाईलाइट होती हैं उस
0: जी
1: गाने में, और सलमान गाते हैं उनके
0: गाते
1: लिए,
0: हैं तो
1: बहुत
0: बहुत
1: प्यारा
0: अच्छा
1: लगता
0: लगता
1: है, बहुत सुंदर।

0: मतलब कहने का ये हुआ सुधाकर जी कि एक गीत को बनवाने में इतनी मशक्कत आपको करनी पड़ी, कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ा, तो जो आज नए गीतकार आने वाले हैं उनको भी ये सबक मिलता है कि इतना आसान नहीं है कुछ
1: नहीं
0: करना,
1: है।
0: है ना, कि हमने लिख लिया और हम गीतकार कहला गए, उसके पीछे कितनी संघर्ष की कहानी है।
1: संघर्ष की कहानी मतलब यह होता है कि अगर चूंकि मैं डायरेक्टर रह चुका था, मैं ये सब कर चुका था, मैं लाइन में मतलब नया नहीं था ना, तो मुझे वो मालूम था कि जो ये म्यूजिक डायरेक्टर जो चाह रहे हैं अगर ये फुलफिल होगा तो गाना और खिल के आएगा, और वो चूंकि नए थे तो मैं वो सब कर सकता था। तो कभी भी कोई भी गाना सिर्फ कागज पे हिट नहीं होता है,
0: बिल्कुल
1: उसके बहुत सी उसमें जो चीजें हमको डालनी होती हैं वो हम डालते हैं।
0: बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप गीत लिखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसके लिए गीत लिख रहे हैं, सिचुएशन क्या है।
1: हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस फिल्म का हीरो कौन है,
0: हाँ
1: हीरोइन कौन है, ये गाना क्यों गाया जा रहा है, ये गाना गाते वक्त जो है ना इनकी सिचुएशन क्या है, और इस फिल्म का जो डायरेक्टर है उसका मिजाज क्या है, वो किस तरह के गाने पसंद करता है, तब हम उस रंग में जा सकते हैं।
0: मतलब आपके लिए किसी किरदार और सिचुएशन को जानना बहुत जरूरी
1: बहुत
0: है, तब जाके
1: जरूरी।
0: शब्दों का चयन आप करेंगे। आपने एक उदाहरण दिया ऐसा कि गणेशा पर जो आपने
1: जी जी जी
0: बनाई है, तो
1: जी
0: वो बच्चा कॉन्वेंट स्कूल का
1: कॉन्वेंट
0: है।
1: स्कूल का है, इसलिए मैंने उसमें कर दिया कि ओ माई फ्रेंड गणेशा। अगर वो लड़का कॉन्वेंट में नहीं होता तो वो गणेशा को फ्रेंड नहीं कह सकता, और वो फ्रेंड जो है ना इतना हिट हुआ कि उसकी तीनों चारों सीरीज मैंने ही लिखी।
0: बिल्कुल।
1: तो ये क्या होता है कि हम किरदार क्या है हमारा, वो क्या कह रहा है, कितनी बात कर रहा है, तो उससे हमें क्लू मिलता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं।
0: जी
1: अभी जैसे प्यार किया तो डरना क्या में ही जब दूसरा गाना हमको मिला, तो अब वो गाना लिखना था हमको कि उसमें गाना डालना है और उसमें भैया भी होना चाहिए। तो मैं और हिमेश भाई ये थे कि यार गाना तो ठीक है, भैया क्या करेगा इसमें। तो मेरे को उन्होंने कहानी बताई कि भाई ऐसा है, अरबाज भाई वो रोल कर रहे हैं तो वो उनकी भाई कुछ कहानी है, वो बहन को ऐसा चाहते हैं, ये प्यार करता है। तो हमने कहा ठीक है, तो वो गाना हुआ तुम पे हमें अटके आ रहा दिल भी मारे झटके। तो अब ये तो गाना हो गया, अब भैया की एंट्री कैसे होगी।
0: हाँ।
1: तो मेरे को एक जहन में बात आई कि देखिए जब कोई लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, भले ही वो सच्चे मन से प्यार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, भाई को अगर पहली बार पता लगेगा तो और उसे उसे लगेगा कि ये मेरी

0: बहन की तरफ बढ़ रहा है तो वो खटकेगा जरूर,
1: जी
0: भले बाद में उसको पता
1: जी
0: लगे कि ये मेरी
1: सच्चाई
0: बहन की
1: यही है।
0: सच्चाई है,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन पहला उसका जो
1: रिएक्शन आएगा।
0: रिएक्शन आएगा तो मेरी वो लाइन आ गई, बच के रहना प्यार में तुमको पड़ जाए ना फटके, और भैया को तू खटके।
1: हाँ अच्छा
0: और ये
1: जी
0: गाना कंप्लीट
1: जी
0: हुआ,
1: जी जी
0: ये दो गाने मेरे सुपर डुपर हिट
1: जी
0: हुए।
1: जी

0: आपने ये बताया कि किसी भी गीत को लिखते समय क्या बारीक दृष्टि होनी चाहिए गीतकार की, एक संगीतकार की, तब जाकर किसी की एंट्री आना कोई इतना आसान नहीं है कि किसी भी गीत में कोई भैया आया या दादी आई या ताऊ
1: हाँ,
0: आए, वो क्यों आए
1: क्यों आए
0: और गीतकार ने उनके लिए क्या लिखा?
1: देखिए, ये फिल्म हमराज का गाना है, साढ़े ना लाएगी ते लाइव बन जाएगी। इसकी भी कहानी बड़ी कठिन कहानी है।
0: अच्छा,
1: क्या है कि मैं इतना बड़ा राइटर नहीं हूं जितने बड़े हमारे बुजुर्ग होते थे, और उनके सामने शायद कोई बोलता भी नहीं था। उनका लिखने का भी इतना परफेक्शन भी था जो शायद मुझ में नहीं है। मैं लेकिन एक बात की जरूर कोशिश करता हूं कि मेरा डायरेक्टर, मेरा म्यूजिक डायरेक्टर जो मुझसे चाहता है मैं उसको फुलफिल कर देता हूं,
0: जी ये सबसे बड़ी
1: अपनी
0: बात है।
1: बात को रखते हुए।
0: जी
1: मैं
0: जी
1: ऐसा नहीं कहता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उतनी बड़ी पदवी मेरे पास नहीं मिली, और नहीं मिली तो अच्छा है, क्योंकि मुझे भी अलग अलग काम करने का मजा है। कोई आदमी बोलता है मुझे ऐसा चाहिए तो मैं कोशिश करता हूं वैसा ही दूं। तो ये जब गाना ओके हो गया, सब कुछ हो गया, अब उसके बाद बात आई कि मेरे को डायरेक्टर ने सजेशन दिया कि इसमें जब सब नाच रहे हैं तो दादी भी नाचेगी और
0: अच्छा
1: दादी गाएगी भी।
0: अच्छा
1: तो मेरे को थोड़ा सा फिर झटका लगा,
0: हाँ हाँ
1: क्योंकि झटका इसलिए मुझे लगता था कि ये सारी बातें मुझे कन्वे होती थी। अभी हिमेश भाई ने ट्यून बना दी, सब कुछ हो गया, अभी अगर उनको भी बोला तो वो भी मुझे ही बोलेंगे। और मुझे ये हमेशा रहता था कि हिमेश भाई की बात अगर जो उन्होंने सोचा है अगर मैं वो नहीं दे पाया तो हिमेश भाई ने

0: देंगे या प्रोड्यूसर निकाल देगा।
1: सही बात
0: मुझे एक डर हमेशा रहता था, आज भी रहता है, कि अगर मैं अच्छा काम नहीं कर पाया। अच्छे से दो मुरादें हैं, एक अच्छा काम वो जो आपको पसंद है, एक अच्छा काम वो जो दुनिया को पसंद है। तो मैं दोनों के कॉम्बिनेशन में रहता हूं कि
1: बिल्कुल
0: मुझे भी लगे और दुनिया को भी लगे।
1: जी।
0: तो मैंने कहा ठीक है, दादी गाएगी, लेकिन एक सिंगर और बुला लीजिए। फिर तो जसपिंदर नरूला जी को मैंने फोन किया
1: क्या बात
0: और
1: है।
0: उनको बुलाया। गाना वाना लिखा हुआ नहीं था तब तक,
1: अच्छा।
0: पहले सिंगर तो मिले। तो जब हो गया तो मैंने गाना लिखा उसमें। अब मैंने सोचा कि दादी जो गा रही है तो दादी क्या गाएगी, अभी ये तो लव सॉन्ग चल रहे हैं, हीरोइन हीरो की तारीफ कर रही है, हीरो हीरोइन की कर रहा है, ये कर रहा है, सब दोस्त नाच रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, दादी अचानक बेचारी क्या गाएगी। तो बहुत सोचने के बाद ना मुझे एक याद आया कि जब गांव में कोई फंक्शन होता है या सब ऐसा होता है ना, तो बुढ़ी बुढ़ी भी नाचना शुरू कर देती
1: हाँ
0: हैं,
1: हाँ
0: और वो कभी कभी तो ऐसा नाचती हैं कि जवान उसको देखना शुरू कर देते हैं, नाचना बंद कर देती हैं।
1: जी।
0: उनका अपना एक स्टाइल होता है। तो मैंने पूछा उनको कि भाई इसके दादाजी भी हैं क्या फिल्म में, और बाद में ऐसा नहीं दादा भी कुछ जवाब देगा, बोले नहीं दादा नहीं दादी।
1: जी।
0: तो अब वो जो बॉबी देओल साहब गाना गा रहे हैं गा रहे हैं गा रहे हैं, और दादी की एंट्री मैंने कराई कि वारी वारी जाऊं पुत्र तेरी इस जवानी पे, और तेरे दादा याद आए तेरी इस कहानी पे।
1: जी
0: यहां तक तो दादी गाती है, अब लड़का क्या जवाब दे, दादी कोई रोमांटिक जवाब तो नहीं दे सकता है। तो कहता है कि दादी इस बात में दम है, पोता ना तेरा कम है, वादा है तू अगले साल पड़ पोता
1: क्या
0: खिलाएगी।
1: बात है
0: और ये 10 मिनट की कहानी है, मतलब
1: जी।
0: आपको अभी लिखना है, गाना चल रहा है, गाना गाया जाएगा, तो वो आपका माइंड जो है ना वो कभी भी हाइपर टेंशन में नहीं आना चाहिए। कोशिश करो कि अगर कुछ लोग बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, और हम वैसा काम करने की कोशिश करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये गाना मतलब इतना बड़ा सेलिब्रेशन और दादी की एंट्री होना, ऐसे बहुत से काम जो है ना मेरी लाइफ में हुए हैं और मैं उनमें से पार भी हुआ हूँ।
1: जी,
0: गीत सुनाइए।
1: मैं आपसे यही कहने वाली थी। चलिए सुनते हैं आपकी
0: जी
1: पसंद का ये गीत, फिल्म हमराज से।
0: हमराज।

0: ಸಡನ್ನಾಳ ಆಗಿತ್ತು, ಸಡನ್ನಾಳ ಆಗಿತ್ತು ಲೈಫ್ ಬಂದಾಗೆ, ಸಡನ್ನಾಳ ಆಗಿತ್ತು ಲೈಫ್ ಬಂದಾಗೆ।
1: आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। तकनीकी सहायक भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: पर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के रिले कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, लीजिए प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार युवा साथियों, मैं हूं आज आपके साथ आपके अपने रेडियो दोस्त आरजे बरखा कश्यप और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। आज हम स्मरण कर रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह जी को, जिनकी पुण्यतिथि पर देश उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन करता है। दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह जी का जन्म 1780 में हुआ था और वे सिख साम्राज्य के महान शासक के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें शेरे पंजाब के नाम से भी सम्मानित किया जाता है। महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब को एक शक्तिशाली और संगठित राज्य के रूप में स्थापित किया। वे केवल एक वीर योद्धा ही नहीं बल्कि दूरदर्शी प्रशासक भी थे। उनके शासन में सभी धर्मों और संप्रदायों और समुदायों को समान सम्मान दिया जाता था। उन्होंने शिक्षा, कला, संस्कृति और जन कल्याण को भी बढ़ावा दिया। उनका जीवन हमें साहस, नेतृत्व, राष्ट्रीय एकता और धार्मिक सद्भाव का संदेश देता है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उनके आदर्शों को याद करते हुए एक ऐसे समाज के निर्माण का संकल्प लें जो आपसी सम्मान, एकता और राष्ट्र की भावना पर आधारित हो। महाराजा रणजीत सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि।

0: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
1: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां BTech कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
0: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।
2: दोस्तों, आज हम हिंदी फिल्म संगीत जगत के प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर नितिन मुकेश को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। उनका जन्म 27 जून 1950 को हुआ था। वे महान गायक मुकेश के सुपुत्र हैं और उन्होंने अपनी मधुर आवाज़ से हिंदी सिनेमा को कई यादगार गीत दिए हैं। नितिन मुकेश ने 1980 और 90 के दशक में अनेक लोकप्रिय गीत गाए जो आज भी श्रोताओं के बीच पसंद किए जाते हैं। उनका संगीत समर्पण सादगी और सुरों के प्रति प्रेम युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके जन्मदिन पर हम उनके स्वस्थ और सुखद जीवन की कामना करते हैं और आपको सुनवाते हैं उन्हीं का गाया हुआ ये प्यारा सा गीत।

0: मानसून धमाका।
1: रंगलानी वस्त्र भंडार लेकर आया है शानदार ऑफर, एक खरीदी पर दो दो फायदे।
2: जी हाँ, यहाँ मिलेगा फैंसी पैटर्न साड़ी 325 रुपए में दो पीस, बनियान 85 रुपए में दो पीस, प्रीमियम जॉर्जेट साड़ी 600 में दो, सिल्क साड़ी 750 में दो, सिंगल बेडशीट 150 में दो, डबल बेड का 2600 में दो पीस।
1: रेडीमेड शर्ट गीजा कॉटन 699 में दो पीस, सिंगल बेड 2425 में दो, डिजाइनर प्रिंटेड कुर्ता 500 में दो, इम्पोर्टेड टॉवल 140 में दो, डोरमेट 28 में दो, रेडीमेड ट्राउजर 999 में तीन पीस, और भी बहुत कुछ।
2: तो चले आए रंगलानी वस्त्र भंडार, आनंद रेडियो के बाजू में मेन रोड बालाघाट। मोबाइल नंबर है 9425139615।
3: दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, जिनके सम्मान में हर वर्ष 27 जून को विश्व MSME दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, जब हम उद्योग शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और विशाल कंपनियों की तस्वीर उभरती है, लेकिन सच ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था की असली ताकत उन छोटे छोटे व्यवसायों में भी छिपी है जिन्हें हम रोज़ अपने आसपास देखते हैं। जरा अपने शहर या गांव के बारे में सोचिए, वो छोटी सी बेकरी जहां से आप केक खरीदते थे, कपड़ों की दुकान, मोबाइल रिपेयर सेंटर, सिलाई कढ़ाई का काम करने वाली इकाइयां, मसाले या पापड़ बनाने वाले घरेलू व्यवसाय, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से अपना उत्पाद बेचने वाला युवा, ये सभी MSME के उदाहरण हैं। युवा साथियों, आज का दौर केवल नौकरी खोजने का नहीं बल्कि रोजगार पैदा करने का भी है। हमारे आसपास ऐसे कई युवा हैं जिन्होंने बहुत कम पूंजी से अपना काम शुरू किया और आज दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। किसी ने ऑनलाइन हस्तशिल्प बेचना शुरू किया, किसी ने घर से बेकरी का व्यवसाय शुरू किया, तो किसी ने डिजिटल मार्केटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग की छोटी कंपनी बना ली। रियल लाइफ में हम देखते हैं कि कई बार युवाओं के पास प्रतिभा तो होती है, लेकिन वे सोचते हैं कि व्यवसाय शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए, जबकि कई सफल उद्यमों की शुरुआत एक छोटे कमरे, एक लैपटॉप या कुछ आवश्यक उपकरणों से ही हुई है। सफलता का सबसे बड़ा आधार पूंजी नहीं बल्कि नवाचार, मेहनत और निरंतर सीखने की इच्छा होती है।

0: सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल सीबीएसई से संबद्ध जिले का सर्वश्रेष्ठ स्कूल, जहां उपलब्ध है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, नीट और जेईई में सर्वाधिक बच्चों का चयन, नर्सरी से 12वीं तक एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी वातावरण। प्रवेश प्रारंभ सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल, साहू टोला, लालबर्रा रोड, बालाघाट। संपर्क 6262604114।
1: दोस्तों, एमएसएमई क्षेत्र न केवल रोजगार देता है बल्कि स्थानीय संसाधनों और स्थानीय प्रतिभाओं को भी आगे बढ़ाता है। यही कारण है कि इसे भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। आज डिजिटल युग में अवसर पहले से कहीं अधिक बढ़ गए हैं। यदि किसी युवा को फोटोग्राफी आती है या खाना बनाना आता है या हस्तकला में रुचि है या फिर तकनीकी कौशल है तो वो अपने हुनर को व्यवसाय में बदल सकते हैं। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने छोटे व्यवसायों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँचने का अवसर दिया है। प्रिय युवा साथियों, MSME दिवस हमें यह संदेश देता है कि सपनों का आकार नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने का साहस मायने रखता है। यदि आपके पास कोई अच्छा विचार है, कोई कौशल है और कुछ नया करने का जुनून है तो आज से ही उसके लिए योजना बनाना शुरू कर दीजिए। अंत में याद रखिए कि हर बड़ा उद्योग कभी एक छोटा उद्यम ही था। हो सकता है कि आज आपका छोटा सा विचार आने वाले समय में कई लोगों के लिए रोजगार का स्रोत बन जाए। इसी उम्मीद और प्रेरणा के साथ आइए हम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का संकल्प लेते हैं।

तो दोस्तों, इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आज के युवावाणी कार्यक्रम से इजाज़त लेने का समय है। पर इस गाने के साथ याद रखिए, बड़े सपनों की शुरुआत अक्सर छोटे कदमों से ही होती है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME न केवल आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है, बल्कि युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने का माध्यम भी। अगर आपके पास हुनर है, नया विचार है या कुछ कर दिखाने का जज्बा है, तो सफलता की राह आपके लिए खुली है। इसी उम्मीद और सकारात्मक सोच के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक इस गाने के साथ सुनिए और स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

युवा श्रोताओं का अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। शाम के 5:30 हुए हैं, समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। श्रोताओं, आइए फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में। SH बिहारी का लिखा गीत है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म का नाम प्यार झुकता नहीं।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम की अगली पेशकश हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की युगल आवाज़ों में। नदीम श्रवण का संगीत है, समीर का लिखा गीत, फिल्म हम है राही प्यार के।

अन्नु मलिक के संगीत में सईद कादरी की रचना को आपने सुना फिल्म साया से, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ को। लीजिए अब सुनिए फिल्म फना का ये तराना, जिसे गाया सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने। शब्द रचना प्रशून जोशी की और संगीत जतिन ललित का।

फिर तेरी कहानी याद आई। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए इस फिल्म का तराना कुमार सानू की आवाज़ में। कतिल शिफाई की रचना है और संगीत अन्नू मलिक का।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको फिल्म प्यार झुकता नहीं, हम हैं राही प्यार के, साया, फना और फिर तेरी कहानी याद आई फिल्म के गीत सुनवाए। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में

0: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। शाम के 6 बजे हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट।
1: गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट,
0: गुड इवनिंग बालाघाट कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हम इस समाज में हर पल एक दूसरे से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संवाद करते हैं। आज संचार के विभिन्न साधनों की खोज के कारण संचार का महत्व बढ़ गया है। ऐसे में सफलता के लिए एक विशेष गुण की ज़रूरत होती है, जिसे हम संचार कौशल कहते हैं। संचार वो प्रक्रिया है जिसमें हम अपने संदेशों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, यानी कि

अपने कहे हुए माध्यम को दूसरों तक पहुंचाने की कला। संचार से आपसी रिश्तों में नज़दीकी आती है। आज हम चाहे सार्वजनिक, सरकारी या निजी किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, अपने काम में दक्ष होने के लिए संचार कौशल को विकसित करने की जरूरत है। संचार कौशल को विकसित करने के लिए हर व्यक्ति में कुछ गुण होने ही चाहिए। जैसे संचार कौशल को विकसित करने के लिए हम में निरंतर अभ्यास का होना ज़रूरी है। ये निरंतर अभ्यास तभी हो सकता है जब हम अपनी दैनिक गतिविधियों में बातचीत स्पष्ट और सरल तरीके से करें। किसी भी परिचित या नए व्यक्ति से संचार के नए नए कौशल सीखने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। हमेशा बातचीत करते समय हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने सुनने वाले का ध्यान अपनी ओर खींच सकें और सुनने वाले का ध्यान आप आँखों से आँखें मिलाकर भी खींच सकते हैं, यानी कि वो आपकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करेगा। बातचीत के दौरान अगर हमारी सोच में साहस और विश्वास होगा तो हमारा बातचीत करने का तरीका खुद ब खुद सकारात्मक होगा। हम बोलते समय डर को दूर रखना चाहिए, यानी कि ये कहें कि हमें हमेशा आत्मविश्वासी बने रखना होगा। बातचीत के दौरान हमने शब्दों को, वाक्यों को स्पष्टता के साथ लाना चाहिए। भाषा में हमेशा मिठास होनी चाहिए। अगर बात स्पष्ट ना हो तो उसे फिर से कहने की कोशिश करें और स्पष्ट कहें। शब्दों में वाक्यों को व्यक्तिगत तौर पर स्पष्ट करना आवश्यक होता है। अपने व्यक्तित्व को कुछ गुणों के साथ हम बढ़ा भी सकते हैं।

0: मानसून धमाका।
1: रंगलानी वस्त्र भंडार लेकर आया है शानदार ऑफर, एक खरीदी पर दो दो फायदे।
2: जी हाँ, यहाँ मिलेगा फैंसी पैटर्न साड़ी 325 रुपए में दो पीस, बनियान 85 रुपए में दो पीस, प्रीमियम जॉर्जेट साड़ी 600 में दो, सिल्क साड़ी 750 में दो, सिंगल बेडशीट 150 में दो, डबल बेड का 2600 में दो पीस।
1: रेडीमेड शर्ट गीजा कॉटन 699 में दो पीस, सिंगल बेड 2425 में दो, डिजाइनर प्रिंटेड कुर्ता 500 में दो, इम्पोर्टेड टॉवल 140 में दो, डोरमेट 28 में दो, रेडीमेड ट्राउजर 999 में तीन पीस, और भी बहुत कुछ।
2: तो चले आए रंगलानी वस्त्र भंडार, आनंद रेडियो के बाजू में मेन रोड बालाघाट। मोबाइल नंबर है 9425139615।
3: दोस्तों अब चलिए आज के कुछ खास दिवस की बात कर लेते हैं, और आज है 27 जून यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस, इंटरनेशनल MSME डे।

जो कि प्रतिवर्ष 27 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में इन उद्योगों को महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हुए 2017 में इस दिवस की स्थापना की थी। MSME का सृजन वैश्विक स्तर पर लगभग 70% रोजगार और 50% सकल घरेलू उत्पाद GDP में इन उद्योगों की भागीदारी है। भारत जैसे देशों में कुल व्यवसायों का 90% से अधिक हिस्सा MSME का ही होता है। ये वोकल फॉर लोकल और नवाचार यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास की मुख्य रीढ़ है। मध्य प्रदेश परिप्रेक्ष्य मध्यम प्रदेश में भी स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और विभिन्न जिला स्तरीय योजनाओं के जरिए MSME क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। बालाघाट सहित पूरे राज्य में स्थानीय कारीगरों, स्टार्टअप्स और उद्यमियों को तकनीकी सहायता और आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और श्रोताओं, आज के एक विशेष दिन की भी बात करें तो आज विश्व अनानास दिवस है, यानी कि इंटरनेशनल पाइनएप्पल डे। हर साल 27 जून को ये मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य एक स्वादिष्ट उष्णकटिबंधीय फल के स्वास्थ्य लाभों को, इतिहास और उसके वैश्विक महत्व के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना। अनानास के स्वास्थ्य लाभ, अनानास न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि ये पोषक तत्वों का भी खजाना है। विटामिन सी से भरपूर ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर को मजबूत करता है। ये पाचन क्रिया में सुधार लाता है। इसमें ब्रोमेलिन नामक एंजाइम होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है और सूजन कम करता है। ये दिल की सेहत के लिए भी बहुत कारगर होता है। इसमें मौजूद पोटेशियम और फाइबर रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में सहायक होते हैं, जिससे हृदय रोगों का खतरा कम हो जाता है। ये वजन पर भी नियंत्रण रखता है। ये कम कैलोरी वाला फल है जो आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। कई संस्कृतियों में अनानास को अतिष्ट यानी कि हैपिटैलिटी और दोस्ती का प्रतीक माना जाता है। अनानास मूल रूप से दक्षिण अमेरिकी और कैरिबियन का फल है। एक अनानास को पूरी तरह से पकने और तैयार होने में लगभग 18 से 20 महीने का समय लगभग लग सकता है। श्रोताओं, बातें और भी होंगी, आइए अब चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, 90 वर्षों के हमसफ़र यानी कि आकाशवाणी से आप न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। वर्ष 2023 में प्रसार भारती ने न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप लॉन्च किया। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम सीधे लोगों के मोबाइल फ़ोन तक पहुंचना शुरू हो गए। इस ऐप के माध्यम से आकाशवाणी के 230 से अधिक चैनल दुनिया के किसी भी कोने में लाइव सुनने में आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी सक्षम होंगे। खेल, व्यवसाय और चुनाव जैसी हर छोटी बड़ी जानकारी को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में इस ऐप की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो आज के तकनीकी युग में एक महत्वपूर्ण मिसाल बनकर खड़ी हुई है। श्रोताओं, अब कुछ मज़ेदार जानकारियों की यदि हम बात करें तो भारत का कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण धार्मिक समागम है।

0: जिसकी विशालता और सांस्कृतिक महत्व के कारण इसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश की कालका शिमला रेल लाइन 100 से अधिक सुरंगों और सुंदर पहाड़ियों से होकर गुजरती है। श्रोताओं, बातचीत तो और भी जारी रहेगी, एक कुछ महत्वपूर्ण संदेश भी चलिए सुनते चलते हैं।
1: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
2: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां बीटेक कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
1: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
2: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।
3: मानसून धमाका। रंगलानी वस्त्र भंडार लेकर आया है शानदार ऑफर।

0: इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
1: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
0: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।
2: मानसून धमाका।
3: रंगलानी वस्त्र भंडार लेकर आया है शानदार ऑफर, एक खरीदी पर दो दो फायदे।
4: जी हाँ, यहाँ मिलेगा फैंसी पैटर्न साड़ी 325 रुपए में दो पीस, बनियान 85 रुपए में दो पीस, प्रीमियम जॉर्जेट साड़ी 600 में दो, सिल्क साड़ी 750 में दो, सिंगल बेडशीट 150 में दो, डबल बेड का 2600 में दो पीस।
3: रेडीमेड शर्ट गीजा कॉटन 699 में दो पीस, सिंगल बेड 2425 में दो, डिजाइनर प्रिंटेड कुर्ता 500 में दो, इम्पोर्टेड टॉवल 140 में दो, डोरमेंट 28 में दो, रेडीमेड ट्राउजर 999 में तीन पीस, और भी बहुत कुछ।
4: तो चले आए रंगलानी वस्त्र भंडार, आनंद रेडियो के बाजू में, मेन रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर है 9425139615।
0: सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल CBSE से संबद्ध, जिले का सर्वश्रेष्ठ स्कूल, जहां उपलब्ध है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, नीट और JEE में सर्वाधिक बच्चों का चयन, नर्सरी से 12वीं तक एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी वातावरण। प्रवेश प्रारंभ सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल, साहू टोला, लालबर्रा रोड, बालाघाट। संपर्क 6262604114।
5: अपनी उदासियों के बीच से ही जीवन की खुशियों को तलाशना होता है, उसकी तलाश करो, यही मानव जीवन का मूल उद्देश्य है। जिस दिन तुमने अपनी खुशियों को तलाश लिया, उस दिन तुमने उसे पा लिया। समझ लेना, तुम्हारे जीवन की सफलता का आरंभ हो गया। श्रोताओं, हम बात कर रहे थे कुछ मज़ेदार जानकारियों की, तो कुछ जानकारियां और भी हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है, इसे अक्षयवट भी कहा जाता है, क्योंकि ये कभी नहीं मरता। इसकी टहनियों से निकलने वाली इसकी जड़ें जमीन में धंसकर नए तने बना जाती हैं, जिससे वो सैकड़ों साल तक जीवित रहता है। श्रोताओं, मशहूर लेखक रुडवर्ड किपलिंग ने दुनिया की सबसे प्रसिद्ध किताब द जंगल बुक लिखी, तो उन्होंने मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के घने जंगलों और यहाँ के वन्य जीवों से प्रेरित होकर मोगली की दुनिया की कल्पना की थी।

0: तो श्रोताओं, ये था आज का गुड इवनिंग बालाघाट कार्यक्रम। कल एक नए अंक के साथ हम होंगे फिर आपके साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट को लेकर।
1: गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट,
0: गुड इवनिंग बालाघाट। श्रोता, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे FM बैंड 101.3 MHz पर। हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। 6:30 हो चुके हैं, समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम का। और श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की गाई चंद रचनाएं।

सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से, और आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं जगजीत सिंह की गाई चंद गजलें।

और इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बालाघाट केंद्र है। 7 बज चुके हैं। श्रोताओं, आइए अब हम आपको सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से कुछ ही देर बाद यानी कार्यक्रम विवरण के बाद 7:05 पर दिल्ली केंद्र से अंग्रेजी समाचार हम रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचारों का वक्त होगा 7:10 जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं। 7:21 का कार्यक्रम होगा चौपाल और 7:30 पर प्रायोजित किसानवाणी कार्यक्रम होगा, जिसे लेकर आपके साथ होंगे तूफान सिंह हरिणखेड़े और अजय कुमार बैस। 8:00 फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा और 8:30 पर इंजॉय कीजिएगा पॉप म्यूजिक के कार्यक्रम को। 8:45 पर दिल्ली से समाचार संध्या और 9:00 News@9 हम रिले करेंगे। 9:15 पर दिल्ली केंद्र से ही स्पॉटलाइट समाचार आप सुनेंगे।

रात 9:30 से लेकर रात 10:30 तक विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम हम रिले करेंगे। रात 10:30 सदाबहार फिल्मी गीतों का आनंद ले सकेंगे आप। रात 11:00 समाचार दिल्ली से और अंग्रेजी समाचार 11:05 पर

श्रोताओं, ये थी जानकारी सभा के शेष कार्यक्रमों की। अब एक झलक कल के प्रातःकालीन सभा के कुछ कार्यक्रमों की। रोजाना हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है 5:55 पर, जिसमें 6 बजे समाचार दिल्ली केंद्र से हम रिले करते हैं। भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा। वंदना वक्त होगा 6:05 का। 6:30 पर कीजिएगा चिंतन और श्री रामचरित मानस गान का पाठ आप सुनेंगे 6:35 पर। कुछ सदाबहार फिल्मी गीत हम लेकर आएंगे 6:50 पर। सात बजकर 10 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले होंगे। हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट वक्त होगा 7:20 का। 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर सुगम संगीत आप सुन सकेंगे। महिला जगत का वक्त होगा 8:30 और आपका पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम आपके फोन आपके गीत वक्त होगा 10:05 का, जिसे लेकर होंगी आपके साथ हमारी साथी माधुरी कटरे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में होंगे शामिल। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान करेगा स्थापित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे और राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। सेशल्स की राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी ने उनका हार्दिक स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा का उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वह सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। अंतर्राष्ट्रीय

0: एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविन्द्र भवन भोपाल में आयोजित सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने एमएसएमई इकाइयों को लगभग 225 करोड़ रुपए की विभिन्न स्टार्टअप्स को लगभग 39 लाख तथा वृद्ध उद्योगों के लिए 1274 करोड़ की प्रोत्साहन राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश विदेश की अग्रणी कंपनियां मध्य प्रदेश में लगातार निवेश कर रही हैं। हमें विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश देश के शीर्ष 3 अग्रणी राज्यों में अपनी सशक्त पहचान स्थापित करेगा।
1: आने वाले पूरे 5 साल के होते होते हम निश्चित रूप से 3 प्रमुख राज्यों में से शामिल होंगे, जिस प्रकार से हमारी गति चल रही हर एक क्षेत्र में, और केवल यहाँ नहीं, कनाडा, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया, ये सबको मिला लो तो जो हमने एमओयू किए थे और वो लगभग 9300 करोड़ से अधिक का निवेश अब ग्राउंड ब्रेकिंग में पहुंच। हमारे पास कनाडा की मैकमैन फूड कंपनी आगर मालवा में 3800 करोड़ का काम कर रही, ये एग्रीकल्चर के सेक्टर में बड़ा काम कर रही।
0: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देशभर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी के उद्घाटन सत्र में श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे चालकों को उनके पारिश्रमिक का अधिक से अधिक हिस्सा मिलेगा और यात्रियों को भी सुरक्षित तथा किफायती यात्रा का लाभ मिल सकेगा।
2: मैं आज इस मंच से कह देना चाहता हूं, हम तो 1.5-2 साल में 500 से ज्यादा शहर में पहुंच जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। हर जगह हम पहुंच जाएंगे, हम नागपुर पहुंचेंगे, पुणे पहुंचेंगे, मुंबई पहुंचेंगे, लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर, कोलकाता, 31-7 के पहले 7 स्थान पर भारत टैक्सी पहुंच जाएगी। और 2 साल के अंदर छोटे बड़े मिलाकर हम 500 शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर हमारे 2-व्हीलर, ऑटो और 4-व्हीलर का कंसेप्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से गुना जिले के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री सिंधिया ने आज सर्किट हाउस में लोगों से भेंट कर उनकी शिकायतें सुनी। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत कंजा गांव में पौधरोपण किया। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में सिंहस्थ 2016 के अनुभव 2028 का संकल्प विषय पर आधारित कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला में सिंहस्थ 2028 के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए अधोसंरचना विकास, विभिन्न विभागों की कार्ययोजना व समन्वित तैयारियों पर व्यापक मंथन किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ 2028 को भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए उज्जैन में विकास कार्य निरंतर जारी है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जन समुदाय में इस अभियान के प्रति जागरूकता के लिए आज विशाल रैली आयोजित की गई। कटनी जिले में भी कल राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का व्यापक आयोजन किया जाएगा। अभियान के दौरान जिले के 5 वर्ष आयु वर्ग के सभी 1,73,000

700 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। भिंड जिला टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें 5 वर्ष तक के लगभग 2,70,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। शिवपुरी जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा पल्स पोलियो अभियान को लेकर आज जन जागरूकता रैली निकाली गई। नरसिंहपुर जिले में इस अभियान के अंतर्गत 1,58,945 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। मंदसौर में अभियान के प्रति जागरूकता के लिए शहर के प्रमुख मार्गों से रैली निकाली गई। प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद इसकी रफ्तार फिलहाल थम गई है। अगले 2 से 3 दिनों में इसके फिर सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में पंचायत सांवेर की ग्राम पंचायत कदवाली बुजुर्ग में जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 का समापन समारोह आयोजित किया गया। मंदसौर में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जबलपुर के 2 प्रमुख कृषि उत्पाद मटर और सिंगाड़ा को भारत सरकार की ओर से भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर खंडवा जिले के ग्राम बलखड़ में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिवपुरी जिले में कल श्रमायुक्त संदीप GR ने माधव चौक का भ्रमण कर श्रमिकों से सीधे संवाद किया। आयरलैंड और भारत के बीच 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का 2रा और अंतिम मैच कल खेला जाएगा। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा ICJS कार्यान्वयन और डिजिटल एकीकरण विषय पर कल 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में किया जाएगा। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अंतर संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत पुलिस अभियोजन न्यायालय जेल फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य विभाग के मध्य डिजिटल समन्वय और डेटा इंटर ऑपरेबिलिटी को सुदृढ़ बनाना है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। 7:21 हो चुके हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम सुन रहे समस्त किसान भाइयों को अपने किसान मित्र तूफान सिंह हरिण खड़े का नमस्कार। किसान भाइयों, जैसे कि प्रतिदिन की तरह हमारी आज की चौपाल भी सजी हुई है और इस क्रम में हम कुछ न कुछ नई बातें और नए अपने जो साथी होते हैं या नए लोगों के अनुभवों को बांटते हैं। यह क्रम हमारे गांव में अक्सर होते रहता है कि कृषि के क्षेत्र में जब तक कि किसान एक दूसरे से न मिले और एक दूसरे के विचार न समझे या सलाह न करे, तब तक कि वह अपने खेतों को काम के लिए निश्चित रूप से निर्णय नहीं लेते हैं। उसी तरह किसान भाइयों, बात यह भी है कि एक दूसरे का जो सलाह होता है, ज्ञान होता है, उससे कुछ सीखने की तमन्ना होती है और उस काम को करने का भी एक मज़ा होता है और उसके हमें बहुत अच्छे अच्छे लाभ भी मिलते हैं। जिस तरह से हम खेती की बात करें तो हमारे किसान भाइयों की अभी की बात करें तो लगभग हमारे किसान भाई पूर्णतः अपने खेतों में लगे हुए हैं और खेतों में पूरी तमन्ना के साथ, कोशिश के

साथ और वह पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारी कृषि हर समय की तरह इस बार भी फले फूले और आगे बढ़े। जैसा कि अभी खेतों की बात करें तो खेतों की साफ सफाई और कुछ किसान भाइयों की साफ सफाई के साथ साथ मेड़ों में तुअर हो गया, एक प्रकार से आपके अनेक जो पौधे होते हैं, दालहनी फलते होते हैं, मूंग की दाल होती है, इस तरह से पोपट की फसलें होती है, इन फसलों को हमारे किसान भाई अपने मेड़ों पर लगा रहे हैं और यह प्रयास है कि यह फसलें भी समय पर लग जाएं ताकि बारिश भी उन्हें अच्छा मौका दे रही है कुछ हद तक कहा जाए तो, क्योंकि ज़्यादा अगर बारिश हो जाती है तो उन्हें कार्य करने में दिक्कतें होती है और पौध को उगने में भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यह जो समय है हमारे किसान भाइयों के लिए बड़ा कीमती है और इस समय का पूरा उपयोग भी करना जरूरी है। कुछ किसान भाइयों की हम बात करें तो उन्होंने अपने धान की जो खार कहते हैं हम अपने गांव की भाषा में, उसकी भी बुवाई तुरंत कर रहे हैं और उनका प्रयास है कि वह पूरे इंतजाम के साथ उस प्रयास को करते रहे।

तो किसान भाइयों, हम बातचीत जानकारियां और भी करेंगे, लेकिन सुनते हैं यह लोकगीत।

किशन भाइयों, हमें पूरी उम्मीद है कि यह जो लोकगीत है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और हम खेती बाड़ी की हम बात करें तो खेतों की जो बात है बड़ी प्रमुख है, और हमारा पूरा प्रयास है कि हम खेतों की देखरेख करके और जैसा जैसा बारिश हो रही है उसके हिसाब से हम फसलों का चयन भी कर रहे हैं। और इन दौरान फसलों के लिए अधिकतर देखा जाता है कि बीजों की जो बात आती है, बीज बड़ा प्रमुख होता है। तो किसान भाइयों, किसी भी फसल को लेने के लिए बीज गुणवत्ता युक्त हो, और बीज अच्छा होगा तो आपको फसल का उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, और फसल का जब उत्पादन अच्छा मिलेगा तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तो इस तरह से हमारा आज का जो चौपाल कार्यक्रम है लगभग अब समाप्ति की ओर है, और अब हम चलते हैं अपने अगले क्रम किसानवाणी की ओर।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
6: पुतला बोल रहा है?
5: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
6: मतलब?
5: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
6: पर अब तो सभी डाले हैं।
5: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
6: सच
5: है? बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
6: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
7: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
8: नहीं, यही आएगा यार, वहाँ तो और भी चक जाएगा।
9: आप आगे हो जाए।
10: आपके पास
9: आगे? हाँ आगे।
8: सब कैसा करके रखा यार?
9: आई थोड़ा आगे हो रहे तूफान जी। किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे सभी किसान भाइयों को अपने रेडियो मित्र अजय बैस
11: और तूफान सिंह हरिणखेड़े का नमस्कार।
9: नमस्कार तूफान भैया, कैसे हो भैया?
11: बहुत बढ़िया। और आज हम बात करें, आज की शाम 7:30 हो चुके हैं, अब से लेके रात के 8 बजे तक हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम आज जारी रहेगा। और सजीव फोन इन कार्यक्रम के लिए आज का विषय होगा धान की नर्सरी प्रबंधन, स्वस्थ पौध, भरपूर उपज। इस तरह से हमारे विशेषज्ञ हैं आज के डॉक्टर प्रतिभा बिशेन, सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय मुरझड़ फार्म, तहसील वारसुनी, जिला बालाहाट से।
9: तूफान भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आज का, क्योंकि मैं भी अभी आ रहा था तो मैंने देखा कि क्षेत्र से आ रहा था, देखा कि मैं हमारे किसान भाई अब जो है खेत की तैयारी कर रहे हैं, अपने प्रक्षेत्र में हैं, और मुख्यतः देखा कि मैंने कई जगह अब उनकी चर्चाओं को सुना तो काफ़ी चिंतित रहते हैं कि वो नर्सरी को प्रबंधन कैसे करें। ख़ासतौर से हम देखें कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जिसे खार कहते हैं और उसको लेकर चर्चा करते हैं कि बारिश होगी तो वो खार डालेंगे, उसके पहले देखते हैं कि बीज को

0: लेकर भी चिंतित होते हैं कि और ये जो महत्वपूर्ण समय है हमारे किसान भाइयों के लिए, तो ये महत्वपूर्ण विषय में हमारे बीच में डॉक्टर प्रतिभा बिसेन मैम है। तो हमारे जो किसान भाई है वो अपने प्रश्नों को लेकर होगा, तो उन्हें हम नंबर भी बता देते हैं कि जो अभी अभी जिन्होंने ऑन किया है, 07632-292-173, इस नंबर पर कॉल करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और किसान भाइयों, आपका बेसब्री से इंतज़ार भी होगा कि कई दिनों से सोचते रहे होंगे कि यार हम जो प्रबंधन की बात करें, धान की नर्सरी की हम बात करें और स्वस्थ पौधों की बात करें और भरपूर उपज हर व्यक्ति की आवश्यकता होती है, वो चाहता है कि ये इसका लाभ मिले। तो इस क्रम में, हमारे इस कार्यक्रम में किसान भाइयों, फ़ोन के माध्यम से आपके पास जो भी समस्या हो, कोई जिज्ञासा हो या कोई ऐसा प्रश्न हो, तो उसे आप ज़रूर मैडम जी के साथ साझा कर सकते हैं। और हमारे बीच हमारे डॉक्टर प्रतिभा बिसेन मैडम हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस क्रम में। और हम क्रम को शुरू करते हैं। और जैसे कि धान की जो नर्सरी की जो बात आती है, यह बड़ी प्रमुख बात होती है, तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों के आपके क्या सुझाव हैं?
2: सबसे पहले तो मेरे सारे प्यारे किसान भाइयों को, सम्माननीय किसान भाइयों को मेरा नमस्कार और आप लोगों को धन्यवाद। जब हम बात करते हैं नर्सरी की, तो बिल्कुल जो पौधशाला है, जैसे एक मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण उसका बचपन होता है कि जो संस्कार, जो मजबूती, जितने टीके लगने होते हैं उनको उसके बचपन में लगते हैं, वैसे ही हमारी नर्सरी है। अगर हमारी नर्सरी समृद्ध होगी, स्वस्थ होगी, रोग मुक्त होगी, तो डेफिनेटली जो हमारी फसल है उसका उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी होगी। नर्सरी प्रबंधन केवल एक प्रक्रिया नहीं है। जैसे एक घर बनाने के लिए नींव मजबूत होना चाहिए, वैसे वो फसल के लिए जो हमारी जो पौध है वो उस नींव का काम करती है। हम परंपरागत तरीके से हमेशा से खेती करते आए हैं और हम नर्सरी मैनेजमेंट पे इतना ध्यान नहीं देते। जब भी हमारे जो किसान भाई हैं, ये काफ़ी सालों से खेती कर रहे हैं, बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं, उनके अनुभव बहुत अच्छे हैं, पर आप देख रहे होंगे कि जैसे बारिश, अभी जो बारिश हो जानी चाहिए थी अभी तक बारिश नहीं आई है। जब हम रोग व्याधि कीटों की बात करते हैं, उनका प्रकोप दिन ब दिन बढ़ रहा है। जब बारिश होती है या तो बहुत अतिवृष्टि होती है या अल्पवृष्टि होती है, तो ऐसे बहुत सारे जैविक और अजैविक तनाव जो आज के इस युग में पहले के दौर से कई गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं।
1: जी,
2: और हम विभिन्न विभिन्न तरह की, पहले बीज जो थे, आजकल हमारे पास तरह तरह के बीज उपलब्ध हैं जिनकी भी हमारे किसान भाइयों को जानकारी का अभाव होता है। तो मेरी एक किसान भाइयों से निवेदन है कि जो वो नर्सरी लगाते थे, पौधशाला तैयार करते थे, अब उसे वो थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से तैयार करें। तो मैं उनसे हमेशा कहूंगी कि जो हमारा नर्सरी मैनेजमेंट है उसके तीन सबसे बड़े महत्वपूर्ण पिलर होते हैं। एक होता है बीज उपचार, दूसरा होता है जल प्रबंधन और तीसरा होता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। जब हम बात बीजोपचार की करते हैं, तो पूरा भारत सरकार का अमला किसानों को जागरूक करने में है कि आप बीजों का उपचार करिए। और आशा करती हूँ कि हमारे बालाघाट के किसानों ने भी बीजोपचार किया होगा। अगर कुछ किसानों से बीजोपचार छूट भी गया होगा, तो हम उसे नर्सरी प्रबंधन के दौरान पूरा कर सकते हैं।
1: जी। और मैडम, बीच में मैं एक बात हमारे किसान भाइयों के लिए ही कहना चाहूँगा कि अभी अक्सर देखा जा रहा है कि मार्केट में जो पैकिंग में बीज आता है, किसान सीधे उसे ले आता है, उसको खोलता तक नहीं कि ये बीज सही में कैसा है, उसे सीधे खेत में ले जाता है और उसकी बुआई कर देता है नर्सरी की। तो यह जो बीज ले आ रहा है किसान और जो ये काम कर रहा है, तो ये ठीक है या उसे क्या ऐसा कर लेना चाहिए ताकि दिक्कत ना बने?
2: सर, मैं आपसे एक बात कहूँ, अभी एक अभियान चल रहा है, हमारे जो कृषि मंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वो एक अभियान चला रहे हैं कि खेत बचाओ।
1: अच्छा।
2: मैं कहती हूँ खेत नहीं, किसान बचाओ,
1: बचाओ।
2: अब बड़ी दुर्भाग्य का विषय है कि एक किसान जो अन्नदाता है, जो खेती करता है, वो जाकर बीज ला रहा है। बीज कौन बनाएगा? बीज क्या किसी लेबोरेटरी में बन रहा है? बीज कहीं ना कहीं किसी इंडस्ट्री में या किसी पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट, कहीं और निर्मित हो रहा है, पर ये काम किसका है? ये है किसान का। किसान बीजोत्पादन छोड़ रहा है। आज पहले जो 500 रुपए का पैकेट मिलता था, वो 750, 1000, और दिन ब दिन इसी तरीके का अगर हमारे किसान भाई बीजोत्पादन से दूर होते गए, तो वह दिन दूर नहीं।

0: जब हमारा जो बीजोत्पादन है ये अति आवश्यक श्रेणी में आ जाएगा और किसानों को बीजोत्पादन सीखना होगा।
1: मिशन में बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात कही है, बहुत ही चिंतन का विषय है और इसी चिंतन के विषय के बीच में हमारे किसान साथी हमसे सीधा जुड़ रहे हैं। हेलो
2: हेलो
1: हेलो, स्वागत है आपका हमारे इस हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में।
2: नमस्कार अजय भाई, आपको भी और तूफान भाई आपको भी।
3: जी जी जी, हम पहले तो आपका परिचय जानेंगे।
2: प्रतिभा मैम आपको भी
0: नमस्कार। नमस्कार जी
1: जी,
2: मैं हेलो।
0: हाँ जी हाँ जी, बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं?
2: आवाज हेलो।
1: हाँ, आप अपना परिचय देकर प्रश्न आप करें क्योंकि
2: मैं से बोल रहा हूँ, युगल किशोर।
1: हाँ जी
0: जी,
2: तहसील खरलान जी, जिला बालाघाट, ग्राम अमई।
0: जी जी युगल भैया बोलिए।
2: मैम बारिश तो अभी हो नहीं पा रही है, तो फिर नर्सरी की कैसी किस प्रकार से तैयारी करें, मेरा सवाल ये था आज का।
0: जी देखिए, जब मैंने अपना कार्यक्रम शुरू किया, आपका बहुत अच्छा और आज के जो समसामयिकी में इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो हमारी खेती है ये पूरे तरीके से प्राकृतिक और प्राकृतिक जो वातावरण है उस पर, हमारी जो नर्सरी है कैसे भी करके 20 जून 22 जून तक लग जानी चाहिए, पर आज हमारे पास वर्षा नहीं है, इसलिए हमारे बालाघाट जिला में अधिकतम कृषकों की नर्सरी नहीं लगी है। पर अब मानसून आ रहा है और अब आप देख पा रहे हैं कि अब धीरे धीरे बारिश, तो अभी भी समय नहीं गया है, बिना देरी किए हुए आप नर्सरी की तैयारी करिए। और युगल भैया, आपने अपने बीजों को उपचारित किया है?
3: हेलो
2: जी मैम,
0: आपने अपने बीजोपचार, आपके जो बीज हैं, आप कौन से बीज लगाएंगे, कौन सी वैरायटी लगाएंगे, क्या इस विषय में आपने, क्योंकि हमारे पास अब वक्त है, हमारी नर्सरी नहीं डली है तो हमारे पास अभी वक्त है, हम बहुत अच्छे वक्त पे हमारी बात हो रही है, तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप बीजोपचार करें, तो आप कौन सी वैरायटी लगाएंगे, कहाँ से बीज लाएंगे, कौन से बीज लगाएंगे, आप प्रमाणित बीज लगाएंगे कि आप ट्रुथफुल्ली लेबल्ड सीड लगाएंगे, कहाँ से खरीदेंगे, कौन सी किस्म का चयन करेंगे, इन सारी चीजों पर आपको गंभीर
1: कुछ प्लानिंग किया है आपने? कुछ प्लानिंग किया है युगल जी?
2: हाँ मैम, ये था कि हम लोगों ने क्या है, अभी जैसे कि मौसम लेट है
0: जी,
2: तो इस वजह से हम लोगों ने क्या करवाया कि जो कम समय की जो धान है वो हम लोगों ने थोड़ा परिवर्तित कर दिए, क्योंकि इसके पहले जो था कि हमारी प्लानिंग थी कि हम एक लंबी उम्र की धान रखेंगे, लेकिन मौसम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हमें छोटी उम्र की धान लगाना है, क्योंकि उतना अच्छा खासा हमें एवरेज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बारिश ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं धोखा देगी। तो मेरी भी यही इच्छा है कि किसान साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से यही बताया जाए कि हम छोटी किस्म की धान लगवाएं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आपके सुझाव हैं। और जैसे पानी की बात आपने कही, तो मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे किसान भाइयों को कि अब मौसम जैसे बन रहा है, तो अब आप जल प्रबंधन, देखिए कई तो बड़े भ्रामक विचार हमारे किसान भाइयों के बीच में होते हैं, आपने देखा होगा जब बहुत बारिश होती है तो हमारी नर्सरी जो होती है उसमें रोप सड़ जाती है, जो पौधे होते हैं वो सड़ जाते हैं या तो पीले पड़ने लगते हैं, कई बार सबको सामान्य होता है तब भी किसानों की शिकायत होती है कि हमारी जो पौध है वो पीली पड़ रही है। जो बरसात का जो वक्त होता है, इस टाइम पे जितनी बारिश होती है उतनी ही तेज धूप तपती है, जब धूप तपती है और आपके खेत में अगर पानी भरा हुआ है तो आपकी जो पौध है वो उससे झुलस जाती है। तो मेरे किसान भाइयों से निवेदन है कि हमारी नर्सरी में जल भराव की स्थिति की हमको जरूरत नहीं है, हमें चाहिए नमी हमारे खेत में प्रॉपर होना चाहिए। अगर हमारे खेतों में हमें अच्छी ग्रोथ चाहिए है, हमारी नर्सरी प्रॉपर चाहिए, तो उसमें जल, अगर हम बहुत ज़्यादा जल भराव रखेंगे तो जो रोग व्याधि इनका भी प्रकोप हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा।
1: एक किसान साथी हमसे,
4: हाँ मैडम।
0: हाँ जी नमस्कार।
4: अरे हमारे खेत में
1: जी
4: ये है, उसमें कैसे डालना है,
1: क्या डालना, बीज की बात कर रहे हैं?
4: मुकेश है, मैं बोलो।
0: जी जी जी जी बोलिए।
4: हम तो बीजा डाल रहे हैं।
0: हाँ जी
1: बिल्कुल, ये अच्छा प्रश्न है आपका।
0: देखिए सबसे पहले तो अब अगर हमारी जैसे जिन किसानों की नर्सरी रेडी नहीं हुई है, तो आज आपको ये चीज़ करनी ही करनी है कि आपका जो भी आप बीज लेकर आते हैं, सबसे पहले तो आप प्रमाणित बीज लेकर आइए, जो आप बीज लेकर आते हैं उनके साथ एक टैग मिलता है, उसको आप संभाल के रखिए। पिछले साल आपने सुना होगा कि हमारे बालाघाट जिले में किसानों ने

0: बहुत महंगे बीज लाए, और जब उन्होंने उन्हें लगाया तो उसमें अंकुरण ही नहीं आया।
1: जी अक्सर देखा गया था
0: लगभग 70% कुछ वैरायटीज में अंकुरण नहीं आना, तो किसान के लिए इतने वक्त, जैसे अब लेट आप खार बो रहे हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप 20 दिन इंतजार करो और दोबारा बीज खरीद के लाओ, इसमें आपका पैसा भी जाएगा, आपके समय का भी नुकसान होगा, और आप जो भी अगली धान लगाओगे उसके लिए आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं रहेगा। तो अब आपके पास समय बहुत सीमित है, तो अब बहुत ही बुद्धिमता के साथ आप सबसे पहले प्रमाणित बीज लेकर आइए, उसके टैग को संभाल कर रखिए कि जहां से भी आप लाए हैं उसमें लिखा होता है कितनी अंकुरण क्षमता होती है, कितना बीज जीवित है। उसके बाद बीजों का शोधन करिए। बीज शोधन और बीजोपचार दोनों चीजों में थोड़ा फर्क है। बीज शोधन मतलब आपको,
2: मैम हम रोकना चाहेंगे।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
2: हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका हमारे इस हेलो किसानवाणी कार्यक्रम में।
3: हेलो।
2: हाँ हेलो जी।
3: हाँ जी, मैं लालबरा क्षेत्र से बोल रहा हूँ, ग्राम पंचायत बुट्टाजारी से।
2: जी
3: श्री चंद्र किशोर जी बघेल।
0: नमस्कार बघेल जी,
4: बोलिए आपका हाँ, क्या प्रश्न है?
3: मेरा एक प्रश्न है कि अपने को नर्सरी में स्वस्थ पौध कैसे होगा, पहला प्रश्न है
0: जी।
3: और दूसरा प्रश्न है कि जैविक के अंतर्गत में जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती और प्राकृतिक खेती में क्या अंतर है?
0: जी जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल आपका, और हम नर्सरी मैनेजमेंट ही बताना जा रहे हैं, पर सबके फोन कॉल्स आ रहे हैं, तो जो मैं इसके पहले का सवाल का जवाब है वही आपको स्वस्थ पौध के लिए मैं सारे आपको जो टिप्स हैं वो देती हूँ। सबसे पहले, और जो ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती और जो रासायनिक खेती है, इसमें भी मैं आपको अंतर जो है वो संक्षिप्त में बताऊंगी, क्योंकि वो एक बहुत बृहद टॉपिक है। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे थे अभी बीज शोधन की, तो बीज शोधन मैं बहुत स्पष्ट और सामान्य शब्दों में आपको बताना चाहूंगी कि आपको 10 लीटर पानी में 1.5 किलो नमक का घोल बना लो, और उसके बाद जो आपने पैकेट में बीज लेकर आए हो, चाहे वो कहीं से भी आपने बीज लाए हो, सोसाइटी से या किसी दुकान से, उसको आप उस घोल में डाल दो। आप देखेंगे कि थोड़ी देर में जितना भी खपरा है और जो कटे पटे बीज या जो बीज मृत है, है ना, जो आप अननेसेसरी आपकी खाद और पोषक तत्वों को जो सोखेंगे, वो सारे बीज अलग हो जाएंगे और आपके स्वस्थ बीज जो हैं वो बिल्कुल तलहटी पे आपको मिलेंगे। फिर आप इनको बीजोपचारित करिए। बीजोपचार बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि जो हमारी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे हमारे यहाँ पे जो लाई फुटना रोग है, या अगर हम ब्लास्ट की भी बात कर लें, या जितने भी फफूदजनक रोग होते हैं, अधिकतर हमें उनसे ही समस्या होती है, तो उनके लिए आप, आपका या तो अगर आप ऑर्गेनिक में जाना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा विरिडी के थ्रू 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसे उपचारित कर लीजिए, या रासायनिक तो आप मैंकोजेब बेविस्टीन, अगर आप मैंकोजेब लेते हैं या बेविस्टीन, तो 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप उसका उपचारित कर लीजिए। ये आप बिल्कुल करिए। अगर आप अपने बीज को उपचारित करते हैं तो अगर आपकी मृदा में, क्योंकि आपने हमारे बालाघाट जिले में तो रबी में भी लोग धान उगा रहे हैं, और अगर पहले भी अगर कोई भी मिट्टी जनित जीवाणु या अगर बीज जनित कोई रोग होगा तो उसका इंतजाम यही हो जाएगा, और हमारी जो पौध है वो एकदम स्वस्थ होगी।
1: बिल्कुल जी।
0: इस तरीके से करके आप और भी एक प्रक्रिया होती है कि आप बीजों को 10 से 12 घंटे मतलब उसको लगाने के पहले आप उसको भिगो के रख दें। जब आप उसको भिगोएंगे और फिर छान के जब आप उसको सुखाएंगे तो उसमें छोटी छोटे अंकुरण आ जाएंगे। ये आपको जो ज़्यादा वक्त लगेगा खार में, जर्मिनेशन जब अपन मिट्टी में करते हैं, वो वक्त का आपका जो अभी का दौर चल रहा है तो उसमें आपका जर्मिनेशन जल्दी हो जाएगा। उसके बाद हमारे किसान भाई एक और चीज करते हैं कि जब वो खार डालते हैं तो कुछ, वैसे तो किसान भाई बहुत जागरूक हो गए हैं, पर कई जगह हम देखते हैं कि कोई भी खार जो है पूरी बंदी के बंदी में खार डल जाती है।
2: बिल्कुल, एक साथ डल जाती
0: है। खार का भी एक नियम है कि खार कितनी डालना है, उसका साइज क्या होना चाहिए, यही वैज्ञानिक तकनीक होती है। अगर मैं ऊपर ऊपर मोटा हिसाब आपको बताऊं तो आपका जितना भी एरिया है उसके 1/10 हिस्से की हमको खार की जरूरत पड़ती है। तो जैसे अगर हम 1 एकड़ की बात कर लें तो 8 से 10 डिसमिल या 300 से 400 मीटर स्क्वायर अगर हम रफली बोलें, मतलब अगर हम अंदाज, तो इतने में आपकी नर्सरी तैयार होगी। पर नर्सरी का आपको बहुत अच्छे से सुनिए कि आपको उसको क्यारियों में लगाना है ताकि उसमें जल भराव ना हो। दूसरा, उसकी जो लंबा

0: लंबाई है वो ज़्यादा रखनी है, 5 से 8 मीटर अप्रॉक्स, और जो उसकी चौड़ाई है वो 1.25 मीटर। और जब आप अलग अलग वेराइटी की नर्सरी लगाएंगे तो उनके बीच में कम से कम 50 मीटर का आपको गैप रखना है
1: जी।
0: ये गैप क्यों रखना है? ये गैप इसलिए रखना है कि अगर आप, जब खरपतवार होती है हर चीज़ में, पहले एक और मेरी सलाह है किसान भाइयों से कि हर थोड़ी चीज़ के लिए रसायनों का प्रयोग ना करें
1: जी।
0: आपकी जो नर्सरी होती है वो इतने छोटे एरिया में होती है कि बहुत आसानी से मैनेजेबल हो सकती है, तो जब आप उसमें निंदाई करवाएंगे या रोग व्याधि को अगर आप देखना चाहेंगे तो उन पौधों को निकालना चाहेंगे या कोई भी प्रक्रिया जो आप उस रोपाई में करना चाहेंगे उसके लिए ये साइज रहेगा तो आपको आसानी होगी
1: जी। बहुत सही बात कहा मैडम आपने। अब एक बात और भी आती है कि नर्सरी में नर्सरी संबंधी हम बात करेंगे, लेकिन हमारे बीच हमारे एक किसान भाई। हेलो, हाँ जी बोलिए, अपना परिचय बताएं।
2: सर मैं मदन लाल बिसेन ग्राम सिकंदरा पटेल टोला से बोल रहा था सर।
1: जी बिसेन जी, आपका स्वागत है इस क्रम में, बोलिए आपकी क्या प्रश्न है?
2: मेरा प्रश्न यह सर कि क्या है, मेरे खेत में 2 एकड़ में क्या ये दात्या जो धान होता है
1: जी,
2: ये 3 साल से परेशान कर रहा है।
1: अच्छा,
2: और ये अभी निकला नहीं है
0: जी,
2: ये 8 दिन 15 दिन के बाद में निकलेगा, और उसके बाद में वो परा वरा लगाते हैं तो वो उसमें आ जाता है, फसल कम हो रही है और जाता ज्यादा नहीं।
0: बिल्कुल, नमस्कार बिसेन जी, आपने जो बात कही ये हमारे बालाघाट जिले में अभी इतना ज़्यादा इस खरपतवार का प्रकोप है, तो देखिए इसका एक ये भी, आप रबी में भी धान लेते हैं?
2: नहीं जी, रबी में नहीं लेते।
0: अच्छा, तो ये अच्छी बात है, नहीं तो जो रबी में भी धान लेते हैं वहाँ पे ये चीज़ और ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। जो दतिया रान या आपका ये जो खरपतवार है, इसके लिए सबसे पहले तो अगर मैं सबसे अच्छा खरपतवार नाशी कहूँ तो मैं कहूँगी पानी। जब आप नर्सरी डालते हैं या जो लोग DSR का भी इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले तो आप पानी भर के रखें। जब आप नर्सरी नहीं लगा रहे हैं, मिट्टी को आपने रेडी किया है अपने खेत को, पहले आप पानी भरें, उसके बाद पानी जब आप निकालेंगे तो 1-2 दिन में आपको बहुत सारी खरपतवार की छोटे छोटे आपको पौध जो हैं वो निकलते हुए दिखेंगे। उसके बाद आप जुताई करा लें। अगर आपको ज़्यादा खरपतवार दिख रहे हैं तो आप यह प्रक्रिया को ज़रूर से दोहराएं, क्योंकि हम जो सबसे बड़ी दिक्कत की जब हम नर्सरी लगाते हैं उसी टाइम पे ये सीड पर उसकी ग्रोथ कम होने के कारण वो उस वक्त में दिखता नहीं है, पर जब हम परहा लगाते हैं तो उस टाइम पे इसका प्रकोप हमको ज़्यादा दिखता है। तो अगर नर्सरी में हमको समझ में आता है तो हाथ से निंदाई कोशिश करें कि निंदा नाशक का इस्तेमाल ना करें, पर अगर करना पड़े तो आप ब्यूटाक्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप प्री इमर्जेंस जो वीडिसाइड्स होते हैं, जैसे रोपाई जब आप करते हैं उस वक्त में 24 से 48 घंटे के अंदर में आपको प्री इमर्जेंस पेंडाइमिथलिन का इस्तेमाल आप ज़रूर से करें। अगर आपसे वो नहीं हो पाया या अगर मिस हो गया तो आप 48 घंटे के बाद ब्यूटाक्लोर जो है वो 1.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें तो आपको उसका प्रकोप कम दिखेगा।
1: बिसेन जी, आपका जो प्रश्न था, आपकी जो जिज्ञासाएं थी, लगभग बिसेन मैडम ने पूरी की प्रश्नों के उत्तरों के माध्यम से। मैम बात आती है नर्सरी का, जब विषय ही चल रहा है तो नर्सरी में क्या खाद हम साथो साथ में डाल सकते हैं?
3: हमें इशारा हो रहा है कि हमारे किसान भाई बहुत जागरूक है।
1: अच्छा,
3: एक किसान भाई सीधे हमसे जुड़ रहे हैं।
1: हेलो।
4: हेलो
3: जी, स्वागत है हमारे इस हेलो किसानवाणी कार्यक्रम में।
4: मैं राजकुमार कावरे सिरेगांव से बोल रहा था सर जी।
3: कहाँ से?
4: सिरेगांव से।
3: ये कहाँ है सिरेगांव?
4: ये सिरेगांव है हमारे लांजी।
3: लांजी, तो कैसा मौसम है आज, बारिश वगैरह हो रही है उस साइड में आपके?
4: नहीं, बारिश तो नहीं हो रही सर जी, मौसम ढका है।
3: अभी हुई 1-2 दिन में बारिश आपके यहाँ?
4: नहीं नहीं नहीं, बारिश तो अभी एक भी नहीं हुई है, अभी ऐसा पानी गिरता है तो थोड़ा थोड़ा गिरता है कि अभी नर्सरी तो डाली नहीं है हमने
3: जी। तो क्या जानना चाहते हैं आज, क्या प्रश्न है आपके?
4: प्रश्न ये है सर जी,
0: जी,
4: कि जैसा हम नर्सरी डालते हैं
0: जी,
4: और वो नर्सरी जब तैयार हो जाती है तो उसमें क्या तनक छेद आ जाता है, तो इसलिए अपन जड़े मजबूत करने के लिए अगर तनक छेद ना हो नर्सरी में, इसलिए क्या उपाय कर सकते हैं?
0: बहुत अच्छा सवाल, और मैं शायद चाह रही थी कि कोई ये सब चीजों के बारे में पूछे, क्योंकि तना छेदक भूरा माहू पिछले बार हमने इतना प्रकोप देखा, तो आपने बहुत अच्छा कावरेजी सवाल किया। देखिए मैं इस

0: मैं एक रसायन के अलावा आपको एक प्रैक्टिस बताती हूँ। नर्सरी देखिए, 20 से 25 दिन से ज़्यादा की नर्सरी पहले बात तो आप होने मत दीजिए। जब आप नर्सरी को उखाड़ते हैं, है ना, तो नर्सरी उखाड़ते हैं तो ऊपर की जो एक तिहाई पत्ती होती है, ये प्रैक्टिस हर वो किसान भाई जो मेरा सुन रहा है उसे ये करनी ही करनी है। जब वो नर्सरी को उखाड़ेंगे तो ऊपर की जो पत्ती होती है एक तिहाई, उसको अपनी बाई लोगों से बोल के कटवा के किसी गड्ढे में डंप करवा देना है, ऐसे खुले नहीं छोड़ना है। और उसके बाद जब आप लगाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि तना छेदक का प्रकोप कम है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो तना छेदक की फिफली होती है, आप लोग जब धान रखते हैं अपना बीज वगैरह रेडी करते रहते हैं उस टाइम भी आपको वो उड़ती हुई दिखती होगी। जब हम लोग नर्सरी लगाते हैं तो ये 25 जून वगैरह, अब जैसे अब तो सीजन आगे हो गया, जब हमारी नर्सरी थोड़ी बड़ी होती है ना 10-12 दिन की, तब वो तना छेदक की फिफली जाके ऊपर में अंडे देती है। वो कभी नीचे में नहीं देगी, वो हमेशा पत्ती के ऊपर तरफ में अंडे देती है और हमारी आंखों से कई बार वो नहीं दिखाई देते हैं। और हम क्या करते हैं, उसी नर्सरी को हम खेतों में लगा देते हैं, फिर वो अंडे से बनती है इल्ली, अंडा इल्ली शंकी पंखी, तो फिर वो इल्ली अंदर जाती है और अंदर जाके प्यूपा के रूप में, शंखी के रूप में चुपचाप सुसुप्तावस्था में चली जाती है। अब आप इसके बाद, आपको यहाँ पे तना छेदक, जब आपकी बालियाँ निकलती हैं तब आपको उसका एकदम से प्रकोप दिखता है, आप उस टाइम पे इतना इंसेक्टिसाइड डालते हैं, पर तब आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता, आपकी फसल को अच्छा खासा नुकसान हो चुका होता है। तो मेरी आपसे एक कि आप ये मैनुअल एक बार प्रोसेस जरूर करके देखिए, पर अगर आपको नर्सरी में ही तना छेदक दिखे और आप अगर रसायन में जाना ही चाहते हैं कि अगर हमको रसायन जो है वो नर्सरी में ही डालने हैं, तो फिर आप जरूर क्लोरपाइरिफास का इस्तेमाल कर सकते हैं 3 ml पर लीटर के हिसाब से, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मेरा तो ये है कि अगर बहुत ज़्यादा प्रकोप ना दिखे, एक और मेरी और समझाइश है या सलाह है मेरे किसान भाइयों से कि सीधे कुछ दिखा और जाके दौड़ के कृषि केंद्र जाके बिना किसी मन से आप दवाइयाँ लेकर मत आइए।
1: बहुत
0: किसी न किसी कृषि, जैसे हमारी तबीयत खराब होती है तो हम सीधे क्या मेडिकल स्टोर चले जाते हैं, किसी वैज्ञानिक से पूछिए, हो सकता है कि उसका उतना प्रकोप है ही नहीं। जैसे गोल मिर्च वगैरह होती है, एक आध सप्ताह बाद वो चली जाती है, अगर उसका इतना प्रकोप है ही नहीं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
1: बिल्कुल सही कहा मैडम आपने, क्योंकि अंधाधुंध जो रसायनों का उपयोग हो रहा है, दवाओं का हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है। इसी क्रम में हमारे बीच हमारे एक किसान भाई फिर से हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो।
2: हाँ जी सर, नमस्ते।
1: नमस्ते, अपना परिचय बताएं जी।
2: मैं बलिराम भैरम जालीवाड़ा ब्लॉक वाराणसी से बोल रहा हूँ।
1: जी जी जी भैरम जी, आपका स्वागत है इस क्रम में।
2: जी जी,
1: प्रश्न कीजिए।
2: सर मैं, मेरा क्वेश्चन था, मुझे क्या है कि छिड़काव विधि से बुआई करवानी है
1: जी,
2: तो उसमें बुआई के समय अधिक पैदावार हो इसलिए कौन सा उर्वरक डालें और कितनी मात्रा में डालें?
0: ठीक है, नमस्कार जी, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए हमारी यहीं पे ये बात आ जाती है कि हम कितना उर्वरक डालें और क्या, जब आप अगर आप छिड़काव विधि से कर रहे हैं तो ये तो बहुत, आज सरकार भी हर किसी को प्रेरित कर रही है कि आप डायरेक्ट सीडेड राइस जो छिड़कवा विधि है उसका आप इस्तेमाल करें। तो ये दो तरीके से होती है, एक होती है सीड ड्रिल के थ्रू और दूसरी होती है ब्रॉडकास्ट मेथड। तो इसमें हमारा जो NPK होता है ये हम 100-60-40 के हिसाब से देते हैं, जिसमें जो हमारा NPK में जो नाइट्रोजन होता है ये हम जो हम जब शुरू में बुआई के टाइम पे एक तिहाई दे देते हैं, फिर एक महीने बाद जब कल्ले निकलते हैं तब हम जो उसका बाकी जो 25% है हम तब देते हैं, और उसके बाद जो बाली बनने लगती है हम तब देते हैं। और आपका जो, लेकिन ये है कि अब हम जब ये देते हैं तो भी, जैसे पिछली बार हमारे किसान भाई DAP का शॉर्टेज, DAP बेसल डोज की ज़रूरत है। एक बार आपकी फसल खड़ी होगी उसके बाद आपको अलग से DAP या कुछ देने की ज़रूरत नहीं। और अगर मैं, जैसे कि हमारी बात चल रही थी, आपने पूछा था एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो नर्सरी प्रबंधन के लिए है
1: जी, जी, जी, जी।
0: कि नर्सरी प्रबंधन में आपको खाद का इस्तेमाल करना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है और मुझे किसानों को जो मुझे बताना है कि देखिए किसान भाइयों, जैसे वो पौध जो 20 से 25 दिन एक छोटे से बीज से निकली है वो आपको एक समृद्ध किसान बनाएगी, तो उसे भी पोषण की ज़रूरत है, उसे भी खुराक की ज़रूरत है, तो उसके लिए प्रॉपर पर एनपीके हमें डालना होगा। अब एनपीके तो ठीक है, हमारे यहाँ पुराने तरीके से चला आ रहा है कि

0: गोबर की खाद, यह तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पर शर्त यह होना चाहिए 2 क्विंटल हमको गोबर की खाद, जो मैंने आपको पहले नर्सरी का पैमाना बताया था 300 से 400 मीटर स्क्वायर के लिए, 2 क्विंटल गोबर की खाद, पर शर्त यह है कि वो सड़ी हुई होना चाहिए। अगर वो अच्छे से सड़ी नहीं है तो वो फायदा कम करेगी, नुकसान ज्यादा करेगी। फिर भी हमारे किसान भाइयों को रहता है कि नहीं नहीं हमारे पास गोबर की खाद है, हमें डालना है। अगर आपको इतनी हड़बड़ी है तो आप उसको पहले सड़ा लीजिए, 2.5 से 3 किलो यूरिया में आप उसको मिक्स कर दीजिए, तो 8 से 10 दिन में वो गोबर की खाद जो है सड़ जाएगी। फिर सिर्फ यहाँ नहीं, उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, साथ में जिंक, आयरन, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आप DAP जो है 4 किलो, जिससे उसको नाइट्रोजन और फास्फोरस मिल जाएगा, ये DAP तो आप डालिए ही डालिए, पर MOP डालना मत भूलिए। अगर पोटाश, जैसे अभी मेरे एक किसान भाई ने पूछा था कि जड़ें बहुत कमजोर होती हैं, कैसे वो जड़ों को मजबूत, तो जो अगर पोटाश आपने नहीं डाला, अगर आप संकर प्रजाति लगाते हो तो पोटाश के बिना तो मैं कहूंगी बात ही नहीं होगी। तो आपको पोटाश बिल्कुल मुख्य रूप से डालना ही डालना है, साथ में समय की सीमा को देखते हुए कि आपको जिंक का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि और कुछ ऐसे लक्षण है, जैसे हमारी जो नर्सरी होती है उसमें छोटे छोटे ब्राउन कलर के गोल भूरे धब्बे दिखते हैं, जो जिंक की कमी के कारण होते हैं, तो आपको जिंक सल्फेट का भी इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास DAP नहीं है तो आप NPK 12-32-16 भी 6 किलो और MOP 800 ग्राम, इस तरीके से आप किसी भी कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जिंक सल्फेट 1 ग्राम। एक और विशेष चीज, जिंक सल्फेट को DAP के साथ मिक्स नहीं करना है। आप पहले नर्सरी जब प्रिपेयर करेंगे तो आप DAP डाल लीजिए, MOP डाल दीजिए, और उसके बाद में जब आप नर्सरी लगा दें उसके बाद आप टॉप ड्रेसिंग भी जिंक सल्फेट की कर सकते हैं। अगर आपने इतना आपकी नर्सरी को दिया है तो बेशक आपकी नर्सरी जो है वो काफ़ी हेल्दी होगी।
1: बिल्कुल प्रतिभा मैम, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी, निश्चित तौर पर हमारे किसान भाई हम प्रयास भी करेंगे कि नर्सरी प्रबंधन वो बहुत ही जो वैज्ञानिक तरीकों से कर पाएंगे। इस महत्वपूर्ण समय में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे जो किसान भाइयों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तूफान भैया घड़ी की सुई इशारा कर रही, बार बार मैं देख रहा हूँ कि घड़ी की ओर आप देख रहे हैं जी। तो आज के इस कार्यक्रम में जिनका हमें तकनीकी सहयोग प्राप्त हुआ, अंकित चकोले और आकाश वर्मा जी का, तो आज के इस जो विशेष हमारे जो हेलो किसानवाणी कार्यक्रम से हम अनुमति लेते हैं, तो विषय में और सभी से हम अनुमति लेते हैं, स्वीकार करें हमारा नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। वक्त है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आनंद बख्शी के लिखे गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में, मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की युगल आवाजों में फिल्म 20 साल बाद के इस गीत के साथ।

दूध का कर्ज। श्रोताओं, लीजिए मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ को सुनिए, आनंद बख्शी के लिखे गीत और अन्नू मलिक के संगीत में।

बाजीगर। श्रोताओं, इस फिल्म का गीत आपने सुना, विनोद राठौर की आवाज़, रानी मलिक का लिखा गीत और अन्नू मलिक का संगीत। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रंग का तराना। कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों को आवाज़ दी समीर ने, लिखा और संगीत दिया नदीम श्रवण ने।

रंग फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बालाघाट केंद्र है। रात के 8:30 हुए हैं, समय है पॉप म्यूजिक के कार्यक्रम का। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सोनू निगम के गाए इस पॉप तराने के साथ।

इस पॉप तराने के साथ ही पॉप म्यूजिक का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। 8:45 होने को हैं। समाचार संध्या दिल्ली केंद्र से अब हम रिले करेंगे।

0: दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी

0: की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
1: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
2: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की

0: जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साय जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच दो सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
2: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन ना करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम ना बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हरा कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और ABC मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज एक खास दिन है, एक संगीतकार की याद का दिन, और वो संगीतकार हैं पंचम।

यूं तो आज के फनकार कार्यक्रम में हम आपको किसी गीतकार, संगीतकार या किसी कलाकार की पूरी जीवन यात्रा बताते हैं। हम ये बताते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए, कैसे उनकी परवरिश हुई और कैसे उनका करियर शुरू हुआ और फिर वो कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। लेकिन आज है पंचम दिवस और पंचम के बारे में हम ये मानकर चलते हैं कि आपको तमाम जानकारियां विविध भारती के इससे पहले के आज के फनकार कार्यक्रमों के जरिए मिल गई होंगी। आज हम आपको सुनवाएंगे दास्ताने पंचम, यानी कैसे पंचम ने अपने गानों की धुनें बनाई। उनके जीवन से जुड़ी बड़ी दिलचस्प घटनाएं भी हम आपको बताएंगे और इसके अलावा पंचम की रचना प्रक्रिया में झांक कर भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दास्ताने पंचम। दरअसल जाने माने संगीतकार आर डी बर्मन का नाम तो पंचम रख दिया गया। वो सचमुच सुरों से सराबोर भी रहे, लेकिन सचिन देव बर्मन बड़े व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने पंचम को कोलकाता में अपनी मम्मी के घर पर रख दिया था, यानी दादी जी ने पंचम की परवरिश की। सचिन देव बर्मन को ज्यादा पता नहीं होता था कि पंचम कर क्या रहे हैं। एक बार एक स्कूल

के फंक्शन में एसडी बर्मन को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुला लिया गया। और जब स्पेशल गेस्ट के तौर पर वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि पंचम हारमोनिका बजा रहे हैं। उन्हें अपने बेटे की इस प्रतिभा को देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। एक और दिलचस्प घटना हुई थी। एक स्कूल के स्पोर्ट्स फंक्शन में इनाम बांटने के लिए एसडी बर्मन को बुलाया गया। सचिन देव बर्मन इनाम बांट रहे थे तो ऐलान हुआ साइकिलिंग के लिए अवार्ड राहुल देव बर्मन को। अब उनका बेटा ही उनके सामने खड़ा था और साइकिलिंग के लिए वो उसको पुरस्कार दे रहे थे। अगले दिन उन्होंने पंचम को अपने पास बुलाया और बोला, कब से तुम साइकिलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो? पंचम ने जवाब दिया, 8 दिन से। उन्होंने पूछा, ये बताओ तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? पंचम ने जवाब दिया, आपसे बेहतर म्यूजिक डायरेक्टर बनना। ये जवाब सचिन देव बर्मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पंचम को अलग अलग साज सीखने के लिए प्रेरित किया और ब्रिजेन बिस्वास के पास भेज दिया तबला सीखने के लिए। इसके अलावा पंचम को भेजा गया उस्ताद अली अकबर खां और आशीष खां के पास सरोद सीखने के लिए। कई ऐसे गाने हैं जिनमें पंचम ने खुद सरोद बजाया है। एक बार सचिन देव बर्मन इसी तरह से छुट्टियां बिताने के लिए अपनी मां के पास कोलकाता गए। उन्होंने राहुल देव बर्मन को बुलाया और उनसे कहा कि जरा अपनी मार्कशीट दिखाना। मार्कशीट देखकर वो आग बबूला हो गए, पढ़ाई में इतने कमजोर। उन्होंने तय किया राहुल को मुंबई ले जाएंगे, क्योंकि उनकी भी अब उम्र बढ़ रही है और राहुल को अपने करियर में किसी तरह से एस्टेब्लिश करना है। 10-12 साल में राहुल कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। लेकिन राहुल देव बर्मन की दादी ने इसका विरोध किया। गुस्से में एसडी बर्मन ने वापस मुंबई जाने का फैसला किया। इससे पहले आखिरी बार पंचम को बुलाया और कहा, जरा ये बताओ तुमने कौन कौन सी ट्यून्स बनाई हैं? बस पंचम ने एक के बाद एक 15 धुनें सुना दी। सचिन देव बर्मन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो मुंबई चले गए। एक साल बाद का वक्त, राहुल देव बर्मन कोलकाता के एक थिएटर में फिल्म फंटूश देख रहे थे। अचानक ये गाना

0: कर न जा न जा।
1: राहुल देव बर्मन उछल पड़े, अरे ये तो मेरी धुन है, ये तो उन्हीं धुनों में से एक है जो मैंने अपने पिता को सुनवाई थी। उन्होंने फौरन अपने पिता से संपर्क किया और उनसे कहा कि आपने मेरी ट्यून चुरा ली। सचिन देव बर्मन बहुत हाजिर जवाब थे। उन्होंने कहा, मैं तो ये टेस्ट कर रहा था कि तेरी धुनें पब्लिक किस तरह से स्वीकार करती है। हो गया ना टेस्ट, तू कामयाब हो गया बेटे, बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा तू। और इस तरह 9 बरस की उम्र में सचिन देव बर्मन ने राहुल देव बर्मन की पहली धुन का इस्तेमाल फिल्म फंटूश में किया था। आर डी बर्मन से जुड़े अनगिनत किस्से हैं। मजेदार बात यह है कि आर डी बर्मन मुंबई जाना चाहते थे और कोई जुगाड़ बन नहीं रही थी। कभी दादी नहीं मानती तो कभी पिता। सन 1955 के दिसंबर की बात है, गुरुदत्त कोलकाता आए। आर डी बर्मन गुरुदत्त से मिले और उनसे निवेदन किया कि मुझे मुंबई ले चलो। बस गुरुदत्त पंचम को मुंबई ले आए और फिल्म प्यासा में पहली बार पंचम ने एस डी बर्मन के असिस्टेंट के रूप में काम किया। उन्होंने एक गाना भी कंपोज किया और गानों में माउथ ऑर्गन भी बजाया और कुछ अन्य इंस्ट्रूमेंट भी बजाए।

ये वो दौर था जब सचिन देव बर्मन अपने इस प्रतिभाशाली बेटे को संगीतकार बनने के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने संगीत निर्देशन की बारीकियां अपने बेटे को सिखाई और उसको ये कहा कि जब कभी भी किसी गाने की धुन बन जाए तो प्रसन्न होने की बात नहीं है, उसे कुछ दिनों के लिए वैसे ही छोड़ दो, उसके बाद दोबारा सुनो, हो सकता है तुम्हें अपने ही काम की कमियां नजर आए, हो सकता है तुम अपनी ही ट्यून को रिजेक्ट कर दो। इस तरह से राहुल देव बर्मन ने अपने पिता से संगीतकारी की बारीकियां सीखी। कई बार राहुल देव बर्मन ने ये अपने इंटरव्यूज में बताया है कि कई धुनें उनके सपने में आई हैं। तो आइए वो गाने सुने जिनकी धुनें राहुल देव बर्मन को सपने में सूझी। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गाना।

एक और दिलचस्प बात है, रोजाना सुबह सचिन देव बर्मन टहलने के लिए जाया करते थे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई उन्हें देखकर फुसफुसाता, देखो देखो सचिन देव बर्मन जा रहे हैं। एक दिन दिलचस्प घटना हुई, एसडी बर्मन टहल रहे थे और पीछे से किसी ने कहा, देखो देखो राहुल देव बर्मन के फादर जा रहे हैं। सचिन देव बर्मन का सीना गर्व से फूल गया। घर जाकर उन्होंने आरडी से ये कहा कि लगता है अब तुम वाकई कामयाब होते चले जा रहे हो।

नासिर हुसैन तीसरी मंजिल बना रहे थे और उसके लिए एक नए संगीतकार की तलाश थी जो अपनी तरह से एक्सपेरिमेंट करे। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने राहुल देव बर्मन को लेने की सिफारिश की। ये वो दौर है जब तीसरी मंजिल के हीरो देव आनंद थे। आगे चलकर किस्मत ने पलटी खाई, देव आनंद इस फिल्म से बाहर हो गए और उनकी जगह शम्मी कपूर आ गए। जब ये खबर राहुल देव बर्मन को मिली तो उन्हें लगा किस्मत ने धोखा दे दिया, ये फिल्म तो अब हाथ से गई, क्योंकि सारी दुनिया जानती थी कि शम्मी कपूर के प्रिय हैं शंकर जयकिशन और शम्मी कपूर और जयकिशन तो बड़े पक्के दोस्त हैं। लेकिन यहां किस्मत ने काम किया। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन ने शम्मी कपूर से कहा कि पंचम में बहुत दम है, तुम उसकी धुनें सुनो तो सही। और बस यही हुआ। एक दिन शम्मी कपूर पंचम के पास पहुंचे और बोले, ए पंचम जरा धुनें सुनाओ। जैसे ही दो लाइनें पंचम ने सुनाई तो पता चला कि शम्मी कपूर ने

गाना दार्जिलिंग में किसी चौकीदार को गाते हुए सुना था और तुरंत शम्मी कपूर ने रोका और कहा, रुक जाओ, ये धुन तो मैं जयकिशन को देने वाला हूं। अब पंचम को लगा ये फिल्म मिलने वाली नहीं है, लेकिन धीरे धीरे काम आगे बढ़ता चला गया और हुआ ये कि न केवल नासिर हुसैन खुश हुए पंचम से, बल्कि शम्मी कपूर भी बहुत खुश हो गए। तीसरी मंजिल का जो गाना इस ट्यून पर था वो है ये।

1964 में तीसरी मंजिल आई। इस फिल्म में जैज को बड़ी रचनात्मकता के साथ पंचम ने इस्तेमाल किया था और पंचम के खाते की ये एकमात्र हिट फिल्म थी। जब आराधना का संगीत तैयार हो रहा था तो आरडी बर्मन ने सचिन देव बर्मन की मदद की थी, वो उनके असिस्टेंट के तौर पर रहे थे। शक्ति सामंत को उनका काम अच्छा लगा और उन्होंने फिल्म कटी पतंग उन्हें दे दी थी। कमाल की बात यह है कि कटी पतंग में अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन पंचम ने किया और सही मायनों में अपनी पतंग आसमान में बहुत ऊंचाई पर तान

ये गाना राग खमाज और राग कलावती पर आधारित है, लेकिन इसमें वेस्टर्न म्यूजिक के कॉर्ड्स का अद्भुत संयोजन दिखाई देता है। कमाल की बात यह है कि एक तरफ भारतीय शास्त्रीय संगीत और दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत, दोनों का जबरदस्त संयोजन करने में पंचम बड़े माहिर थे। एक समय की बात है, राजकमल स्टूडियोज में पंचम किसी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कर रहे थे, तभी गुलजार वहां पहुंचे और उन्होंने अपने एक गाने का मुखड़ा पंचम को सौंप दिया। ये गाना था परिचय फिल्म का, मुसाफिर हूं यारों। गुलजार चले गए, पंचम ने अपना काम जारी रखा। रात हो गई, गुलजार गहरी नींद में सो रहे थे। रात के 1 बजे फोन की घंटी बजी। गुलजार ने उनींदे होकर फोन उठाया तो पंचम थे। कहने लगे, तुरंत नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए ट्यून लेकर आया हूं। गुलजार नीचे उतरे, पंचम ने गाड़ी में कैसेट प्लेयर पर वो धुन गुलजार को सुनाई और पूरे बांद्रा में ड्राइव करते रहे। बांद्रा मुंबई का एक उपनगर है, आप तो जानते ही हैं। कार के डैशबोर्ड पर रिदम बजाते रहे और इस तरह से उन्होंने गुलजार को अपनी पहली ट्यून गुलजार के लिए जो बनाई थी वो सुनाई। आगे चलकर गुलजार और पंचम ने इतिहास रचा। फिल्म आंधी के लिए संगीत तैयार किया जा रहा था। ये वो दिन थे जब पंचम कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए बांग्ला गाने तैयार कर रहे थे। गीतकार गौरी शंकर ने बहुत ही बढ़िया एक धुन पंचम को दी। पंचम उस पर गाना बना रहे थे, तभी गुलजार को ये धुन पता चली और उन्होंने इस धुन में शब्द पिरो दिए। इस तरह बना फिल्म आंधी का ये अनमोल।

गुलजार और आरडी बर्मन के बीच हमेशा रचनात्मक चुनौतियां चलती रहती थीं। एक बार गुलजार मेरा कुछ सामान, जो फिल्म इजाजत का मशहूर गाना है, उसकी इबारत लेकर पंचम के पास पहुंचे और कहा इसकी धुन बनानी है। पंचम ने वो पूरी इबारत पढ़ी और गुस्से में कहा, कल को तुम कोई समाचार पत्र मेरे पास ले आओगे और कहोगे कि इसकी भी धुन बना दो, ये भी कोई बात हुई। लेकिन पंचम ने इसी गाने की अनमोल धुन बनाई और गुलजार और आशा भोसले को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ गायिका के राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। एक दिन पंचम गीतकार गुलशन बावरा के घर पहुंचे, कॉलबेल बजाई, दरवाजा गुलशन बावरा की पत्नी अंजू ने खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, पंचम गाने लगे, मक्के की रोटी पकाना अंजू, सरसों का साग पकाना अंजू। और उन्होंने गुलशन बावरा को ये इशारा किया कि यही मेरी धुन है, गाना तैयार करो। वो गाना था ये।

0: आइए अब पंचम के गानों के प्रयोग पर एक नजर डालते हैं, किस तरह से गानों में वो अलग अलग साउंड तैयार करते थे। फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा, जरा इसका ये शुरुआती संगीत सुनिए। ये संगीत दरअसल एक खाली बोतल को फूंक कर निकाला गया है। फिल्म यादों की बारात के मशहूर गाने का ये शुरुआती संगीत। ये संगीत ग्लास को चम्मच से बजाकर निकाला गया है। फिल्म डार्लिंग डार्लिंग का ये गाना सुनिए।
1: भूल गए तुम हमको? याद नहीं क्या तुमको? अरे रे रे रे रे रे। कल मिले थे हम तुम, आज फिर मिलना था।
0: जब इस गाने के लिए रिदम की जरूरत हुई तो पंचम ने अपने ढोलक और तबला वादक अमृत राव काटकर की शर्ट उतरवा ली और उनकी पीठ पर अपने हाथों से ये रिदम बजाया।

फिल्म चरित्रहीन का ये गाना सुनिए। इस गाने का रिदम उल्टी टिम्पनी यानी केटल ड्रम को पलट कर रख कर बजाया गया है और इस तरह से निकाला गया है। अब जरा ये गाना सुनिए। इस गाने में ये जो रिदम है इसे सैंड पेपर को घिसकर और बांसों को आपस में टकराकर आवाज तैयार की गई है।

फिल्म पड़ोसन का ये गाना सुनिए। ये जो कंघी की आवाज है, ये दरअसल मेटल के बने लैटिन अमेरिकन स्क्रैपर से तैयार की गई है।

पंचम ने हिंदी सिनेमा के गाने तैयार करते हुए कई ऐसी ध्वनियां दी जिनसे पहले न तो संगीतकारों का परिचय था और न ही गाने सुनने वाले।

इन ध्वनियों को जानते पहचानते थे। पंचम ने तो न जाने किन किन चीजों से ध्वनियां निकाल ली। वो साउंड के सही मायने में जुनूनी थे, मास्टर थे। पंचम को वेस्टर्न म्यूजिक में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि सन 1987 में उन्होंने एक लैटिन अमेरिकन रॉक एल्बम निकाला था जिसका नाम था पंटेरा। हालांकि ये एल्बम 1983-84 में रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन इसे रिलीज करने में बहुत वक्त लग गया था। बहुत मन से उन्होंने इस एल्बम को तैयार किया था। वैसे पंचम ने हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी गाने देने का कमाल भी किया। यश चोपड़ा की फिल्म दीवार 1975 में आई थी, जिसमें पंचम ने उर्सुला वास से ये गाना गवाया था।

वैसे पंचम ने कई पाश्चात्य धुनों को बहुत अलग अंदाज में अपनी पैकेजिंग के जरिए अपना बनाया, नया रूप दिया और उन्होंने इसे हिंदी में पेश किया। जैसे फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा असल में टेमिस रूसो का बनाया हुआ है और ये एक ट्रेडिशनल साइप्रस ट्यून है। पॉप सिंगर अब्बा का एल्बम आया मामा मिया, इस गाने से प्रेरित होकर पंचम ने बनाया।

इसी तरह से बॉन जोरा का एक गाना है, इफ इट इज वेडनेसडे इट मस्ट बी बेल्जियम। इस गाने का हिंदी रूप पंचम ने बनाया फिल्म यादों की बारात में।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने पंचम की गाथा सुनाई। हमने पंचम के कुछ गानों के बनने की कहानी, ध्वनियों के उनके अभिनव प्रयोग भी बताए। पंचम की ये दास्तान कभी खत्म नहीं हो सकती। उनका संगीत संसार इतना विस्तृत और विराट है कि आधे घंटे के इस समय में उसको समा पाना संभव नहीं है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार आर डी बर्मन पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। छाया गीत कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा इंतजार।

आइए सुने छाया गीत। सुनने वालों को शेफाली कपूर का नमस्कार। रात गहरी है मगर चांद चमकता है अभी, मेरे माथे पे तेरा प्यार दमकता है अभी। ये चांद भी मेरी तरह तन्हा है बहुत ज्यादा, एक से मुसाफिर हैं एक सा मुकद्दर है। मैं जमीन पर तन्हा और वो आसमान में, आज रात के दश्त में फूल खिले हैं भूली बिसरी यादों के। सीने में रोशन है दिल, दिल में रोशन इश्क तेरा। सीने में रोशन है दिल, दिल में रोशन इश्क तेरा। उफ, चिराग पे चिराग रख दिए हैं तुमने।

मैं तो हर रात यही सोच के सोता हूं, कल सुबह शायद तेरे दीदार का सूरज निकले। हर रोज तेरे ख्वाब लिए आंखों में दर बदर घूमता फिरूं मैं। एक चेहरा है जो आंखों में बसा रहता है, एक तसव्वुर है जो तन्हा नहीं होने देता। इश्क किसी को बताना नहीं पड़ता, आंखें खुद ही सब कुछ कह देती हैं। ये प्यार जो है तुझसे मेरा, किसी किताब में नहीं लिखा गया। तेरी आंखों में डूबा तो जाना कि मोहब्बत क्या होती है। बोझल हैं आंखें मगर नींद नहीं आती, वो तेरी सांसों की गुलाबी खुशबू। दिल भी खाली खाली है बहुत, तू मेरी रूह का हिस्सा था, मेरे चारों तरफ चांद की तरह से रक्सा था। वो भी क्या जमाने थे जब हम रोज मिला करते थे।

जब पहले पहल तुझे देखा था, दिल कितनी जोर से धड़का था। वो लहर न फिर दिल में जागी, वो वक्त न लौट के फिर आया। सब्ज मध्यम रोशनी में सुर्ख आंचल की धनक, सर्द कमरे में मचलती गर्म सांसों की महक, रेशमी बाहों में चूड़ी की मध्यम खनक, शर्म की लहजों में धीरे से कभी चाहत की बात, दो दिलों की धड़कनों में गूंजती थी एक सदा। उधर धूप डल रही थी, इधर दिल डूबता जा रहा था। हाँ, आज तलक याद है वो शाम जुदाई मुझको।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। साथियों, शायरी एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें जाहिराना तौर पर रंग बिरंगे फूल हैं। ये दिल बहलाने का एक तरीका है साहब, जिसे हम पा नहीं सकते, उसे अल्फाजों में जी लेते हैं। वो उसका नर्म मुलायम लहजा, जैसे ढलती सांझ की लाली नर्म कोमल सुरों में कोई प्यार की बात कहने चली हो। उसकी हंसी की रिमझिम कि जैसे फजा में नीली, बहुत हल्की नीली सी चमकदार बूंदों के

0: घुंघरू छनकने लगे हों कि फिर उसकी आवाज की छुअन से हवाओं के हाथों में अनदेखे कंगन खनकने लगे हों। वही लहजा जब भी मुझे छेड़े है, यादों में, ख्वाबों में, ख्यालों में, तो ऐसा लगे जैसे सावन की चंचल हवा सब्ज पत्तों के झांझन पहन सुर्ख फूलों की पायल बजाती हुई मेरे रुखसार को गाहे गाहे शरारे से छूने लगे।
1: तड़प ये दिन रात की कसक।

मुझे बेपनाह शिद्दत से चाहने वाले, तुम्हारी चाहत विसाल की आखिरी हदों तक फकत मेरे नाम होगी। मुझे यकीन है वो पल वो लम्हा कि मेरे बालों पे, आँखों पे, पलकों पे, होठों पे, माथे पे, रुखसार पर फूल ही फूल होंगे। मेरा चेहरा तुम्हारी नज़मों, तुम्हारे गीतों की चिलमनों से उभर रहा होगा। तुम्हारी आँखों में छुपे समुंदरों में डूब जाएंगी मेरी आँखें। इतना तो किसी ने तुम्हें चाहा भी ना होगा जितना मैंने सिर्फ सोचा है तुम्हें। सच वो चांद है इश्क जो दिखता सबको है, मगर उसे पाना हर किसी के बस का काम नहीं।

देखते देखते तारों का सफर भी खत्म हो गया, चांद भी सो गया, मगर नींद न आई मुझको। कौन था तू कि फिर न देखा तुझे, मिट गया ख्वाब आंख मलते ही। वो कौन है उससे तुम्हें वाकिफ भी नहीं हूं, जो मुझको किसी और का होने नहीं देता। हमें चाहिए था मिलना किसी अहदे मेहरबान में, किसी ख्वाब के यकीन में, किसी और आसमान पर, किसी और सरजमीन में।

साथियों, आज के छाया गीत का सफर बस यहीं तक। गीत संगीत की ऐसी ही सुरीली महफिल में फिर होगी मुलाकात। शेफाली कपूर को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के रिले कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बालाघाट केंद्र है। रात के 10:30 हुए हैं। सदाबहार फिल्मी गीतों का आइए करते हैं आगाज। फिल्म गोलमाल के इस गीत से, जिसे गाया किशोर कुमार ने, गुलजार की शब्द रचना है और संगीत आर डी बर्मन का।

शिव कुमार सरोज की रचना बब्बी लहरी का संगीत आवाज़ एक बार फिर किशोर कुमार की फिल्म कॉलेज गर्ल के लिए।

गुलजार की कलम, धुन आर डी बर्मन की, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ को आपने सुना फिल्म आंधी से। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ फिल्म खानदान से। नक्श लायलपुरी का लिखा गीत है और संगीत खयाम का।

0: किशोर कुमार लता मंगेशकर की युगल आवाजों में फिल्म रामपुर का लक्ष्मण का ये गीत।
1: क्या कहा?

0: और इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। रात के 11 बजने को हैं समाचार। अब हम दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में रिले करेंगे।
1: साथ में रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोको डीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है, ने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत

0: ने बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लियंड्रो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Narendra Modi visited the botanical gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermini. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Marke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the botanical garden. In a social media post, Mr. Modi said that the Aldabra giant tortoise also has an association with the special friendship between India and Seychelles, and 2 of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. The Defence Ministry today said that certain posts circulating on social media platforms have sought to misrepresent the Defence Minister Raj